रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। प्रातः 6 बजे हिंदी समाचारों के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। इसके उपरांत प्रातः 7 बजे हिंदी समाचारों के उपरांत आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR कार्यक्रम।

प्रातः 8 बजे गुड मॉर्निंग इंडिया के बाद आप सुनेंगे, माफ कीजिएगा, प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने।

नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। पेश हैं एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में आज चर्चा जारी रहने की संभावना है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने के प्रावधान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक में वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने पीओजेके में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलसिंकी ने वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। और अंत में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम है सुप्रभात, मेरा नाम है नेहा और सुबह के 6 बज चुके हैं और जैसे ही ये समय होता है हमारे कार्यक्रमों का यहाँ पर आगाज हो जाता है और वक्त आ जाता है कि आपके साथ दिल की कुछ ऐसी बातें की जाए जो शायद हम किसी और से नहीं कर पाते। तो श्रोताओं, आज का ये बहुत ही सुंदर सा दिन हम सभी का स्वागत कर रहा है।

आज मिलने का अगर मौका आपको मिल जाए तो आप जरूर उनके पास जाइए, और उनके सानिध्य में एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही अनुभव होता है। तो आप सभी को हमारी ओर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ एक प्यारा सा गीत हम आपके लिए बजा रहे हैं जिससे हम इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहें और कार्यक्रम के साथ बने रहें। कार्यक्रम है सुप्रभात, चैनल है आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल।

जब जब ये गाना सुनती हूँ ना, मेरे चेहरे पर बहुत अच्छी सी मुस्कान आ जाती है। और ये जो बात है ना कि किसी की वजह से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, कितनी अनोखी बात है। और अगर हम भी ऐसा ही कर पाएं कि हमारी वजह से किसी और के चेहरे पर अच्छी सी मुस्कुराहट आ जाए, तो फिर देखिए कितनी खास बात है। अच्छा, ऐसे ही मैं विचार कर रही थी कि जो नदियाँ होती हैं वो अपना पानी खुद नहीं पीती, और पेड़ जो होते हैं वो अपने फल खुद नहीं खाते। सूरज को ही देख लीजिए, खुद जलता है, खुद तपता है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। और फूल भी जो होते हैं ना, अपनी खुशबू दूसरों के लिए बिखेरते हैं, खुद उन्हें उस खुशबू का क्या ही करना है। यानी कि प्रकृति के जितने भी एग्जाम्पल्स हम अपने आसपास देखते हैं, वो हमें हर वक्त बस यही सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख बांटने में है। बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपनी खुशी के साथ अगर किसी और के चेहरे पर भी हम मुस्कुराहट ला सकें, तो वही हमारी जिंदगी की असली खूबसूरती हो सकती है। इसीलिए मुस्कुराइए और मुस्कान बांटते चलिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुबह के 6:15 हो चुके हैं एफएम रेनबो दिल्ली की घड़ी के अनुसार और आप सभी सुन रहे हैं सुप्रभात। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। साथियों, जब मैं आपसे बात करती हूँ ना तो अक्सर जिंदगी के पन्ने पलटना शुरू कर देती हूँ। बहुत सी बातें पुराने वक्त की मुझे याद आती हैं क्योंकि यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है पूरे दिन का जब आपके साथ बातचीत होती है। तो अभी बैठे हुए सोच रही थी कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारी हिंदी की कक्षा में हमारी जो अध्यापिका थी वो अक्सर हमें कुछ पंक्तियां दोहराने के लिए बोला करती थी, जैसे कि समुद्र की लहरें और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। और ये एक इंग्लिश में भी एक पंक्ति है जो कही जाती है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, एक प्रोवर्ब है जो यूज किया जाता है और इसका बहुत ज्यादा महत्व उस समय तो नहीं समझ में आया था लेकिन वक्त गुजरता गया और इसका मतलब धीरे धीरे समझ आने लग गया। और बहुत सोचने की बात है कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। कई बार बहुत से काम करने के लिए हम बस यही कहते रहते हैं कि कल से कर लेंगे ना, आज मेरे पास वक्त नहीं है, अरे बहुत समय है मेरे पास, अगले महीने देख लेंगे, परसों तरसों, पता नहीं कितने तरह के शब्दों से हम समय को टालते रहते हैं, फुर्सत नहीं है हमारे पास। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो आता है और चला जाता है। इसी बीच क्या होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं और कई सुनहरे अवसर हमारे हाथों से निकल जाते हैं। जिस चाय को आप पीने के लिए बस तड़प ही रहे थे वो ठंडी हो जाती है और कितना नुकसान हो जाता है। इसीलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए, अभी जो समय है वही आपके लिए सही समय है और आज का एक छोटा सा कदम हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी उपलब्धि भी बन सकता है। क्योंकि समय, जिस समय का इंतजार हम करते रहते हैं ना कि आएगा आएगा आएगा, वो समय कई बार आकर बस जा ही रहा होता है और हम समय का इंतजार करते रह जाते हैं।

सुबह के 6:26:45 सुप्रभात में नेहा है आपके साथ और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 के साथ आप दिल्ली एनसीआर में हमारे साथ जुड़े हैं और विभिन्न माध्यमों से देश भर के साथ साथ विश्व भर में आप हमें सुन पा रहे हैं। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम बहुत सी बातें अपने मन में लाते हैं, जैसे कि अभी इस समय मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे गुरु वही होते हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में या ट्यूशन में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो तो हमारे गुरु हैं ही, अनडाउटेडली वो हमारे टीचर्स हैं, हमारे गाइड्स हैं, लेकिन हर वो इंसान, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो राह में चलता कोई अनजान इंसान है, चाहे आप उससे कभी नहीं मिले हैं, चाहे वो इंसान ना भी हो, प्रकृति का कोई हिस्सा हो सकता है, वो हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर मुझे ये बात कहता है कि नेहा, हमेशा जिंदगी में एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रखा करो, बहुत जरूरी है। और मैंने इस बात पर विचार किया तो मैंने कहा हाँ, बात बहुत सही है। ग्रैटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, एक थैंक्स वाला एक एटीट्यूड हमारे मन में होना हर उस बात के लिए जो हमारे लिए हो रही है, अच्छी हो रही है, यहां तक कि जो बातें हमें लगता है कि हमारे फेवर में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो हमारे फायदे की ही बातें थी, है कि नहीं। और थैंक यू कह देना, ग्रैटिट्यूड जता देना, कृतज्ञता का, एक आभार का जो एहसास है वो मन में होना, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जिन बातों को सामान्य समझकर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। जैसे कि सुबह की ताजी हवा, अपनों की मुस्कान, घर की छत, दो वक्त का भोजन और एक नया दिन, हमारी सांस चल रही है, हमारे अंदर वो ऊर्जा है, हमारे पास वो सब चीजें हैं जो शायद किसी और के लिए सिर्फ एक दुआ है कि काश मुझे मिल जाए, लेकिन हमारे पास वो है। तो ईश्वर का दिया जो कुछ हमारे पास है, वी शुड हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। मैं तो सच में इस बात को मानती हूँ और इस बात के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आकाशवाणी पर हूँ और आप सभी मेरे श्रोता हैं और आपसे बातें करने का अवसर मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें कितनी ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ना मेरे दोस्त। आपको भी लगता होगा ना कि एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभार व्यक्त करना हर चीज के लिए बहुत आवश्यक है। करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको महसूस कैसा हुआ।

0: चाहे कितनी भी गुजारिश कर दो कि हम होश में आने ना पाए, लेकिन आना तो पड़ेगा। सुबह हो चुकी है मामू, उठकर आपको काम पर जाना है, स्कूल कॉलेज जहां भी जाने का आपका हिसाब किताब है वहां जाना तो पड़ेगा ही। और सर्दियों में ये वाली जो फीलिंग होती है ना कि हमें बस होश ना आए और हम रजाई में पड़े रहें, ये सर्दियों में फीलिंग बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाती है, होती है ना। फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और आपको समय बता दें 6:39:46 बाय द रेनबो क्लॉक। छोटा सा एड ब्रेक है और उसके बाद गाने और बातें, इन दोनों का सिलसिला बादस्तूर जारी रहेगा FM रेनबो दिल्ली 102.6 पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

सुबह के 6:45 और 56 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर नेहा के साथ हैं आप। कार्यक्रम सुप्रभात में बातें हो रही हैं जिंदगी से जुड़ी, और मैं तो जब भी आपसे इस कार्यक्रम में बात करती हूं तो अपनी जिंदगी के बहुत से किस्से याद कर लेती हूं। ऐसे ही एक विचार मन में आया कि जब हम कोई लैम्प जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो बहुत सा उजाला हो जाता है, और वो उजाला सिर्फ अपने काम नहीं आता, बहुत से लोगों के काम आता है। लेकिन ये बात भी याद रखने वाली है कि जो उजाला दूसरों के लिए बहुत सारी रोशनी वो दे रहा है, वो हमें भी तो बहुत सारी रोशनी दे रहा है। तो भाई जब ये इतनी प्यारी बातें होती हैं तो हमें इनको याद रखना चाहिए कि जो अच्छा काम हम करते हैं वो हमारे साथ साथ औरों के लिए अच्छा है और दूसरों के साथ साथ हमारे लिए भी अच्छा है। तो जब अच्छी चीजें हो रही हैं तो क्यों ना उन चीजों को हम कंटिन्यू करें। और ऐसे ही एक अच्छा काम ये है कि एक प्यारा सा गाना आपके लिए हम चला रहे हैं MG श्री कुमार और अनुराधा पौड़वाल की मधुर आवाजों में। बहुत प्यारा गाना है, जब अनुराधा जी इसमें खास हरकत करती हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आप और मैं साथ मिलकर आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

क्या बात है, किससे लिखेंगे? खत लिखेंगे, लेकिन ये बताइए कि खत लिखे हुए और किससे कहानियां लिखे हुए कितना वक्त हो गया। मुझे तो लगता है कि जब से हम मोबाइल के आदि हो गए हैं ना, और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर हम कीपैड से टाइपिंग करते हैं, हमारी लिखने की आदत काफी कम हो गई है। मेरी हैंडराइटिंग पहले अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब तो लिखने में बड़ी तकलीफ होती है। तो कोशिश रहेगी कि हम जब जब मौका मिले कुछ लिखें, अपने हाथ से पेंसिल पेन लेकर हम कागज पर कुछ लिखें, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और अब आपको समय बता दें, सुबह के 6:52 हो गए हैं। और अब एक और चीज आपको बता दें कि आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर सुनेंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक सुबह 7 बजे हिंदी में समाचार सुनिएगा, और उसके बाद 7 से 8 के बीच में आप सुनिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का पहला घंटा। ज्योति आनंद आज इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी। उसके बाद सुबह 8 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और 8:02 पर आपके लिए रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा। नाचीज आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, मेरा नाम है नेहा, और मेरे साथ आप अगला घंटा सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का। इसके बाद सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार होंगे, और समाचारों के बिल्कुल ठीक बाद आप सुनेगा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। ज्योति इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे। सुबह 10 बजे समाचारों के बाद आप पूजा के साथ सुनिएगा कार्यक्रम, वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम रहेगा, मैचलेस म्यूजिक आवर आज का विषय रहने वाला है। और साथियों चलिए अब आपको बता दें कि हमारे फोन इन कार्यक्रम का आज का क्या विषय है। दोपहर 3 से 4 के बीच में आप सुनिएगा रेडियो डॉक्टर का सीधा प्रसारण, और आज का विषय रहेगा डिजीजेस इन रेनी सीजन। क्या महत्वपूर्ण विषय आज आप सुनने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। रेनी सीजन शुरू हो चुका है, और ऐसे में बहुत सी वाटरबॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं, तो उनका क्या समाधान है, कैसे बचें? तो डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता हमारे साथ आज रहेंगे। आप सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन है। ये कार्यक्रम कंचन कनन इस कार्यक्रम में कार्यक्रम का संचालन करेंगी, और इसी तरीके से आगे भी आकाशवाणी पर कार्यक्रमों का सिलसिला हमेशा की तरह चलता रहेगा। आकाशवाणी आपके लिए हर वक्त, हर घंटे, हर कदम एक नया कार्यक्रम लाता है, जिसमें जानकारियां होती हैं और बहुत सारा मनोरंजन भी होता है। तो इन्फोटेनमेंट का पूरा इंतजाम रहता है FM रेनबो दिल्ली पर और आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। इसी के साथ अब वक्त आ गया है कि आप सभी से विदा ली जाए, और चलते चलते वही बातें मैं दोहराऊंगी कि भाई हम बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। खुश रहना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये जिंदगी हमारे लिए एक वरदान है, और इस वरदान को हमें बिल्कुल ऐसे जाया नहीं करना है, खुश रहना है। और साथ में कुछ छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखें तो एक बड़ा बदलाव हम अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि अपने आसपास सफाई हमें जरूर बना के रखनी है। राह चलते इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, बहुत गलत बात हो जाती है। या फिर अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो वहां भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, बहुत आवश्यक है दोस्तों। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इतने प्यारे मेरे लिसनर्स हैं कि आप हमारी बात जरूर फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ नेहा को दीजिए अनुमति, सुबह 8 बजे को फिर से आप सभी के साथ भेंट होगी। ज्योति आ चुकी है अगला कार्यक्रम आपके लिए पेश करने के लिए, और अगला गाना क्या बात है, गोविंदा भाई साहब नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, रवीना टंडन के साथ में। आप भी शामिल हो जाए। नमस्कार।

नमस्कार, 7 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में आज चर्चा जारी रहने की संभावना है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने के प्रावधान हैं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल SSB के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक में वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के संचालन को बंद करने की घोषणा की है और SBI के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरी कुमार नायक को आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। साथ ही उसने पाकिस्तानी अधिकारियों से संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के क्षेत्र में जाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। भोरोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। और अंत में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

लिसनर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. आकाशवाणी रेनबो पर आपका स्वागत कर रही हूँ मैं, ज्योति आनंद. और टाइम किस चीज़ का है, ये 7:08 है और ये टाइम होता है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का, जिसमें आपको मिलती है बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन. मगर इस घंटे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दूसरे वाले घंटे से अलग है. जी हाँ, तो आज का दिन आपका रॉकिंग बनाने के लिए, वैसे आज का दिन बहुत ज़्यादा रॉकिंग है अगर हम इतिहास के पन्नों में झांके तो आज के दिन ऐसी बहुत सारी खास चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ जी कुछ तो खास हुआ था, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और वो हमारे जहन में है. तो आज का दिन 29 जुलाई का जो दिन है वो भारत के इतिहास में और साथ ही साथ विश्व दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने ओलंपिक में अपना आखिरी हॉकी स्वर्ण पदक जीता था और दुनिया भर में बाघों के यानी कि

टाइगर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन। तो बहुत सारी खास बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी। तो फिलहाल आपको बता दूं कि भारत के इतिहास के बारे में, तो 1748 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची थी। 1748 की बात कर रही हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं उस सदी में पैदा हुई होती, उस 1700 ईस्वी में तो मैं भी इसमें से कुछ ना कुछ तो कर ही रही होती। ओके, तो उसके बाद अगर आपको बताऊं कि आज के दिन 1946 में जो हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति JRD टाटा की टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था, और उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और 1980 में भारत ने मॉस्को ओलंपिक खेलों में स्पेन को हराकर हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। 1904 में भारत के महान उद्योगपति और भारत रत्न से सम्मानित JRD टाटा का जन्म हुआ था। तो जैसे मैंने कहा कि आज बहुत खास दिन है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करती हूँ मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, यानी कि विश्व के इतिहास में भी आज के दिन कुछ खास चीज़ें तो हुई थी। 1928 में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा यानी कि एयर मेल सर्विस की शुरुआत हुई थी, और हमारी चिट्ठियाँ बहुत जल्दी इधर से उधर पहुँचा दी जाती थी। 1957 की बात करूँ आज के दिन, तो संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का गठन किया था आज के दिन। और 1958 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना के लिए कानून पारित हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आज के दिन दर्ज हुई थी मगर अलग अलग ईयर्स में, और इसीलिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खास बन जाता है। और एक और वजह से आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है जिसके बारे में बात करूंगी इस खूबसूरत से गाने के बाद। बस यूं ही बने रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में मेरे साथ।

आकाशवाणी रेनबो के साथ आप जुड़े हैं और आज की तारीख है 29 जुलाई जो कि बहुत मायनों में खास है। आज के दिन आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा तीनों एक ही तिथि के अलग अलग नाम हैं और ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा कही जाती है और इनमें कोई अलग अलग दिन का अंतर नहीं है बल्कि ये एक ही पावन पर्व के विभिन्न संदर्भ और नाम है। हिन्दू पंचांग के अनुसार आषाढ़ वर्ष का चौथा महीना होता है जो ज्येष्ठ के बाद और श्रावण यानी कि सावन से पहले आता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये आमतौर पर जून और जुलाई के महीने में ही पड़ता है। तो आज का दिन काफी खास है और इसकी जो आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2026 को शाम 6:18 से हो चुका था और इसकी जो समापन होगा पूर्णिमा तिथि का वो 29 जुलाई 2026 को यानी आज रात 8:05 तक होगा। और इस पावन दिन पर हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, स्नान करते हैं, दान देते हैं और गुरु पूजन का इसमें विशेष महत्व होता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का हिंदू और बौद्ध धर्म में अत्यंत विशिष्ट धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और मुख्य रूप से गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में ही इसे मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आज के दिन ही वेदों का विभाजन करने वाले और महाभारत व पुराणों के जो रचयिता थे महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन गुरुओं को भगवान के समान मानकर उनका सम्मान किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है और दान किया जाता है अन्न का, जल का। तो जो ज़रूरतमंद है उनको अन्न, गेहूं या जल का दान करने से भी आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। विद्यादान गुरु पूर्णिमा होने की वजह से विद्यार्थियों को पुस्तकें, कॉपियां और पेन जैसी जो सामग्री होती है वो दान करना बहुत शुभ माना जाता है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के दिन हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि किसी का अपमान ना करें, तामसिक भोजन ना करें, नकारात्मक विचारों से बचें, क्रोध ना करें, पानी की बर्बादी तो बिल्कुल ना करें और शांति, सफलता, धन के लिए व्रत रखें। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है और काफ़ी लोग व्रत करते हैं, धन का दान करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों का दान करते हैं और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको सुनाती हूँ विष्णु स्तोत्रम।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

वेलकम बैक लिसनर्स, आकाशवाणी रेनबो के साथ हम जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं विद मी ज्योति, 7:24 बाय द स्टूडियो क्लॉक। और आज का दिन एक और बहुत माइंडों में बहुत ज्यादा खास है। आपको पता है कि बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो हमारा जीवन बचेगा। तो ये जो बाघ है ना, जो टाइगर है, ये बहुत स्पेशल होते हैं और इसीलिए आज के दिन 29 जुलाई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और हर वर्ष 29 जुलाई को इसे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो एम है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो यही है कि दुनिया भर में बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उनकी जो संख्या है ना, जो घटती जा रही है, उसे रोकना। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। उसके अलावा इनके जो प्राकृतिक आवास होते हैं उनकी रक्षा करना भी इसमें शामिल होता है, इनकी तस्करी पर रोक लगाना भी, और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए संरक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना। और दुनिया भर में लगभग 75% जंगली बाघ पाए जाते हैं और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पशु है। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य वही था कि इनके आवास को बचाना, इनको संरक्षण इनका करना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये संतुलन बनाए रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए इनकी सुरक्षा का अर्थ है पूरे वन तंत्र की सुरक्षा करना, क्योंकि हम जानते हैं कि जंगल होंगे तो हमारा जीवन बचेगा। और इनके बारे में बहुत सारे ऐसे खास इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है दुनिया भर में, सबसे बड़ी जंगली बिल्ली इन्हें माना जाता है। और हर जो ये बाघ होता है, इसकी जो धारियां होती हैं, यानी कि जो स्ट्राइप्स होती हैं, वो अलग होती हैं। बिल्कुल हमारे जैसे फिंगर के प्रिंट्स होते हैं ना, अलग अलग, कभी भी सेम नहीं होते हैं, तो वैसे इनकी जो धारियां हैं ना, वो भी अलग होती हैं। और इससे वो कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, है ना। और आपको पता है ये बहुत बेहतरीन तैराक यानी कि स्विमर्स होते हैं और कई किलोमीटर तक तैर सकते हैं, और रात में इंसानों की तुलना में भी लगभग 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। छलांग की तो पूछिए मत, आज से 10 मीटर तक की दूरी आराम से ये लोग तय कर सकते हैं। और इनकी सुनने की क्षमता, ओ हो, इनकी दहाड़ आप 3 किलोमीटर तक सुन सकते हो। तो बहुत सारे खास फैक्ट्स हैं इनके बारे में। तो बस आज का दिन हम इसलिए मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। और आपने कभी ध्यान दिया कि ये कितने सुंदर होते हैं? अभी देखिए कितने सुंदर हैं। और सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ ज्योति आपके साथ।

0: पर अभी फिलहाल वक्त है कॉमनवेल्थ गेम्स के हाइलाइट्स का, तो उसे सुनते हैं।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स
2: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे हैं। ग्लासगो में भले ही ठंड हो, लेकिन हमारे एथलीट्स जोश, जुनून और जज्बे के साथ भारत का नाम रोशन करने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। अभी तक के प्रमुख स्टार्स भारत की तरफ से रहे हैं मीराबाई चानू और शर्मिला धनकर। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। वहीं शर्मिला धनकर ने महिलाओं के F57 शॉटपुट में भारत के लिए पैरा एथलेटिक्स का पहला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता।
3: स्पर्धाओं के छठे दिन क्या फिर भारत के लिए कोई जादू की छड़ी चमकने वाली थी, और कौन होने वाले थे वो एथलीट जो चमत्कारी प्रदर्शन करके दिखाएं? भारोत्तोलन में अब तक जो भी भारतीय लिफ्टिंग हॉल में आया था उसने पदक का भार तो उठा ही लिया था, छठे दिन ये सिलसिला टूट गया। भारतीय मुक्केबाजों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और अब पदक बस उनकी जद में आने ही वाले हैं। क्वार्टर फाइनल चक्र था, एक जीत यानी पदक पक्का। सिलसिले का आरंभ पहली बाउट से ही प्रीति ने कर दिखाया। एथलेटिक्स में चार भारतीय थे, 400 मीटर पुरुष में दो, ऊंची कूद में पूजा और 10,000 मीटर में गुलवीर। स्विमिंग में दो बड़े सितारे पूल में उतरे, साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। लेकिन यहाँ पर मुकाबला इतना कड़ा है कि हीट्स को पार करने के बाद फाइनल में जगह बना लेना भी एक उपलब्धि बन जाता है, तो पैरा खिलाड़ी भी अपने संकल्पों को उड़ान देने में लगे हुए हैं। सारी चर्चा करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में, राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 के छठे दिन का लेखा जोखा। एथलेटिक्स में कल भी एक शानदार प्रदर्शन आया और इस बार ट्रैक से लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने इस साल चल रहे अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखा और रजत पदक हासिल किया। 10,000 मीटर की स्पर्धा में गुलवीर ने इस साल अपना सबसे अच्छा जो समय निकाला था वो था 27:24.28। इसके हिसाब से मुकाबला खासा कड़ा दिख रहा था, क्योंकि फाइनल में कीनिया के ही तीन धुरंधर 27 मिनट से कम समय निकाल चुके थे। तेज बारिश के बीच ये रेस आरंभ हुई। गुलवीर धुन के पक्के निकले, बारिश की परवाह किए बिना अपना रिदम बनाए रखा और अंतिम लैप में तो शानदार प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया 27:49.78 के साथ। स्वर्ण पदक पाया ऑस्ट्रेलिया के KY रॉबिन्सन ने 27:48.93 के साथ, और कांस्य पदक मिला आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारके को। गुलवीर ने रवानगी से पहले ट्रेनिंग और उम्मीदों को लेकर कहा था,
4: अच्छी बेटर करेंगे अपना, जितना जिस हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है, जिस हिसाब से प्लान है, कोच का अच्छा होगा।
3: बस ये लास्ट वाला। पुरुषों के 400 मीटर में दो भारतीय थे, उम्मीदें विशाल टीके से ज्यादा थीं और उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में हीट 6 में 46.49 सेकंड के साथ दूसरा स्थान पाया और क्वालिफाई कर लिया। हालांकि कुल मिलाकर 16 क्वालिफायर्स में वे 14वें स्थान पर रहे, यानी अगर पदक की उम्मीद जिंदा रखनी है तो आगे उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। इसके पहले हीट 3 में राजेश रमेश 47.73 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर आए और ओवरऑल 25वें स्थान पर रहे, क्वालिफाई नहीं कर सके। महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह से बहुत उम्मीदें थी कि वो पुरुषों की स्पर्धा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 1.93 मीटर की ऊंचाई लांघना। पूजा ने यहां पर शुरुआत की 1.72 मीटर से, उसके बाद 1.77 मीटर की ऊंचाई पार की। इसके बाद बहुत तेज बारिश आई और करीब 1.5 घंटे के लिए स्पर्धा को रोक दिया गया, और लगता है पूजा की रिदम भी शायद यहीं पर टूट गई। जब स्पर्धा आरंभ हुई 1.82 मीटर की ऊंचाई फांदने की कोशिश पूजा ने की लगातार, लेकिन वो इसको पार नहीं कर पाई। पूजा की कूद की ऊंचाई बस यहीं थम गई और साथ ही पदक की उम्मीद भी जाती रही।

0: a ray of sunshine for all the fans of weightlifting out there. And definitely a moment of pride for all Indians to smile as Harjinder Kaur won the silver medal in the women's 69 kilogram category finals, thereby taking the total medal tally to 7 in weightlifting. Harjinder won the silver medal with a total of 227 kilograms, which included 101 kilogram in snatch and 126 kilogram in clean and jerk. She put in a dominant display in the snatch category of the women's 69 kilogram final. She lifted 96 kilogram, 99 kilogram and 101 kilogram in her 3 attempts in snatch, and thereby her best effort in snatch was recorded at 101 kilogram. Thereby her total went on to become 227 kilogram, which bought India the 7th medal in weightlifting, and Harjinder contributed by bringing in the silver in the women's 69 kilogram category.
1: 1 year se sir mehnat kar rahe hain iske liye, result hai uska. Family ne bahut support kiya, down nahi hone diya kabhi, har time mera saath diya hai.
0: Well, heartbreak for all the lovers of weightlifting. India's Nirupama Devi Serum had raced her opening attempt in the clean and jerk to 123 kilogram in the women's 63 kilogram final after initially registering 115 kilogram. But she failed to complete all her 3 attempts in clean and jerk at 123 kilogram in the women's 63 kilogram final. With no successful lift recorded in the clean and jerk round, Nirupama was out of medal contention and registered a did not finish in the women's 63 kilogram final.
2: कल भारत के 5 मुक्केबाज रिंग में उतरे अपने ग्लव्स का दम आजमाने के लिए. पांचों बड़ी मेहनत कर राउंड ऑफ 8 में पहुंचे थे और अब पदक की खुशबू उन्हें बस आने ही लगी थी. एक जीत और पदक पक्का हो जाएगा, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है, मन में तो गोल्ड मेडल बसता है. कल शुरुआत की हरियाणा की उर्वर जमीन से निकली नई पौध की प्रीति पवार ने बचपन में लड़कों के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस और पैरी करते करते 22 साल की ये लड़की विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लाई है. कल उसके मुकाबले थी रेड कॉर्नर में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड. प्रीति की चपलता, मौके चुरा कर धड़ाधड़ मुक्कों की झड़ी लगा देना, इसका निकोल के पास कोई जवाब ही नहीं था. तीनों राउंड सर्वाइव कर लेना ही निकोल की सबसे बड़ी उपलब्धि.
3: We have a unanimous decision. The winner in the blue corner from India, Preeti Preeti.
4: It's really nice to have a strong team because it does matter from which country you belong. So, really nice.
2: अब सेमीफाइनल में प्रीति का मुकाबला जिम्बाब्वे की कैथरीन वापे से होगा 31 जुलाई को. बस 2 दिन बाद अपना 20वां जन्मदिन मनाने जा रही प्रिया घनघास भी बड़ा पीछे क्यों रहती. स्कॉटलैंड की निया मिशेल को हराकर उन्होंने खुद के लिए ही तोहफा पक्का कर लिया. हालांकि ये बाउट जीतने में उनको बहुत पसीना बहाना पड़ा. अब तय होना था तीसरे राउंड में कि किसको मिलनी है जीत, और ये पूरी तरह प्रिया का रहा. एक के बाद एक उन्होंने जब 3 स्ट्रेट पंच मिशेल के चेहरे पर जड़ दिए, तभी सबको लग गया कि अब तो ये प्रिया पंघास ही जाने वाली हैं अगले राउंड में. स्प्लिट डिसीजन आया और निर्णायकों ने ये बाउट प्रिया के नाम कर दी.
3: द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया, प्रिया प्रिया.
2: अब पिछले हंगचाओ एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता परवीन हुडा पर जिम्मेदारी थी मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की. सामने रेड कॉर्नर में थी इंग्लैंड की शाचा हिकी. सारा स्थानीय समर्थन हिकी के साथ ही था. कांटे की लड़ाई हुई, लंबी छहरी परवीन ने कोशिश तो बहुत की, मुकाबले में अपने क्षण भी उन्होंने कुछ कमाए, लेकिन अंततः रेफरीज का निर्णय 2-3 से उनके विरुद्ध गया और साथ ही पदक की उम्मीद भी चकनाचूर हो गयी. नाम है जदुमणि सिंह. आज वो भारतीय सितारा है, उसके मुक्कों से विपक्षी थर्रा रहे हैं. कल क्वार्टर फाइनल में जाम्बिया के मांगो मौले उनके खिलाफ थे. पंचेस, अपरकट्स, जैप्स और साथ में पूरी होशियारी से गार्ड बनाए रखा जदुमणि ने, और इसका परिणाम ये हुआ एक और सर्वसम्मति से मिली हुई 5-0 की विजय. छठे दिन की अंतिम बाउट में भी एक भारतीय था, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया. रेड कॉर्नर में उनके सामने थे स्थानीय बॉक्सर रॉबर्ट मैकलाउल्टी. कपिल ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन रॉबर्ट उनसे हर क्षेत्र में बेहतर साबित हुए. 5 में से 3 मुक्केबाजों ने पदक पक्के कर लिए और कहानी तो अभी बाकी है.
0: India's para swimmers Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Buddigana and Ali Imam led India's campaign into the finals.

आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, ज्योति आपके साथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जैसा फिर कोई भी कोई हो ही नहीं सकता है। इतने स्पेशल होते हैं और इतने योगदान देकर जाते हैं लोगों के जीवन में, बहुत बड़ा बदलाव करके जाते हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत है जिनका नाम है जे आर डी टाटा। उनका पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, और एक महान भारतीय उद्योगपति और भारत के पहले, जी हाँ, फर्स्ट कमर्शियल पायलट थे। और उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी हम आज जयंती मना रहे हैं 29 जुलाई को। और उनके बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, शायद आप जानते होंगे, शायद कुछ मैं बता दूं आपको। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे, और उन्हें 1929 में भारत का पहला पायलट लाइसेंस मिला था। भारत में सिविल एविएशन के वो जनक माने जाते हैं। 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी, जो आगे चलकर एयर इंडिया बनी, जिसमें आपने और हमने काफ़ी बार, कई बार सफ़र किया होगा, जी हाँ। और उनका जन्म पेरिस में हुआ था, और उन्हें बचपन में इसीलिए कई भाषाएं सीखने का अवसर भी मिला। और सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में ही वो टाटा सन्स के चेयरमैन भी बने। उनके सुपरविजन में टाटा ग्रुप की कुछ कंपनीज, बहुत कम कंपनीज से बढ़कर लगभग 100 कंपनीज का उन्होंने इतना बड़ा विशाल ग्रुप बना लिया। और अपने जो कुलीग्स होते थे, कर्मचारी होते थे, उनकी भलाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। कर्मचारी कल्याण बोनस, चिकित्सा सुविधाएं और बेहतर कार्य परिस्थितियों को उन्होंने हमेशा हमेशा बढ़ावा दिया है। और उन्हें 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। और इतनी सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शी नेतृत्व

नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज की सेवा करना भी है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम आते हैं जीवन में, और जब आते हैं तो बहुत गहरी छाप छोड़ के जाते हैं सबके दिलों में।

आकाशवाणी रेनबो के साथ ये सफर चल रहा है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ है और 7:52 हो चुके हैं। और एक और बहुत ही खास शख्सियत हैं जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी महिला सेनानियों में से एक थी, जिनका नाम है अरुणा आसिफ अली। उन्हें 1942 की वीरांगना और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। और उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1909 में कालका, जो कि अब वर्तमान में हरियाणा में है। और उनकी अगर योगदान की हम बात करें, जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने योगदान दिया था, वो 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया उन्होंने और कई बार जेल भी गई। 1932 में तिहाड़ जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल भी की, और जिसके बाद जेल की परिस्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि अब अगस्त क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है, उसमें तिरंगा फहराया, और उस समय अधिकांश बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए उनका ये कदम आंदोलन का प्रतीक बन गया। तो उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है और उनको हम नमन करते हैं उनके इस योगदान के लिए। आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में ज्योति आपके साथ है, और 8:02 से आपके साथ होंगी नेहा लेकर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सेकेंड आवर। और इस गाने के बाद एक और बॉलीवुड की खास शख्सियत हैं जो सबके दिलों पर राज उन्होंने किया है, उनका आज बर्थडे है, किनका है बताऊंगी इस गाने के बाद।

जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज एक बॉलीवुड के एक्टर हैं जिन्हें हम नायक कहें या खलनायक कहें इसी बात से आप जान गए कि मैं किन की बात कर रही हूँ। आज है संजय दत्त का हैप्पी बर्थडे और आज वो हो गए हैं 67 इयर्स के और उन्होंने इतनी सारी फिल्में हमें दी हैं और इतने लंबे टाइम से हमारे साथ हैं टिल डेट। अभी उनकी लेटेस्ट मूवी धुरंधर आई है जिसमें उनको उनका वो कैरेक्टर देख के तो सब इम्प्रेस हो गए। मगर मैं आपको लेटेस्ट गाना कोई नहीं सुनाऊंगी, मैं उनका बहुत खूबसूरत सा गाना सुनाऊंगी आपको साजन मूवी से। तो उनको हम बर्थडे विश करते हैं और साथ ही साथ जो उनके साथ हमारे लिसनर्स बर्थडे शेयर कर रहे हैं उनको भी आकाशवाणी रेनबो की तरफ से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। चलिए संजू बाबा का एक गाना एंजॉय करते हैं उनकी मूवी से साजन से और मैं मिलती हूँ आपसे 9 बजे फिर से दिल के तराने गाने नए पुराने में। जस्ट कीप एंजॉइंग आकाशवाणी रेनबो।

नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। पेश है एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम से संबंधित संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा फिर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की भावी कार्य योजना की समीक्षा की। सभी विभागों से एकजुट होकर बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया है। उस पर 1 करोड़ रूपये का इनाम था। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के संचालन को बंद करने की घोषणा की है और एसबीआई के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरी कुमार नायर को आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं को 2500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। अंत में गुलवीर सिंह राष्ट्रमंडल खेलों की 10,000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। तो ये थे एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का दूसरा घंटा शुरू हो रहा है। सुबह के 8 बज चुके हैं और दिल्ली एनसीआर में क्या कुछ खास और नया हो रहा है, इन बातों के साथ ही कार्यक्रम लेकर मैं नेहा बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत्श्रीअकाल। हमेशा यही हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसे कार्यक्रम लेकर आए जहां हो जानकारियां और साथ में मनोरंजन। तो मनोरंजन से शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। जावेद अली की आवाज में ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी तुम मिले, एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं बहुत सी बातों और जानकारियों के साथ।

मौसम बहुत सुहाना हो गया है, लेकिन अपने आसपास या फिर आप खुद भी ऐसे ऐसे नाक सिकुड़ रहे होंगे, क्योंकि मौसम जब सुहाना हो जाता है तो उसके साथ में थोड़ी सी परेशानियां भी हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। भाई मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि जुकाम की शिकायत हो रही है, शायद आसपास भी लोग ऐसे ही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एकदम से टेम्परेचर में जब गिरावट आती है और उसके साथ साथ हम एसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो मौसम की बात करने के लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। और फिलहाल अगर दिल्ली एनसीआर के तापमान की बात करें तो करंट टेम्परेचर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर गिर जाएगा। और बादल छाए रहेंगे, अभी भी मैं खिड़की से बाहर देख रही हूं तो बादलों ने आसमान को पूरी तरह से कवर कर लिया है, सूर्यदेव नजर नहीं आ रहे हैं। तो पूरे हफ्ते भी इसी तरह का रहेगा मौसम, यानी कि बारिश होती रहेगी। अब देखिए सावन अगर आ गया है तो बारिश तो होगी ही, ऐसे में जो परेशानियां हमें बारिशों के दौरान हो जाती हैं, चाहे वो सेहत से जुड़ी हो या फिर आने जाने से जुड़ी हो, तो उन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और मौसम विभाग ने भी मौसम को देखते हुए येलो अलर्ट दिल्ली एनसीआर में जारी कर दिया है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। अब क्योंकि जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो परेशानी क्या होती है कि ट्रैफिक में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे में कोई भी ऑल्टरनेटिव अगर आपके पास है तो उसका जरूर आप इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बारिश में ट्रैफिक में फंसने से बचाइए, सुरक्षित रहिए, सेहत का अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर परेशानियां बढ़ सकती हैं। और ये सलाह मैं अपने लिए भी देना चाहूंगी।

क्योंकि मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा सर में दर्द है, थोड़ा सा यहाँ पर गले में तकलीफ हो रही है। तो चलिए कार्यक्रम के बाद कुछ और इसका इलाज करेंगे। फिलहाल इलाज हमारे मूड का है, बहुत प्यारा सा गाना। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मेरे साथ, मैं हूँ नेहा।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

भाई देखिए, नाचते गाते थिरकते तो रहना ही चाहिए, यही जिंदगी के लिए बहुत ही काम की बात है। और कुछ काम की बातें आपके लिए हम लेकर आते हैं यहाँ पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के दूसरे घंटे में। मैं हूँ नेहा आपके साथ, और समय आपको बता देती हूँ, सुबह के 8:25 हो चुके हैं। और अब जरा एनसीआर के बारे में बात करें तो गुरुग्राम, जो दिल्ली से बहुत पास पड़ता है, वहां मेट्रो के 5 इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे, ऐसी खबर हमारे सामने आ रही है। नमो भारत ट्रेन से जुड़ेंगे 2 स्टेशन और साथ में डबल डेकर मेट्रो भी चलेगी। भाई क्या बात है, अगर इस तरह की शुरुआत हो रही है और होने वाली है तो भाई बहुत बहुत हम इसका स्वागत करते हैं। थोड़ा विस्तार से अगर इस खबर के बारे में बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि गुरुग्राम मेट्रो में 5 इंटरचेंज स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, और ये इंटरचेंज स्टेशन मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर 5 और डीएलएफ साइबर सिटी में बनाए जाएंगे। इसके अलावा ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर 21 और पालम विहार रोड पर कृष्णा चौक पर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण किया जाएगा, और इसमें फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो का संचालन होगा। भाई विचार तो बहुत अच्छा है, और हम आशा करते हैं कि इस तरह का काम बहुत ही मजबूती के साथ बहुत जल्दी हो जाए, और साथ ही हमें इसका लाभ उठाने का अवसर मिले। जब वहां पर 5 इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे तो आसपास के जो शहर हैं जैसे कि यूपी और दिल्ली, यहां पर आना जाना बहुत ज्यादा सुगम हो जाएगा। और अब सुगम होने वाला है आपका ये सफर जहां भी आप निकल पड़े हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन गाने, 2 गाने बैक टू बैक आप सुनेंगे, और क्या मजेदार गाने हैं, आपका सफर जरूर बहुत अच्छा हो जाएगा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

सुबह के 8:35। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में नेहा के साथ हैं आप। और एक बात मैं सोच रही थी कि हम बेशक प्रेजेंट में रहते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने पास्ट से भी बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत सी यादें बचपन की होती हैं, जैसे कि परिवार के साथ हम चिड़ियाघर जाया करते थे और वहाँ पर कितना अच्छा वक्त हम एज चिल्ड्रन बिताया करते थे। जब हम छोटे थे तो नए नए जानवरों को देखकर बड़ा ही एक्साइटमेंट फील होता था। और आज की जो जनरेशन है भाई, उन्हें भी चिड़ियाघर जाना चाहिए, और क्योंकि वहाँ पर आपको चाहिए और ज़्यादा अट्रैक्शंस और हमारे प्यारे जीव जंतुओं के लिए भी नई सुविधाओं की आवश्यकता सकता है। तो अब आपको आगे कुछ दिनों में मिलेगा कि चिड़ियाघर में 38 नए एनक्लोजर्स बनाए जा रहे हैं और कुछ नए जीव जंतुओं की प्रजातियां वहां पर जोड़ी जा रही हैं, जैसे कि चीता, जैगवार और मियर कैट जैसे जानवर वहां पर और आएंगे। साथ ही पुराने किले से जुड़कर बनेगा जैव विविधता कॉरिडोर। भाई नेचर के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है और नेचर का पार्ट हम सभी हैं, तो कितना अच्छा लगेगा जब वहां पर नई हो जाएंगे। चिड़ियाघर में दिल्ली शहर की बात हो रही है और वहां पर हम और आप मिलकर घूमकर आएंगे और नए नए हमारे प्यारे से जानवरों को जाकर देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, तो बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। और आपका अच्छा अनुभव अगले गाने के साथ भी रहेगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर प्यारा सा गाना है, नाचने थिरकने पर मजबूर कर देगा। और अगर बाय एनी चांस आप कहीं ट्रैफिक में हैं तो परेशान ना हो, जरा वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए FM रेनबो दिल्ली पर नेहा के साथ।

गाने के जो विजुअल्स है ना बिल्कुल मेरे नजरों के सामने है, बहुत मजेदार ये गाना है फ्रॉम द फिल्म दुल्हे राजा। क्या बात है जी। और अब बात ये है कि हम आपको समय बता दें, सुबह के 8:42 और 40 सेकेंड एग्जैक्टली हो चुके हैं FM रेनबो दिल्ली के स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। और अब आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे हम ITEP भी कहते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम में, तो आप एडमिशन के लिए 2 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले वेबसाइट का पता आप नोट करें, ITEP.UOD.AC.IN पर आपको जाना होगा। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर आपसे मांगी जा रही है अब वो फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप डिटेल को पूरा भरें, फॉर्म को पूरा कर लें, पूरी जानकारी पढ़ लें, और जो वहां पर और निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो फीस को लेकर हो या फिर किसी और बात को लेकर हो, वो आप जरूर कीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब पूरा हो जाए उसे भर के एक प्रिंट आउट आप जरूर ले लीजिए और अपने पास सुरक्षित उसको रखिए। और आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे आगे आने वाले आपके सभी कामों के लिए। आप बहुत लगन के साथ जीवन में पढ़ाई जरूर कीजिए, ये कहीं ना कहीं जीवन में जरूर काम आती है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

इट्स 8:53 बाय द रेनबो क्लॉक. टाइम हो गया है आपको बताने का कि आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप सुनेंगे. तो अब से कुछ ही देर बाद ठीक 9 बजे होंगे हिंदी में समाचार, और 9:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और ज्योति आनंद इस कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगी. साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज के फोन इन कार्यक्रम का क्या विषय रहेगा, क्या समय रहेगा. सो दोपहर 3 से 4 के बीच में आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर का सीधा प्रसारण. ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है. इसका विषय रहेगा डिजीजेज इन रेनी सीजन. आज के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता. आप सीनियर डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन है. इस कार्यक्रम का संचालन होगा कंचन कनन के द्वारा. तो ये कार्यक्रम आप जरूर सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है. आप इसमें फोन और मैसेजेस के माध्यम से अपने सवाल डॉक्टर साहब तक पहुंचा सकते हैं, और जानकारियों का पूरा इंतजाम यहां पर आपके लिए रहेगा. इसके बाद शाम कहेंगे हम तो 4 जब बज जाते हैं, तो समाचारों के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अल्फा जेन. और आज इसमें आप एक विशेष बातचीत सुनने वाले हैं दो एंकर्स के बीच में. हमारी जो बाहर रहेंगी एंकर स्टूडियो के बाहर, वो जाएंगी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. पहुंचकर वहां हमारे जो इन हाउस एंकर होंगे उनके साथ क्या बातचीत होगी, इंपॉर्टेंट बातें आपको जर्नलिज्म के बारे में पता चलेंगी. तो ये जानकारी आप जरूर आप इसको सुनिएगा, और इस जानकारी का भरपूर फायदा भी उठाइएगा. फिलहाल मैं किस बात का फायदा उठाऊं भाई, देखिए जैसे ही आपके साथ बिछुड़ने का मौका आ जाता है ना, मुझे थोड़ा सा तो

परेशानी होती है, अच्छा सा नहीं लगता। बस हाँ, फिर अपने आप को समझाने के लिए ये जरूर सोच लेती हूँ कि अगले कार्यक्रम में आपके साथ जरूर मिलने आना होगा। तो वही खुशी, वही एक्साइटमेंट मन में लेकर मैं चल पड़ती हूँ अपने सफर की ओर। और आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी जरूरी चीज है। हमारा देश, हमारा शहर, हमारा घर सिर्फ हमारा ही है, तो हमें ही करना है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ नेहा को दे अनुमति और ये मस्ती भरे गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। नाचिए थिरकिए एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।

9 बज चुके हैं और पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में आज लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधित संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा फिर शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल SSB के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं को 2500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया है। उस पर 1 करोड़ रूपये का इनाम था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। ओडिशा में लगातार हो रही मॉनसून की वर्षा के कारण बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जिससे राज्यों के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और अंत में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भोरोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: लिसनर्स, गुड मॉर्निंग फिर से, एंड आपका स्वागत भी फिर से। आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं, और अभी जो आपने जानकारी सुनी, पता तो लग गया आपको कि दिल के तराने, गाने नए पुराने आप सुनने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ नए गाने सुनाएंगे और कुछ बहुत खूबसूरत से पुराने गाने सुनाएंगे, जो आपको ले जाएंगे उसी एरा में जिसमें हम बहुत मज़े करते थे। मज़े तो आज भी करते हैं, मगर हाँ, उस टाइम का मज़ा ही अलग था। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक रॉकिंग हैपनिंग से, नंबर से, जो है संजय दत्त जी का गाना, अभी लेटेस्ट मूवी से ही है। तो जस्ट एंजॉय दिस सॉन्ग, हवा हवा।

आपको पता है एक अच्छा दिल कौन सा दिल होता है जो दूसरों को माफ़ कर देता है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो भी आप गाना सुनने वाले हैं माई हार्ट इज़ बीटिंग, ये लता जी ने गाया है। नहीं, इसे प्रीति सागर ने गाया है और इसी गाने के लिए उनको फिल्म फेयर का विशेष पुरस्कार भी मिला था। तो बहुत कम मतलब ऐसे गाने होते हैं जो दिल पर राज करते हैं और हमारे दिलों को खूबसूरती से भर देते हैं। तो ये वैसा ही

गाना था, तो बस ये करेक्शन करनी थी मुझे कि इसे लता जी ने नहीं, इसे प्रीति सागर ने गाया, और आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आया होगा। सुनते रहें दिल के तराने, गाने नए पुराने, और बस एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद गानों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जुड़े रहिए 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर FM रेनबो की।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

लिसनर्स, बस जाने का समय नज़दीक आ चुका है, तो आपको बता दूं कि स्टूडियो में आ चुकी हैं पूजा आनंद, 10:02 आपके साथ होंगी लेकर मैचलेस म्यूजिक आर, उसके बाद 11:02 से मीना जैन होंगी आपके साथ लेकर बॉलीवुड ट्रेस, बॉलीवुड की सारी ताज़ा तरीन खबरों के साथ वो आपके साथ होंगी, 12:02 से आप सुनेंगे फिर से पूजा आनंद को विद द शो प्ले इट कूल, 1:02 से मीना जैन आपके साथ जुड़ेंगी रेनबो हेल्पलाइन में, और 2:02 से स्वाति गुप्ता आपके साथ जुड़ेंगी लेकर आशियाना, और आपका पूरा दिन आकाशवाणी रेनबो पर यूं ही शोज एंजॉय करते रहिए। फिलहाल मेरे जाने का समय आ चुका है, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे फिर कल इन्हीं एयरवेज पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।

0: but don't know where they've gone. Let's take a little break and come back with the songs on the Matchless Music Hour, only on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, समय आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हिंदी में मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में आज लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधित संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा फिर शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं को 2500 रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।

झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 30 हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने और बाघों की घटती संख्या की रोकथाम के लिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। ओडिशा में लगातार हो रही मानसून की वर्षा के कारण बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दोनों को बधाई दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: और वाणी अगर रिलेटेड हो बॉलीवुड ट्रेल से तो फिर बात ही क्या है। बॉलीवुड में न जाने ऐसा क्या जादू है कि वहाँ की गलियां, चौराहे, नुक्कड़ मोड़ सभी कुछ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। करते हैं ना, तो चलिए करते हैं धूम धड़ाके से शुरुआत आकाशवाणी एफएम रेनबो पर कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स की। आपके साथ हूँ मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की डेफिनेटली यस बहुत बड़ी फैन।

जय जय शिव। ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा इस जहान में, मुझे लगता है, जो शिव में अपना गुरु ना देखता हो। आज सुबह ही जयपुर में मेरे एक दोस्त है विजय गोलेचा जी, उसने बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, मुझे लगा आपसे शेयर कर लूं। लिखते हैं भाई, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं, इसलिए मेरा गुरु सिर्फ एक नहीं। इस जीवन के सांसों के कारोबार में कभी कोई क्षण ऐसा होता नहीं जिसमें नया कुछ मैं सीखता नहीं। ये वक्त ही हर वक्त अपनी एक नई सीख देकर जाता है, मगर वो क्या नहीं जो हमने अपने जीवन में किसी न किसी से कुछ नया सीखा नहीं। इसीलिए गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं, इसीलिए मेरा गुरु सिर्फ कोई एक नहीं। और ऐसा ही कहती है माधुरी दीक्षित। वो कहती है कि मैंने गुरु की छवि बिरजू महाराज और सरोज खान दोनों में ही देखी है। अर्जुन कपूर को अपना गुरु अनुपम खेर लगते हैं। दर्शन कुमार कहते हैं कि नसरुद्दीन शाह से बढ़कर मेरा कोई और गुरु नहीं है। राहुल भट्ट को अपना गुरु अनुराग कश्यप में दिखाई देता है, तो वहीं अली फजल कहते हैं कि सौरभ सचदेवा जैसा कोई गुरु मुझे आज तक नहीं मिला है। और इन सब लोगों ने एक ही बात कही है, और वो ये है कि इन सब गुरुओं ने सीख बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के दी है, जिससे हमारा जीवन बेहतर और सुखद हो सके। तो सभी गुरुओं को दिल से मन से प्रणाम, और गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।

श्री राम, विराट राम और विक्राल रावण की रामायण। जी हाँ, और अब आ गई है रामायण के ट्रेलर की नई रिलीज डेट। नितेश तिवारी, जो कि जाने जाते हैं चिल्लर पार्टी, भूतनाथ, दंगल, छिछोरे और बवाल जैसी पिक्चरों से, उनके रामायण पार्ट वन ट्रेलर का हमें और आपको बेसब्री से इंतजार है। रणबीर कपूर, सई पल्लवी, यश और सनी देओल जैसे सितारों से सजी नितेश तिवारी की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का ट्रेलर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ ही देखने को मिलेगा, यानी कि कल। जी हाँ, कल स्पाइडरमैन फिल्म रिलीज हो रही है और उसी के साथ रिलीज हो रहा है रामायण का ट्रेलर। 30 जुलाई बृहस्पतिवार सुबह 4:15 पर वर्ल्ड वाइड रामायण का ट्रेलर रिलीज होगा। दोस्तों, एक बात पे जरा गौर फरमाइएगा, ये सारी बातें ना ट्रेलर के लिए हो रही है, फिल्म की नहीं हो रही है। जी हाँ, दो भाग में बन रही है रामायण। पार्ट वन दिवाली 2026 और पार्ट टू दिवाली 2027 में दुनिया भर के सिनेमा पर्दों पर रिलीज होगी। यश जो है वो प्ले कर रहे हैं लक्ष्मण का रोल, सनी देओल हनुमान जी का, और साउथ के सुपरस्टार यश प्ले कर रहे हैं रावण का रोल, साई पल्लवी है सीता मैया और रणबीर कपूर है श्री राम की भूमिका में। वैसे आपको किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है, सनी देओल को एज हनुमान देखने में या फिर रणबीर कपूर को एज श्री राम देखने में?

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

रत्नागिरी रेनबो पर कार्यक्रम है बॉलीवुड ट्रेल्स। कुछ याद आया इस ढोलक की छाप से, इस धुन से, इस संगीत से? सच सच बताओ, कितने लोग झूमे, झूमने शुरू हुए?

अभी जयपुर एक शादी में गई तो जो छोटा महिला संगीत होता है घर घर का, उसमें सबसे पहला गाना जो बजा वो ये था। 38 साल पहले गंगा जमुना सरस्वती का ये गाना आज भी महिला संगीत में सदाबहार है। लता जी की आवाज, अनु मलिक जी का संगीत और इंदिवर की कलम ने जादू अभी तक बिखेरा हुआ है।

अलग सी ना मस्ती है इस गाने में। क्यों दोस्तों, ऐसा लगता है कोई देसी मिट्टी की खुशबू सी आ रही है, शादी की मस्ती है, ढोलक की थाप है, और फिर न जाने क्यों इस गाने से कुछ अपनापन झलकता है। तो चलिए अब ये बताइए, विक्रांत मेसी अगर विलेन के रूप में आ जाए तो क्या आपका ये जो अब तक का उनके साथ अपनापन वाला फील है ये बरकरार रहेगा? भाई ऐसा है, अजय देवगन की फिल्म चौहान में 12वीं फेल नेशनल अवार्ड विनर विक्रांत मेसी विलेन नजर आने वाले हैं। उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होने वाली अब तक की जो जानकारी है कि जब अनाउंसमेंट हुई थी तो बॉलीवुड गलियारों में काफी हलचल हुई थी। अजय इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर के रूप में नजर आने वाले हैं। कश्मीर के बैकड्रॉप पर यह फिल्म सेट है, और जब चौहान फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था तो समझ आ गया था कि अजय एज ऑलवेज एक दमदार कैरेक्टर निभा रहे हैं, और विलेन के रूप में अब 4 चांद लगाएंगे विक्रांत मेसी। वेल लेट्स सी क्या होता है।

दोस्तों, आज है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। तो चलिए आप बताइए क्या लगता है आपको। ओ, ये मेरा सरताज वाला क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। जी हाँ, ये तो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, यूं ही बस मन में आ गया कि आपके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री का बाघ कौन है जो अभी आया, सिंघम यानी कि

या फिर टाइगर सीरीज का जो एक्टर है हमारा सलमान खान, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, या फिर हमारा टाइगर श्रॉफ जो कि बागी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है भाई, सलमान खान का अंदाज जरा दबंग है इसलिए टाइगर ऑफ बॉलीवुड कह सकते हैं? अजय देवगन जैसे ही पर्दे पर आते हैं, न जाने उनमें क्या आ जाता है कि वो अपने आप ही एक गरजने वाले बाघ बन जाते हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म का नाम बागी है, बट बाकी अभी थोड़ी ज्यादा जरूरत है और मेहनत करने की। भाई मुझे तो लगता है फॉर मी इट्स अजय देवगन, आपको क्या लगता है? तो चलिए अब क्योंकि हमने बात कर ही ली है तो हम सवाल पूछ ही लेते हैं कि हमारे आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल क्या है। तो जरा कान पास में ले आइए, थोड़ा और हाँ एकदम क्लैरिटी के साथ जरा सुनिएगा। बॉलीवुड फिल्म का नाम बताना है जिसका नाम सबसे लंबा है, और लंबा शब्दों में अक्षरों में नहीं। जी हाँ, बॉलीवुड फिल्म का वो नाम जो सबसे लंबा है शब्दों में और अक्षरों में नहीं। देखते हैं क्या करते हैं अब आप लोग।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

और मैं हूँ आपके साथ मीना जैन। अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में अब एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके फैन हम और आप दोनों ही है, और जो भी सिनेमा को पसंद करता है वो भी इसे एक क्रिटिक के रूप में सराहता है। जी हाँ, 20 साल पहले 2 जुलाई 2006 को रिलीज हुई थी विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा। विशाल ने ओथेलो को, विलियम शेक्सपियर के इस नाटक को, उत्तर प्रदेश के परिवेश में पेश किया था। राजनीति, अपराध, रोमांस, धोखा, सबको मिलाकर एक जबरदस्त कहानी बुनी। अजय देवगन, सैफ अली खान, करीना कपूर, कोंकणा सेन, विवेक ओब्रॉय की बेहतरीन एक्टिंग से सजी इस फिल्म को आलोचकों की भी खूब तारीफ मिली, और ये ओमकारा हिंदी सिनेमा के सबसे पॉपुलर ड्रामा फिल्मों में से एक बन गई। 2003 में बनाई उन्होंने मैकबेथ पर मकबूल, हैमलेट पर बनाई हैदर जो कि रिलीज हुई 2014 में। जी हाँ, तीनों फिल्मों को भारतीय सिनेमा के साहित्य पर आधारित बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। ओमकारा में सैफ अली खान ने दिया था एक जबरदस्त सरप्राइज, क्योंकि चालाक लंगड़ा के किरदार में देखकर लोग हैरान हुए थे। अक्सर एक रोमांटिक सॉफ्ट हीरो के रूप में नजर आने वाले सैफ अली खान चालाक लंगड़ा के किरदार में खूब हिट हुए और खूब तारीफ बटोरी, और ऑफ कोर्स पुरस्कार भी। अजय देवगन ने एक ताकतवर ग्रामीण नेता की स्थानीय बोली और बॉडी लैंग्वेज को अपनाया था। वेल, एज ऑलवेज ऑन स्पॉट रियल ही लगे। 3 नेशनल अवार्ड से सम्मानित ये फिल्म, जिसमें कोंकणा सेन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला, स्पेशल जूरी अवार्ड मिला और बेस्ट ऑडियोग्राफी मिला इस फिल्म को ओमकारा।

डे टू यू। आज संजू बाबा का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो हम सबकी तरफ से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, मुरली प्रसाद शर्मा यानी कि मुन्ना भाई MBBS या फिर वास्तव में बलराम राकेश, संजय बाबा छाए रहे, छाते रहे और छाते रहेंगे। सुनील दत्त और नरगिस के पुत्र संजू बाबा, कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इनकी जिंदगी के। जानते हैं, जब बहुत छोटे थे किडनैप हो गए थे, जी हाँ, लेकिन वापस लौटा दिया गया था इन्हें सही सलामत। बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर बाद में हम सभी जानते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जाके वहां पे छोड़ा। और तो और, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार इनके पिता को कहा था, इतने रिबेलियस को जरा आप एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दीजिए। और किस्सा बताऊं इनका, सलमान खान ने इन्हें एक बार बहुत बढ़िया महंगी कार दी, संजू बाबा ने चाबी उठाई, दरिया में फेंक दी और गाड़ी वहीं कितने दिन तक खड़ी रही। वेल, संजय दत्त को गोल्ड मेडल मिल चुका है फॉर बीइंग द एक्सेप्शनलिस्ट एयर गिटारिस्ट। जी हाँ, तबला भी कमाल का बजाते हैं। और जब ये जेल में थे तो ट्रैश कैंस और मड पॉट्स के साथ में वेट लिफ्ट करते थे ताकि हिट एंड फिट रहे। साथ ही वहां पर इन हाउस प्रिजन रेडियो प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते थे ताकि अपने साथ साथ औरों का भी एंटरटेन करते रहे। हम सब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप यूं ही स्वस्थ और मस्त रहें, पर्दे पर आते रहें और हम सब का एंटरटेनमेंट करते रहें। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।

बद्रुद्दीन जमालुद्दीन काजी, क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या कभी आपने इनका नाम सुना है? वैसे आपको बता दूं, हम सबके फेवरेट रहे हैं ये। जैसे ही पर्दे पर आते थे, पेट में गुदगुदी अपने आप होने लगती थी, और फिर जब ये एक शराबी वाली एक्टिंग करते थे तो लगता था न जाने सेट पर आने से पहले कितनी बॉटल्स उड़ेल कर आए हैं। और शायद इसीलिए इनका नाम भी पड़ा वो जो अब मैं बताने वाली हूँ, जॉनी वॉकर। जी हाँ, नवंबर 11 1926 को जन्मे थे, 29 जुलाई 2003 को साथ छोड़ गए थे। इंदौर में जन्मे थे, ग्रेटेस्ट मोस्ट लव्ड कॉमेडियंस रहे हैं ये अब तक। सीआईडी, प्यासा और मधुमति और शिखर और न जाने ऐसी कितनी पिक्चरें जिसमें इन्होंने अपने किरदार से हम सबको हंसाया है, लुभाया है। जानते हैं कि मुंबई आके सबसे पहले इन्होंने एक बस कंडक्टर का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी ये केवल कंडक्टर नहीं करते थे, हर एक पैसेंजर को अजीबोगरीब नाम से एक्टिंग कर करके बॉडी लैंग्वेज से न जाने कैसे कैसे बुलाते थे कि भाई तुम्हारा बस स्टॉप आ गया है, और वो भी ऐसे ही अनाउंसमेंट नहीं, बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से। और तभी इन्हें नोटिस किया बलराज साहनी साहब ने, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गुरुदत्त जी को, और बस उसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। इतना शौक था जॉनी वॉकर साहब को पिक्चरों में काम करने का कि जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती और उनका फेवरेट एक्टर कोई स्टंट करता तो घर आके उस स्टंट को इनैक्ट करते थे, कोशिश करते थे करने की। और जब इन्होंने गुरुदत्त

बच्चे के सामने एक शराबी की एक्टिंग की तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा नाम है जॉनी वॉकर। 300 से ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया और एक समय ऐसा आया जब गुरुदत्त साहब छोड़ गए और इन्हें भी अजीबोगरीब किरदार वाली पिक्चरें मिलने लगी तो इन्होंने कहा कि जो कॉमेडियन एक एक्ट है जॉनरा है मैं उसकी इंसल्ट नहीं करूंगा और मैं अब एज अ कॉमेडियन नहीं काम करूंगा। लेकिन जब तक इन्होंने काम किया पर्दे पर छाए रहे हंसाते रहे और एक ऐसी अमिट छाप हम सब पर छोड़ गए जो कभी भी जो भी सिनेमा प्रेमी है वो भूल नहीं सकता। जॉनी वॉकर साहब।

0: ही बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार
0: जी,
1: हिमा जी।
0: कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ जी,
0: सो मेरे प्यारे
1: और आपका
0: श्रोताओ,
1: शो सुनकर और भी अच्छी हो गई हूँ
0: थैंक यू
1: मैं
0: सो मच, थैंक यू सो
1: आपका।
0: मच। पहचानिए कि आज हमारे साथ सरताज बॉलीवुड का कौन बना है? वेल, मिसेस धर्म भाटिया। जानते हैं दोस्तों, .11:30 पे इनका जवाब, और वो भी बिल्कुल सही। मैंने आपसे पूछा था, ऐसी बॉलीवुड फिल्म का नाम बताना है जिसका नाम सबसे लंबा है, अक्षरों में नहीं शब्दों में, और अधिकतर जो गलती करी वो सब ने अक्षरों वाला नाम, यानी कि एल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है वो लिखा। तो मिसेस धर्म भाटिया, बताइए क्या है सही जवाब?
1: हाँ जी, 2 पैसे की धूप, 4 पैसे की बारिश।
0: यस। तो इसमें थोड़ी सी गलती ये है, 2 पैसे की धूप और 4 आने की बारिश। 2009 में ये फिल्म आई थी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय यस दीप्ति नवल, और इसमें मनीषा कोइराला ने इनेक्ट किया था। तो इतनी जल्दी ये जवाब आपके पास कैसे पहुंचा, ये हम सब जानना चाहते हैं। सच बोल
1: हेलो,
0: सकती हैं? हाँ, इतनी जल्दी आपके पास ये जवाब कैसे पहुंचा, ये हम सब जानना चाहते हैं, और आप सच बोल सकती
1: ये
0: हैं।
1: सॉरी जी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो गूगल से ही पूछ कर जवाब दिया
0: जी
1: है।
0: जी
1: हाँ
0: जी तो सभी ने देखा होगा, ऑनलाइन सर्च किया
1: जी, हाँ
0: होगा,
1: जी। ओके,
0: लेकिन वो
1: बहुत पुरानी
0: सही।
1: पिक्चर है तो
0: जी, लेकिन
1: इतना
0: वो
1: ज्ञान भी नहीं था तो पूछ कर
0: बिल्कुल
1: दिया जवाब।
0: बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि आपकी तरह सभी ने ऑनलाइन सर्च किया था, लेकिन उन्होंने जो मेरा सवाल था वो सही से नहीं सुना। तो जानती हैं मिसेस धर्म भाटिया, आपके साथ दो और लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वो है
1: हाँ
0: हरीश
1: जी,
0: गौर मेरठ से और बसंत तोमर मेरठ से, लेकिन इनका
1: हाँ जी, हाँ
0: जवाब
1: जी,
0: आया 11:36 और 11:37 पर।
1: हाँ जी, हाँ
0: तो
1: जी।
0: अब ये तो हुई बात फिल्मों की, इतनी फास्ट जो आपने टाइपिंग की है, क्या इसने भी कोई रिकॉर्ड हासिल किया है क्या?
1: हाँ जी,
0: इतनी फास्ट जो आपने नाम टाइप किया है, इसमें भी क्या आपने कोई रिकॉर्ड हासिल किया है?
1: नहीं, मैंने रिकॉर्ड हासिल नहीं किया क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी मेरे को आती ही नहीं है असल में।
0: पर इतनी जल्दी जल्दी
1: एक
0: आप टाइप कर
1: हमारे
0: लेते हैं?
1: लिसनर है,
0: जी
1: ये बिहार के सरफराज
0: ओके।
1: आलम जी, वो
0: जी जी जी
1: रिकॉर्ड करते रहते हैं मेरी बातें और अपनी बातें भी, बड़े अच्छे लगते
0: आहा,
1: हैं। ऐसे बेटे जैसे प्यार मिलता है मेरे को लगता है उनसे, तो
0: हाँ हाँ हाँ
1: मेरे को
0: हाँ
1: रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती असल
0: नहीं,
1: में।
0: सो
1: हाँ
0: मेरा रिकॉर्ड से मतलब था आपने ना बहुत फास्ट टाइप किया, तो
1: जी,
0: आपकी टाइपिंग इतनी फास्ट हो गई है जवाब दे दे
1: ये
0: के।
1: फास्टिंग तो हम टीचिंग में रहे हैं तो रिटर्न
0: आहा,
1: में तो मतलब काफी प्रैक्टिस हो जाती है, तो
0: क्या
1: इसलिए
0: बात है,
1: फास्ट लिखा भी जाता है।
0: आप टीचर हैं और आज गुरु पूर्णिमा है, तो आपको
1: जी जी
0: मेरा
1: मैं
0: वंदन, आपको
1: तो, हाँ
0: मेरा
1: जी,
0: प्रणाम।
1: थैंक यू थैंक यू। मैं तो
0: तो
1: रिटायर्ड हूँ, 7 साल में रिटायर हो गई थी मैं, पर
0: जी जी जी जी
1: अभी आप जैसों के शो सुन के मैं एंजॉय करती हूँ, लाइफ
0: मुझे
1: अपने एंजॉय कर रही
0: तो
1: हूँ,
0: मुझे तो
1: बहुत ही
0: ये
1: मजा
0: जान
1: आता है, बहुत ही अच्छा लगता
0: मुझे तो
1: है।
0: ये जानना है कि आपको अपने सबसे पहले गुरु की कौन सी याद याद है?
1: पिक्चर,
0: नहीं, आपके जो गुरु होंगे, आपके भी तो कोई गुरु रहे होंगे ना जिनको
1: हाँ जी,
0: आप
1: हाँ जी,
0: गुरु
1: बिल्कुल।
0: मानते
1: हमारे
0: होंगे।
1: गुरुजी थे, सबसे पहले मेरे 5th क्लास में बलवंत कौर जी थे, जो
0: जी
1: मेरे को प्यार भी करते थे और बहुत अच्छे लगते थे। फिर 10th में आके हमारी मैथ की थी, इंग्लिश की मैडम थी, फिर JBT की मैंने सुजीत कौर मैडम थी, तो जिन्होंने मैं इंस्पायर हुई हूँ और मैं आगे बढ़ती रही हूँ, तो
0: क्या बात है,
1: आई
0: चलिए
1: एम
0: फिर
1: वेरी
0: तो आज
1: प्राउड ऑफ
0: बहुत
1: दोस्त।
0: अच्छे दिन हमारी एक गुरु से बात हुई है। आपका आने वाला समय और दिन बहुत अच्छे बीते, आप स्वस्थ
1: थैंक
0: रहें,
1: यू थैंक यू
0: सेहतमंद रहें,
1: थैंक यू रीना
0: और
1: जी,
0: यूं
1: थैंक
0: ही आकाशवाणी FM रेनबो सुनती रहें। थैंक यू सो मच
1: यू,
0: हमारे
1: हाँ
0: साथ जुड़ने के लिए, और
1: जी,
0: इसी
1: थैंक
0: के साथ दोस्तों अब समय है इजाजत लेने का। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट आफ्टरनून एंड एंजॉय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी। राज्यसभा की कार्यवाही प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस निलंबित किया। दिल्ली सरकार ने पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। झारखंड में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली मिस्र बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। ओडिशा में भी लगातार वर्षा से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का संकट, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर

हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के बराबर कार्रवाई में पिछले दो दिन में मरने वालों की संख्या 30 हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण को मजबूत करने वाले सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलबीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दोनों को बधाई दी। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के हिंदी में मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: आकाशवाणी रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, जिंदगी छोटे छोटे लम्हों से मिलकर बनी है। हर इंसान अपनी जिंदगी के इन लम्हों को खूबसूरत बनाना चाहता है, खुशनुमा बनाना चाहता है। हम इन लम्हों में और इन लम्हों से खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या चाहने भर से जिंदगी खुशनुमा हो जाती है? और फिर क्या जिंदगी में खुशी हमारी वजह से आती है या हम दूसरों की वजह से खुश रहते हैं? कई सारे सवाल और कई सारी बातें हैं जिनका जवाब हम ढूंढते रह जाते हैं। वहीं बात ये भी निकल कर आती है कि वो कौन लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती हैं। क्या उनके पास जादू की कोई छड़ी होती है जिसे घुमाते ही सारी टेंशन सारी चिंताएं खत्म हो जाती है और जिंदगी खुशनुमा खूबसूरत बन जाती है? जी हाँ, छोटी सी क्यूट सी खुशी, और इस खुशी को पाने के लिए ये इतनी बड़ी जिंदगी भी छोटी सी लगती है। तो कैसे हम इस खुशी को अपना बना सकते हैं, कैसे हम जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे आज हम हेल्पलाइन प्रोग्राम में, क्योंकि आज का टॉपिक है जिंदगी को खुशनुमा कैसे बनाएं। और आज इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हैप्पीनेस कोच श्री सतीश कुमार कौशिक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार प्रियंका जी, और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी मेरा नमस्कार।
2: जी बिल्कुल। से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि खुशी जब होती है तो सबको पता है कि खुशी हमें चाहिए, लेकिन एक्चुअल में खुशी का मतलब क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं हम इस शब्द को और इस फीलिंग को?
3: जी देखिए, आपने मेरे ख्याल से हमारे सवाल का जवाब भी दे दिया है। एक तो फीलिंग है ये, यानी हमारे अंदर इमोशंस जो होती हैं, एक इमोशन भाव जो है, फीलिंग जो है, वो एक खुशी की फीलिंग भी एक है, उसमें दुख की फीलिंग अलग है और तरह की फीलिंग, घबराहट की फीलिंग अलग होती है। तो उसमें इसी तरह से खुशी की जो फीलिंग है वो भी एक हमारी इमोशन है। सेकेंडली, आपने ये कहा कि, और ये सच्ची बात भी है कि हमारी जिंदगी जो है छोटी छोटी खुशियों से बनी हुई है, यानी खुशियां छोटी होती हैं, दुख लंबे होते हैं।
2: बहुत बड़ी बात है।
3: जी हाँ जी। तो ये छोटी छोटी खुशियों से जिंदगी बनी हुई है, तो अगर हम इन छोटी छोटी खुशियों की तरफ ध्यान दें और इन्हीं को अच्छी तरह से रखें, उन्हीं को एंजॉय करने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी।
2: जी हाँ बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी को खुशनुमा कैसे बनाएं, और अगर आप भी अपना सवाल हम तक भेजना चाहते हैं, कई सारे सवाल आपके पास हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे खूबसूरत और खुशनुमा बना सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है

0: आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी को खुशनुमा कैसे बनाएं, और हमारे साथ हैं हमारे हैप्पीनेस कोच श्री सतीश कुमार कौशिक जी। सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सर, अगर खुशी को देखा जाए तो खुशी के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग रहते हैं
1: जी।
0: हो सकता है एक बच्चा 30 रुपए का बर्गर खा के भी, मतलब बर्गर उसे दिलाया जाए तो वो खुश हो जाए, लेकिन एक बच्चा उसको 150 रुपए का बर्गर भी दिया जाए वो खुश ना हो। कई बार कोई इंसान 250 का सूट लेता है उसमें खुश हो जाता है, वहीं कई बार ऐसा होता है कि 2500 का सूट लेने के बाद भी खुशी नहीं मिलती। तो देखा जाए तो सभी का जो खुशी का बैरोमीटर है वो अलग अलग रहता है। तो अब मेरा बैरोमीटर क्या है, ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग बैरोमीटर रहता है, तो हम ये कैसे पहचाने कि हमारा बैरोमीटर क्या है और इस बैरोमीटर को पहचानना कितना जरूरी है
1: जी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये
0: जी।
1: यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने कहा है कि हर एक का मापदंड अलग अलग है, लेकिन जब हम खुशी की बात करते हैं तो उसके कुछ बेसिक का होना भी बहुत जरूरी है। वो बेसिक्स हैं, सबसे पहले जो मनुष्य है, इंसान है, जो उसकी बेसिक नीड्स का पूरा होना बहुत जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान। तो एक स्टेज के बाद जब उसकी वो जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब वो अपने बारे में सोचने लगता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, मुझे और कैसे अच्छी तरह से अपने आप को बेटर करना है ताकि मैं खुश हो सकूं। तो वहां से जो खोज है खुशी की वो शुरू होती है। तो पहले तो वो खोज होने के बाद, तो फिर आपको दूसरा ये है कि आपने कोई चीज, ये मोमेंट्री खुशी है, यानी आपने

0: नई घड़ी खरीद ली, आपने नया सेलफोन ले लिया है, या आपने कुछ खाना खा लिया, तो वो थोड़ी देर के लिए यू आर हैप्पी कि भाई आपको टेस्ट अच्छा लगा, तो आप खुश हैं उसके बाद. लेकिन फिर उसके बाद फिर वही दूसरी अपनी पुरानी सिचुएशन में चले जाते हो आप. उसके लिए फिर दूसरी चीज आप ढूंढते हो, दूसरा आपका जो स्टेटस है उसके हिसाब से भी, क्योंकि कुछ लोगों की नीड्स पूरी नहीं हुई है अभी, तो उनको जब और नीड्स पूरी होती हैं तो वो ज्यादा फील करते हैं खुशी को, उनको ज्यादा खुशी होती है. कुछ लोगों की नीड्स पूरी हो चुकी हैं तो उनको ज्यादा करने पे उतनी ही खुशी होती है. तो ये नीड्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी नीड कितनी है. और दूसरा जैसे हम लोगों ने बात किया, तो ये तो चॉइस है हमारी कि हम खुश रहना चाहते हैं. तो हम लोग जब खुश रहना चाहते हैं और जो भी काम करते हैं उसको अगर बहुत ध्यान से सीरियसली अगर उस पर हम ध्यान देते हैं तो हम ज्यादा खुश होने की कोशिश करते हैं. यानी मैंने सोचा मुझे खुश होना है तो मैं उस पर ज्यादा एफर्ट करूंगा और मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी. अगर मैंने एफर्ट ही नहीं किए, मैं खुश नहीं होना चाहता, तो मैं कितनी भी एफर्ट करता रहूं, 2000 के खर्चा कर दूं, 4000 का, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन या खुशी नहीं मिलेगी. तो ये हमारी चॉइस है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें खुशी का एहसास होता है.
1: जी सर, आपने कहा खुश होना और खुशी हमारी चॉइस है, तो क्या जैसे हम अपनी लाइफ के दूसरे टारगेट्स को मैनेज करते हैं, जैसे हमें पढ़ाई कर रहे हैं तो हम मैनेज करते हैं कि हमें अब ये अचीव करना है, अब ये अचीव करना है. जॉब में भी रहते हैं तो हमें ये होता है कि अब हमें ये अचीव करना है, ये कोर्स लेंगे तो ये अचीव करना है. क्या ऐसे ही हम खुशी को भी मैनेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म खुशीज, लॉन्ग टर्म खुशीज? शॉर्ट टर्म पूरी हुई, अब एक लॉन्ग टर्म भी होनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही शॉर्ट पूरी हुई तो हम दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े, ऐसा कुछ? क्या इससे हम खुश रह सकते?
0: देखिए,
1: सिर्फ हम ऐसे करके सिर्फ भाग रहे होते हैं.
0: नहीं, भाग नहीं रहे होते हैं, हम लोग अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं जिंदगी में. देखिए, अल्टीमेट एम जो है मनुष्य का वो खुशी को पाना है, स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस. तो उसी के लिए हम लोग एफर्ट्स करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, एक स्टेज पे पहुंचे, यहाँ तक मैंने पढ़ाई की, तो साथ साथ उसकी खुशी मिलती रहती है. यानी जैसे जैसे हम अचीव करते जाते हैं तो वो खुशी तो हमारे पास आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप 5 साल वाली खुशी को अभी इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आप एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते. देखिए ना, ओल्ड एज में आदमी को क्या चाहिए? अगर उसके पास साधन है, रिसोर्सेज है उसके पास अपने घर को चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, जो फिजिकल नीड्स है उसकी,
1: नेसेसिटीज जो
0: है, जी उसके पास पैसा भी है, उसके पास अपना घर अच्छी तरह से चला सकता है. लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग दुखी हैं. क्यों? क्योंकि जो हमने एनवायरमेंट क्रिएट किया है, यानी एनवायरमेंट क्रिएट करने का मतलब मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको ठीक से पढ़ाया, या हमारे परिवार में उनको अच्छी आदतें सिखाई हैं और वो बहुत अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, अपना परिवार है उनका और वो खुश हैं, तो वो खुशी वहां से मिली मुझे. लेकिन उस खुशी के लिए मैंने सारी जिंदगी भर काम किया, एफर्ट्स किए. तो लॉन्ग टर्म खुशी के लिए आपको धीरे धीरे धीरे कोशिश करके वो बिल्ड करना पड़ता है, तब जाके ओल्ड एज में आप, मेरी लाइफ सक्सेसफुल है या नहीं है या खुशनुमा नहीं है, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अगर वो अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं तो मुझे लगता है कि मैं खुश हूँ.
1: जी बिल्कुल, मैसेजेस की तरफ चलते हैं. मैसेजेस आए हैं, मिसेस भारद्वाज हैं, उन्होंने पूछा है कि सेल्फ लव कितना जरूरी है खुश रहने के लिए और सेल्फ लव होता क्या है, तो ये जानना चाहेंगे आपसे.
0: देखिए, सबसे पहली बात तो सेल्फ लव का, अपने आप से प्यार करना. जितना आप अपने आप से प्यार करते हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर हम खुशी की बात करें इसके साथ साथ मिला के, तो ये है कि अगर हम खुश नहीं है तो किसी को खुश नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल सही.
0: खुशी को ये भी कहते हैं कंटेजियस होती है, ये फैलती है. खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होते हैं. तो इसी तरह से अगर आप अपने आप को प्यार करते हो, जैसे ही आप अपने आप को प्यार करने लगते हो, अनोइंगली हमें लगता है कि हम प्यार करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, रोज नहाते धोते हैं, रोज अपना ध्यान रखते हैं, अच्छी तरह से हम गाड़ी से जाते हैं, सब चीजें. लेकिन क्या हम अपने आप को, जो भगवान ने हमें कैपेबिलिटीज दी हैं, जितनी हम लोगों को क्षमता दी है आगे बढ़ने की, क्या हमने उसको इस्तेमाल किया है? क्या हमने उसको अचीव किया है? देखिए ना, कितना अचीव किया है आपने उन चीजों को, उस पर कभी आप ध्यान देते हो? आप कभी भी चुपचाप बैठते हो तो आपका अपनी तरफ ध्यान नहीं होता है,
1: कहीं और
0: ध्यान होता है. आप चाय पी रहे होते हैं, चाय में कितनी स्मेल थी, खुशबू थी, वो आपको नहीं पता. आपने खाना खाया, उसमें कितना बढ़िया टेस्ट आया, जिसने उसको बनाया आपने उनको थैंक यू करा नहीं करा, या उसमें आज क्या अलग था उस सब्जी में, जो आपने खाई आपको पता ही नहीं है। तो जो आप अपने आप को जब प्यार करने लगते हो, जब आप अपने आप को जानने, प्यार करने का मतलब आप

0: अपने आप को जानते हो और अपने आप का ध्यान रखते हो, क्योंकि देखिए जितने भी हम लोग हैं हमारी जिंदगी का कुछ ना कुछ पर्पज है, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं। हम ये कहते हैं कि इस जिंदगी ने मुझे कुछ नहीं दिया, यानी क्रिप करते रहे हम हर समय,
1: कर्स करते रहते हैं
0: अपने आप को ना कि भाई जिंदगी में मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो हर समय हमारी कुछ ना कुछ डिमांड रहती है कि भगवान ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा, इस चीज का नहीं रखा। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि जो जिंदगी मिली है मुझे ये क्यों मिली है। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि जिंदगी क्यों मिली है, तो आप सोचना शुरू करोगे कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, मेरी जिंदगी का एक पर्पज है। और जब पर्पज मिल जाता है जिंदगी में, तब आपकी जिंदगी शुरू होती है।
1: जी बिल्कुल, लता का मैसेज आया नऊ से, वो कहते हैं कि खुशी बहुत छोटा सा शब्द है और हर इंसान खुशी पाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हाउ टू बी हैप्पी, किस तरह से खुश रहा जा सकता है, इस पर जब सोचने पर आते हैं तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। स्पेशली तब जब हम रिश्तों में बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी रिश्ते सुधर नहीं रहे होते हैं और वहां से खुशी नहीं मिल रही होती है, बल्कि कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव जो चीजें होती हैं, बातें होती हैं या फिर नेगेटिव भाव होते हैं, वो चलकर आते हैं, ऐसे में कैसे खुश रहा जा सकता है।
0: पहली बात तो मैं लता जी से कहना चाहूंगा कि पहली बात छोटी छोटी खुशियों को, यानी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है लेकिन उसके बाद भी जिंदगी है, सारी 100% वो नहीं है। 24 घंटे सिर्फ वो ही नहीं कर रहे आप, उन्हीं को रिजोल्व करने की, उनके पीछे सोचने की वो नहीं कर रहे। आपके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे क्षण है जो खुशी के हैं, उसको पहली बात तो पहले तो उसको एंजॉय कीजिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा प्रियंका जी, बातचीत जब हम करते हैं, बातचीत करने के तीन बहुत जरूरी हैं फंडामेंटल्स, यानी कम्युनिकेशन जब करते हैं ना, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, शब्द कैसे चूज किए आपने, उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। दूसरा, आपके उन शब्दों के साथ आपकी फीलिंग क्या है। मैं यहाँ पे खुशी की बात कर रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज में दर्द है कहीं, तो मैं खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं वैसे ही दुखी हूँ कहीं ना कहीं। तो फीलिंग होना बहुत जरूरी है उसके साथ, भावनाओं का शब्दों के साथ मिलना, सामंजस्य होना, वो बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज आपकी मैच करनी चाहिए शब्दों और फीलिंग से। अगर तीनों में बैलेंस नहीं होगा तो आपके गड़बड़ होंगे, आपके रिलेशनशिप, आप बात ठीक से बात नहीं कर पाओगे और ना ही आप उसको प्रॉपरली आगे लेके जा सकते हो, आपके लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप किसी भी उसको ले लीजिए, यहाँ पे रिलेशनशिप की, लता जी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो ये जब इस तरह के रिलेशनशिप गड़बड़ होते हैं तो वहां पे हम ठीक से बात नहीं करते, यानी मुंह बना के और ऐसे की जबरदस्ती हम लोगों को बात करवाई जा रही है। लेकिन जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि हमें इसको रिजॉल्व करना है, तो आपकी टोन भी बदल जाएगी, आपके शब्द भी बदल जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाएगी।
1: जी बिल्कुल, एक ऐसा ही क्वेश्चन आया है बिहार से, वो लिखते हैं कि उनकी मदर इन लॉ के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिस वजह से जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे सर एक बात मैं भी जानना चाहूंगी, अक्सर हम जब भी इन लॉज के साथ रिलेशंस को देखते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जब सास और बहू का जो रिलेशन आता है उसमें सास और जो बहू रहती है उन्हें बात करनी तो आती है लेकिन अपनी बात को एक दूसरे को समझाना नहीं आता। अभी आपने अभी तीन स्टेप बताए बातचीत करने के, तो क्या ऐसे में खुशी पाने के लिए रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ रिश्तों को समझाना भी, क्योंकि जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा तो फीलिंग्स भी गड़बड़ा जाएंगी, तो ऐसे में अपनी बातों को समझाते हुए कैसे हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं और इस पे काम कैसे किया जा सकता है।
0: पहली बात तो ये वाला रूल जो हम लोगों ने बताया है कि फीलिंग्स, वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज, तीनों को आप ठीक कर लीजिए पहली बात। सेकेंडली, हम लोग जब कभी भी बात करते हैं तो उस बातचीत करने का एक पर्पज होता है। हम अगर आज आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा पर्पज ये है कि आप किस तरह से खुश तरीके से अपनी जिंदगी को बिता सकते हो, हमारा भी पर्पज है। तो उसी की तरीके से जो हम बातचीत कर रहे हैं वो उसी तरह की हमारी बातचीत भी है। ये तो आप देख सकते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो जब भी आप अपनी सास की जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये करिए कि आपने बातचीत क्या करनी है, मुझे
1: किस टॉपिक पे करनी है,
0: किस टॉपिक पे बात करनी है और मुझे किस तरीके से बात करनी है। अगर आपको बात करने में वहां जाके आप घबरा जाते हो, बातचीत नहीं कर पाते, अपनी बात को लॉजिकली नहीं बता पाते हो, तो फिर ठीक से बात नहीं होगी और जो आप चाहते हो कि इसका रिजल्ट ये निकलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको जरूरत है कि पहले प्रिपेयर करो।
1: अच्छा बिल्कुल, जैसे हम
0: प्रिपेयर करो, जी हाँ, जी हाँ, प्रिपेयर करो। जैसे हम प्रेजेंटेशन करने जाते हैं अपने काम के लिए तो हम प्रिपेयर करके जाते हैं, तो जब आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होता है तो आप अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर पाते हो। तो इसी तरह से जब आप वहाँ पे बात करते हो तो उसी तरह से प्रिपेयर करके जाइए कि मुझे किस बात को करना है। आपने देखा हो कि जब ये सास बहू की लड़ाइयां या इस तरह की लड़ाइयां होती हैं तो जो टॉपिक होता है ना, जो प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में बात नहीं होती
1: जी,
0: उसके बारे में लड़ाई नहीं होती। आप पीछे, आपने उस टाइम में मुझे ये कहा था, आपने मेरे पेरेंट्स को ये कहा था, आपने उस टाइम में ये कहा था, यानी जो पुरानी चीजें हैं
1: वो उभर कर
0: वो सबसे पहले वो लड़ाई के लिए वो यूज होती हैं। और जो प्रॉब्लम है आपकी, आपने कुछ चीज चाहिए थी और आपकी उसने दूसरे पार्टनर ने मना कर दिया, उसकी बात नहीं है, आपने उस टाइम ये किया था उस टाइम में वहाँ पे जाके, तो वो गड़बड़ होती है।
1: यानी खुशियों को पाने के लिए भी खुशियों पर काम करना पड़ता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना नहीं मिलती हैं।
1: जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं लड़की को खुशनुमा कैसे बनाएं। और अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे क्या सक्सेस ही खुशी है या फिर खुशी से सक्सेस पाई जा सकती है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये बात होगी वापस आने के बाद।

0: सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन जो पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है।
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 और इस समय हमारे साथ है हेल्पलाइन प्रोग्राम। आज का विषय जिंदगी को खुशनुमा कैसे बनाएं और हमारे साथ है हैप्पीनेस कोच श्री सतीश कुमार कौशिक। सर एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर हर इंसान खुश रहना चाहता है, कोई भी टेंशन नहीं चाहता है। ऐसे में अगर अब लाइफ को देखा जाए तो हमेशा चाहिए हम सक्सेस को नापते हैं कि हम कितना कुछ कमा रहे हैं, हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं। आज हमारे पास एक गाड़ी है, कल हमारे पास दो है, हमारे पास घर नहीं था घर हो गया। इस तरीके से हम इन चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्या एक सफल इंसान खुश रहता है और सफल होने के लिए खुशी कितनी जरूरी है?
2: देखिए, सफल होने के लिए खुशी तो बहुत जरूरी है, सच है। लेकिन यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं वो जो फिजिकल जो सक्सेस यहाँ पे कुछ चीजों का होना, आपने कार खरीद ली या आपने कोई और घर के लिए कुछ सामान वो खरीद लिया
1: जी।
2: ये तो मोमेंट्री, यानी आप ठीक है, आपकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करते हैं, उसके बाद ही आप खुशी देखने की कोशिश करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास है तो आप खुश भी हो, ये जरूरी नहीं है। खुश होने के लिए आपको और कुछ भी करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जैसे आपने कहा कि हमें अपने से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा बेसिक नीड्स के बाद अपने। और वैसे भी अगर हम अपने से प्यार करते हैं तो तभी हम लोगों को एहसास हो पाएगा कि एक्चुअल खुशी क्या है। जितना आप अपने आप को जानने लगते हो तो आप में सेटिस्फेक्शन आती है और आप में खुशी की जो इमोशंस है वो ज्यादा रहती है। तो आपको जैसे जैसे आप अपने से प्यार करना शुरू करोगे तो आपको जो फिजिकल जो यानी खुशियां हैं उनकी बजाय आपको अपने आप को मैं ग्रो कैसे करूं, मैं मनुष्य हूं, अपने आप की ग्रोथ मेरी कैसे होनी चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने बारे में काम करने लगते हो, अपने को ग्रो करने लगते हो, ग्रो करना आपकी नॉलेज बेस कितना बना है, आप लोगों से औरों से बात करते हो, लोगों की कितनी हेल्प करते हो, कितना अपने आप पे काम करते हो कि ताकि मैं और ज्यादा जानूं इस जिंदगी के बारे में और लोगों के लिए मैं काम करूं, तो आपको खुशी महसूस होने लगती है। खाली फिजिकल जो चीजें हैं उन्हीं को इकट्ठा करने से, भाई आपकी नीड एक चीज है ना, आपको एक गाड़ी है, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए, आपको अपने काम करने के लिए चाहिए, तो ठीक है वहां तक ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरी आई तो वो जो एक लॉ होता है ना, जैसे जैसे जैसे एक सेब आपने खाया तो आपको बहुत मजा आया, आपने दूसरा सेब खाया कम मजा आया, तीसरा खाया और भी कम बना, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ जो है ना वो फिजिकल चीजों पे लागू होता है। लेकिन खुशियां जैसे जैसे आपकी बढ़ने लगती हैं तो आप उसी तरीके से अपनी जिंदगी को बनाते हो, उसी तरह के जिंदगी में काम करने लगते हो, तो आपकी खुशी एक तो बरकरार रहती है और बढ़ने भी लगती है। तो उसके लिए अपने आप को जानना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को ग्रो करना, बढ़ाना आगे, वो बहुत जरूरी है
1: जी। बिल्कुल सर, यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को पहचानना भी खुशी को प्राप्त करने का कारण हो सकता है। जैसे अलग अलग कैपेसिटी होती है कि हाँ वो इतना काम कर सकते हैं, अगर मैं अपने आप को टारगेट दे दूं कि मेरी अगले महीने ही 1,00,000 रुपए पे हो जाए तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। ये एक तरीके से किसी की भी मेंटालिटी के ऊपर बोझ हो जाएगा कि वो कहे कि उसकी एक छोटे से पीरियड के अंदर 1,00,000 रुपए पे हो जाए। इस तरीके से ही जब हम रिश्तों में देखते हैं तो रिश्तों को धीरे धीरे करके बनाया जाता है, उनको पनपने के लिए जगह दी जाती है। ऐसे में अगर हम एकदम से अपने ऊपर बहुत सारा बोझ दे दें कि नहीं हमें तो इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से बहुत छोटे से टाइम में ही ठीक करना है तो ऐसे नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारी खुशियों को कम करता है। और हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करते हुए बड़े टारगेट को अचीव करना चाहिए। ऐसे भी हम खुशी को बढ़ा सकते हैं अपनी।
2: देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, कथनी और करनी में मेल होना चाहिए, अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको टेंशन होती है। देखिए, नॉर्मल टेंशन होना, एक तो नॉर्मल टेंशन है वो सबको होती है, मुझे टेंशन है कि मुझे कोई काम करना है, ऑफिस जाना है किसी को, उसको टेंशन है कि मुझे तैयार होकर ऑफिस जाना, तो वो टेंशन पॉजिटिव टेंशन है, वो तो होनी चाहिए सबको
1: जी,
2: इतनी तो। लेकिन अगर आपका काम रोजमर्रा का काम बंद हो जाए, ऐसी टेंशन हो, तो फिर आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, जैसे कथनी और करनी में अगर आपका बैलेंस नहीं है, आपने कहा 1 महीने में 1,00,000 रुपए हो जाए, तनख्वाह हो जाए, तो नहीं होगी ना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप बड़े बड़े सपने देखिए ना, आप खूब सारे देखिए बड़े सपने, लेकिन उन सपनों को छोटे छोटे सपनों में बांटना भी बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे आप उन छोटे छोटे सपनों को, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, तो जो छोटे छोटे सपनों को जब आप पूरा करते जाएंगे तो आप बड़े सपने भी, आपके 1 लाख भी तनख्वाह हो जाएगी।
1: बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी को खुशनुमा कैसे बनाएं, और अगर आप भी अपना सवाल हम तक भेजना चाहते हैं, कई सारे सवाल आपके पास हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे खूबसूरत और खुशनुमा बना सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी को खुशनुमा कैसे बनाएं, और हमारे साथ हैं हमारे हैप्पीनेस कोच श्री सतीश कुमार कौशिक जी। सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सर, ये मैसेज आया है सुरेश का, ये है देहरादून से मैसेज आया है सुरेश का। लाइफ में किस तरह के बदलाव से खुशी को पाया जा सकता है, किस किस तरीके के बदलाव करने चाहिए?
1: देखिए, ये कहते हैं कि खुश होने के लिए कुछ ना कुछ दुख भी होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: यानी मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव सोच के साथ साथ नेगेटिव सोच का होना भी जरूरी है। एब्सेंस ऑफ सैडनेस इज नॉट हैप्पीनेस। तो खुशी होने के लिए आपके पॉजिटिव थॉट भी होने चाहिए और नेगेटिव थॉट भी उसके साथ अगर हो, लेकिन उनमें एक बैलेंस होना चाहिए। तो एक रिसर्च के हिसाब से 3:1 का रेशियो कहते हैं कि 3 पॉजिटिव थॉट हैं आपके और 1 नेगेटिव थॉट है तो आप ठीक हो गए, यानी और अगर उसको थोड़ा सा और बेटर कर लें तो आप खुश हो जाएंगे। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा सुरेश जी से कि जितना पॉजिटिव थॉट रखेंगे, पहली बात तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, जो कि छोटी छोटी खुशियों से बनी हुई है। तो पहली बात तो उन खुशियों को पहचानना शुरू करिए, छोटी छोटी खुशियों को। जैसे ही आप खुश होते हैं तो अपने आप को बढ़िया काम करते हैं, जो आपको कहीं सक्सेस मिलती है तो आपको शाबाश भी कहनी पड़ेगी। तो जिंदगी में जितने पॉजिटिव थॉट्स रख सकते हो आप, जितना अच्छा सोच सकते हो, वो कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई इफ यू कांट स्माइल फेक इट, तो थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे आपको स्माइल आने लगेगी ऑटोमेटिकली, आपकी आदत बन जाएगी वही। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने आप पॉजिटिव होंगे, नेगेटिविटी तो रहेगी, कुछ आपके काम हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं वो तो रहेगा, लेकिन आपने जितना किया है। देखिए, एक दुखों का कारण ये भी है प्रियंका जी, कि जो हमारे पास है ना उसको नहीं देखते हम लोग, जो नहीं है उस पे नजर जाती है हमारी हर समय, मेरे पास ये नहीं है। तो पहले जो आपके पास है, जो मिला है आपको, पहले उसको एंजॉय करिए ना। मैं यहाँ पे आपको ऑफिस के, जैसे ऑफिस में इंक्रीमेंट्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसका अगर 10% या 20% इंक्रीमेंट हुआ है उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: उसको सेलिब्रेट करेंगे, अरे मुझे तो 30% मिलना चाहिए था, मुझे तो 40%, अरे भाई जो 20% मिला है पहले उसको सेलिब्रेट करो ना, फिर उसके बाद सोचेंगे दूसरे को। तो जो आपके पास है जिंदगी में
0: जी,
1: और वो बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है, आप सोचना तो शुरू करो ना।
0: बिल्कुल। दिव्या का मैसेज आया है दिल्ली से, वो लिखती है उनकी पिछली कुछ सालों की बातें उन्हें बार बार याद आती हैं और पुरानी बातों को याद करके वो प्रेजेंट टाइम में खुश नहीं रह पाती हैं, वो इसके लिए क्या करे, कैसे अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाए? दिव्या
1: जी, देखिये जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, जो कई बार होता है एग्जामिनेशन में, आपने देखा होगा आफ्टर एग्जामिनेशन एंग्जाइटी होती है
0: बहुत जी,
1: और पेरेंट्स भी थोड़ी सी एंग्जाइटी का कारण होते हैं उसका, क्योंकि वो पता नहीं क्या होगा। अब जब आपने पेपर दे दिया है तो आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते हो,
0: जो बीत गया है उसे बिसार देना चाहिए
1: जी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बीत गया है, दिव्या जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो पुरानी बात है क्या उनको आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना, लेकिन आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, एक आपके पास मैं ये कहूंगा कि आप एक चीज कर सकते हो कि जो आगे आने वाला है उस पे आपका कंट्रोल है, कि उस आगे आने वाले को मैं कैसे चलाऊं,
0: आने वाला जो वक्त है, जो जिंदगी है,
1: उस पे आप अपना जितना भी अच्छा करना चाहते हो उस पे अच्छा करिए, तो धीरे धीरे जो पुराना है आपका वो भूलते चले जाओगे।
0: जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और अब वक्त कह रहा है कि हमें चलना होगा, तो चलते चलते आप लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे प्लीज?
1: सिंपल, मैंने जैसे पहले तो अपने से प्यार करना शुरू करिए,
0: सेल्फ लव
1: जी हाँ, और जो कंट्रोल नहीं कर सकते जिस चीज को, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए,
0: उसे भूल देना, भुला देना या पीछे छोड़कर आगे बढ़ना।
1: जो पीछे तो जा ही नहीं सकते ना आप जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं है, तो वहां तो जा ही नहीं सकते आप। तो आप आगे की सोचिए ना, आगे वाली आने वाले उसको समय को मैं अपना अच्छा कैसे बना सकता हूँ, उस पर कोशिश करिए।

0: आप खुश हो जाएंगे, खुश रहेंगे। लेकिन चॉइस आपकी है, खुश रहना आपके हाथ में है।
1: जी बिल्कुल, खुश रहना हमारे हाथ में है। और सर आप यहाँ आए और इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
0: थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो।

0: आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: बोली
1: तेरी
0: तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो

0: दोस्तों पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा के कथित पेपर लीक के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। मामले की सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस निलंबित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज के खिलाफ ओडिशा सरकार की याचिका खारिज कर दी। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। कहा क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। वैश्विक बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण को मजबूत करने वाले सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दोनों को बधाई दी है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

प्रोग्राम हम कदम लेकर हाजिर हूं। मैं स्वाति एक बार फिर से आप सभी के साथ में हम कदम बुधवार दोपहर का वो प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते को डेडिकेट करते हैं हम हमारा ये प्रोग्राम। आज हम सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और देखा जाए तो केवल अगर हम गुरु की बात करें तो जिंदगी में बहुत लोग हमारे गुरु बनते हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और जब जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट रिश्ते की बात होती है, जब आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात होती है, आपके हम कदम की बात होती है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोग। और ये सीखना सिखाना ना तमाम जिंदगी चलता ही रहता है। और इसमें देखा जाए तो रोजाना ही एक नई क्लास होती है। वैसे क्लास लगाने का एक और मतलब भी होता है आजकल, लेकिन उसके अलावा जो है ना, हम दोनों जब एक दूसरे के टीचर्स बनते हैं और जिंदगी से जुड़ी बहुत सी अच्छी बुरी बातें एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते भी हैं और एक दूसरे को सीखने में मदद भी करते हैं। जी हाँ, परफेक्ट क्लासरूम अगर कहा जाए ना तो यही होता है, जहां पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को जो है चीजों को समझने में, चाहे वो दुनियादारी से जुड़ी हुई चीजें हों, चाहे वो घर के छोटे छोटे डिसीजन से जुड़ी हुई चीजें हों, छोटा हो बड़ा हो, ये सभी चीजें जो है ना, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं ना, अपने हर अनुभव के साथ कुछ नया सीखते हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। और अगली आवाज बहुत ही खूबसूरत आवाज डोमिनिक सेरेवो की प्ले करने जा रही हूं मैं, फ्रॉम द मूवी रॉक ऑन। आप सुनते रहिए प्रोग्राम हम कदम ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT

0: app now and watch for free.
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने की। जी हाँ भाई, एक दूसरे को आप टीचर भले ही ना माने, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ऑब्वियसली वो आपसे जो है काफी अलग होता है। और यही डिफरेंसेस अक्सर हम कहते हैं कि जिंदगी को मजेदार बनाते हैं, लेकिन यही डिफरेंसेस ना आपको जिंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण भी तो देते हैं। क्योंकि देखिए, जब किसी को जल्दी उठने की आदत हो और पार्टनर को देर रात तक जागने की आदत हो, तो कभी कभी एक दूसरे के टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके जब देखा जाता है ना, तो उसके भी अपने अलग ही फायदे हैं जो समझ में आते हैं। इसी तरह से जब हम बजटिंग की बात करते हैं भाई, मनी मैटर्स जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में जब सेविंग करने वाले को आप चाहे कंजूस कहें, लेकिन उसके अलावा जब सेविंग किए हुए पैसे जो है ना जरूरत में काम आते हैं, तो आपको उसकी बजटिंग की भी जो है ना एक वैल्यू जो है वो समझ में आती है। उसी तरह से कौन सी चीज बार्गेनिंग, यू नो, एक बार्गेनिंग करना जो होता है ना, वो भी हम एक दूसरे से कई बार सीखते हैं। और कई बार आपको जो है बड़ी हैरानी होती है ये देखकर कि जब आपके पार्टनर का जो एक कहना चाहिए कि एक रुख या एक रवैया या फिर प्रैक्टिस जो होते हैं ना, जब वो आपसे बहुत अलग हों और उसके जरिए आप भी बहुत सारी नई चीजें सीख जाते हैं। देखा जाए तो रोजाना की ये जिंदगी जो है ना, आपके डिफरेंसेस को जब धीरे धीरे करके जो है एक दूसरे के करीब लाती जाती है, तो इसी वजह से होता है क्योंकि आप एक दूसरे के डिफरेंसेस को जो है अपनाते चले जाते हैं। और ना केवल अपनाते हैं बल्कि उससे बहुत कुछ सीख कर जो है ना जिंदगी को बेहतरीन भी बनाते हैं। भाई आप चाहे आपकी शादी को 2 महीने हुए हों या 20 साल हुए हों, सीखने का ये जो सिलसिला होता है ना एक दूसरे से, ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जब आप अपने पार्टनर के नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं, तो आपको अपनी दुनिया ना छोटी नहीं बल्कि दोगुनी बड़ी और खूबसूरत जो है वो नजर आने लग जाती है। और यही तो मजा है ना असली, यही तो पार्टनरशिप होती है। जब आप दोनों, दो अलग अलग तरीके के इंसान जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और दोनों मिलकर एक बेहतरीन जिंदगी जो है वो बनाते हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के डिफरेंसेस को अपनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों की खूबियों को, एक दूसरे की खूबियों को भी जो है वो अपनाया जाता है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम हम कदम में, मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ। अगली आवाज जो आप सुनने जा रहे हैं वो है सुनिधि चौहान की, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत गाना मैं आप सभी के लिए प्ले करने जा रही हूं। और फिलहाल आज का हम कदम जो है वो था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी, श्रोता, हुए मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का ये दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओ, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हमें निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405-559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
2: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को। जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ?
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ।
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही। लगता है हमें कामयाबी मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको दबाया। हाँ यहाँ तक तो ठीक है, अब देखता हूँ कि क्या होता है। विलियम।
1: हाँ जॉन।
0: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
1: करता हूँ।
0: हाँ और सुनो।
1: हाँ
0: आप कमरे में अंधेरा करो।
1: एक मिनट।
0: हाँ
1: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
0: हाँ ठीक है। और सुनो स्क्रीन ऑन करो।
1: हाँ ठीक है। अरे वाह जॉन।
0: हाँ
1: देखो सामने।
0: अरे हाँ
2: क्या बात है।
0: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था, मैं कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
2: हाँ जॉन हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
0: हाँ
2: जॉन बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत
0: तुम्हें विलियम बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हो?
2: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर्ड। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर्ड।
3: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
4: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
3: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
4: हाँ, आइए। यहाँ?
3: हाँ, आइए, इस तरफ।
4: इधर?
3: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
4: इधर?
3: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।

0: ओह ये तो कमाल हो गया, आंखों को विश्वास नहीं होता। वेरी गुड कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स एन अनबिलीवेबल मिरेकल।
1: शुक्रिया शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

0: अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को के यानी कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों आप खुश तो बहुत होंगे ना, क्योंकि बारिश की ठंडी फुहार तन मन को भिगो रही है, प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है और एक नई ताजगी का एहसास है ना, और मन मयूर झूम उठा है।

0: जी दोस्तों, बारिश की रुम झुम और ये जो बारिश की जो बूंदें हैं उन्हें छू करके एहसास ऐसा होता है कि सारे तन में, तन बदन में, तन मन में एक ठंडक सी पहुंच गई है। और उमस भरी गर्मी के बाद तो झमाझम बारिश के बाद तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है, नदी ताल तलैया पोखर सब लबालब भर जाते हैं। बरसात से राहत तो मिल जाती है लेकिन साथ साथ आफत भी आ जाती है। आफत, आप जरूर सोच रहे होंगे कि आफत के नाम पे तो बाढ़ ही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ और भी कई सारी बातें आ जाती हैं, कई सारी बीमारियां भी आ जाती हैं और वाटर बॉर्न डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। जब ऐसी संभावना हो तो सावधानी और सतर्कता भी जरूरी है, ये तो आप सभी जानते हैं। उन बीमारियों के बारे में जानकारी लेना और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करना भी आवश्यक हो जाता है। तो उन सब के लिए हम है ना जी, हमारा रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम है ना। पूछ लीजिए, बस डायल कीजिए, बेझिझक डायल कीजिए। हमारा नंबर 011-23-421-1080, 23-421-080, और दूसरा फोन नंबर है 23-421-082। और आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप इसी वक्त सवाल पूछिए और जानकारियां लीजिए। और हाँ, आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी। आप डायरेक्टर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन मैक्स अस्पताल में। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपको।
1: धन्यवाद कमल जी।
0: और दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। बारिश का मौसम है तो नेचुरली, और रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम है तो हम बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। जी हाँ, डिजीजेस इन रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां, इन सब के विषय में आज हम जानेंगे अपने डॉक्टर साहब से, यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक आप हमसे जुड़ते हैं, चलिए हम आपकी ओर से कुछ सवालात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब,
1: कमल जी, आज बहुत अच्छा दिन है। अगर आज के दिन को अगर हम देखें तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो ऐसे में एक कबीरदास जी का दोहा याद आया मुझे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
0: जी,
1: तो एज ए डॉक्टर मेरे लिए मेरे मरीज सबसे बड़े गुरु हैं। आज के दिन में हम श्रोताओं को गुरु मानते हैं, तो क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शन दिखाता है, श्रोता ही हमें बताते हैं कि हमें क्या क्वेश्चनों का जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। तो मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और मेरे सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी, और हमारी ओर से भी, आकाशवाणी की ओर से भी आप सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। तो डॉक्टर साहब, चूंकि ये बारिश का मौसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, देखते हुए अच्छा लग रहा है, भीगते हुए कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार भीगने से और बार बार भीगने से कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और वास्तव में देखा जाए तो बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती हैं उनका खतरा लगभग बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए, बरसात के मौसम को अगर हम डिवाइड करें तो एक एक करके जैसे अपन चलते हैं
0: जी,
1: तो सबसे पहले बरसात में जो होता है ह्यूमिडिटी, उमस,
0: यानी कि नमी,
1: उमस
0: जी,
1: उमस की वजह से जब आप, जैसे अगर बरसात अभी नहीं भी हो रही है एक्टिवली, तो भी जो मौसम है उसमें उमस बहुत ज्यादा होती है, उमस से पसीने बहुत ज्यादा आएंगे
0: जी।
1: तो ऐसे में हम अपने सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहेंगे कि आप जब इस तरह का मौसम आए, रेनी सीजन जैसा मौसम आए, तो बेटर है कि आप कपड़े जो है कॉटन के पहने, जो कि आपकी स्वेट को या जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर सके,
0: सोख सके,
1: क्योंकि

0: शरीर के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो आप जो कॉमन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, जिसको खांसी जुकाम है ना, हल्का फुल्का बुखार आना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। फिर कुछ बीमारियां होती हैं जो खराब पानी की वजह से होती हैं
1: जी,
0: खराब पानी की वजह से, जैसे कि जो पीने का पानी थोड़ा सा खराब हो जाएगा
1: जी,
0: है ना, उसकी वजह से आंत्रशोध या एंट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, अब इन्फेक्शन की वजह से हो जाएंगी। और फिर बाद में पानी के स्टैग्नेशन यानी पानी के रुकाव की वजह से जो मक्खी मच्छर जो पनपते हैं उनकी वजह से बीमारियां होती हैं
1: जी जी।
0: तो इस तरह से हम बीमारियों का क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही और मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा था, और कई बार हमने देखा भी है और कई बार ऐसा लगता भी है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बाहर से आए बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है और उसके बाद में पसीना पसीना हो गए हैं, और उसके बाद में कुछ लोग क्या करते हैं कि तुरंत जा करके नहा लेते हैं, तो इससे किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, कौन सा खतरा बढ़ सकता है?
0: जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कमल जी, कि टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी कारण से अगर एकदम से होगा तो उसकी वजह से ना बॉडी का एडेप्टेशन कई लोगों का हो जाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग हम जो सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि सपोज आप कहीं गर्मी से एकदम से आए हैं तो आप अंदर बैठिए, थोड़ी देर अपने पसीने सुखाइए, एक नॉर्मल पंखे में बैठिए, और जब पसीने सूख जाएं और थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन हो जाए फिर उसके बाद आप बाकी काम कीजिए। जैसे कि एकदम से आती ठंडा कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है जी, अंदर आते ही एकदम से नहाना है, तो वो सब आपको थोड़ा सा एक्लिमेटाइज होके फिर करेंगे तो आपका शरीर जो है उसमें आपका साथ देगा, और आपको कफ कोल्ड या जो किसी किसी को अगर आपने देखा हो तो एकदम से ठंडा पानी पी लिया आपने गर्मी से आते हुए, एकदम से गला पकड़ जाता है, तीन चार दिन तक फिर खराश खांसी और गले में दर्द रहता है, तो ये सब चीजें आप अवॉइड कर पाएंगे
1: जी। तो इसमें जब इस प्रकार से जब बिल्कुल गर्मी से बिल्कुल ठंडक यानी कि शरीर को ठंडक मिलती है तो और इसमें किस प्रकार की परेशानी हो सकती है, क्या इसमें बुखार होने के फीवर होने के भी चांसेस रहते हैं?
0: हाँ देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी शारीरिक प्रक्रिया की वजह से होता है, तो जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा तो वो बाहर जो दिखेगा वो बुखार के रूप में दिखेगा
1: जी, जी।
0: जैसे अभी हम बात कर रहे थे खांसी जुकाम की, तो खांसी जुकाम होगा तो आपके गले में ये जो जीभ के पीछे की जो जगह होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी किसी के नीचे छाती तक पहुंच जाता है, खराश होने लगती है, तो वो इन्फ्लेमेशन फीवर के रूप में प्रेजेंट करता है। तो बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी का एक साइन है, एक रूप है बीमारी का,
1: लक्षण कैसे जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वैसे बहुत सारी बीमारियां तो हैं, तो बरसात के मौसम में अगर सबसे पहले कभी कुछ हो जाता है तो सोचते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहला जो रिस्क होता है वो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है?
0: सबसे बड़ा रिस्क तो जो कॉमन फ्लू होता है, जो हम कफ कोल्ड बोलते हैं
1: जी,
0: ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जो कि बरसात के ऑनसेट के साथ ही स्टार्ट हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और दूसरा जो होता है वो है एंट्राइटिस यानी आंत्रशोध यानी पेट के इन्फेक्शन
1: जी जी।
0: अब वो कोलेरा की वजह से हो, चाहे टाइफाइड की वजह से हो, चाहे दूषित पानी का मिश्रण जो आपके पीने के पानी में है उसकी वजह से हो, ये अलग अलग इसके स्रोत हैं जिसकी वजह से हो सकता है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि जो बरसात के पानी के साथ मिट्टी के रास्ते से नीचे, जैसे मिट्टी से पानी, बरसात का पानी एब्जॉर्ब होता है आपके जो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और वो प्यूरिफिकेशन अगर उसका ठीक से ना हो तो वो उसको हम लोग पैरासिटिक इन्फेक्शन बोलते हैं,
1: यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसे हम डायरेक्ट ना पिए, उसे छान कर पिए, उबाल कर पिए, तो ये कुछ हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है,
0: बहुत हद तक। मतलब अगर हम सबको बोले कि भाई आप उबला हुआ पानी पीजिए, उबले हुए का मतलब होता है कि आप उसको रोलिंग बॉइल 20 सेकंड्स कम से कम अगर आप बॉइल करके पियेंगे तो आपकी ये जो पेट वाली परेशानियां हैं, जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे
1: जी। तो इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा कि 20 सेकंड्स तक, इसमें भी कुछ टेम्परेचर अगर कुछ क्या कहते हैं,
0: रोलिंग बॉयल कहते हैं सर, हाँ, इसको हाँ। मतलब जब बॉइलिंग शुरू हो तब आप उसको 20 सेकंड लगिए।
1: अच्छा, तो यानी कि पूरी
0: कम से कम,
1: कम से कम,
0: कम
1: तो कम से कम 20 सेकंड तक बॉइल हो जाए, उसके बाद ठंडा करके पिए या हल्का हल्का
0: ठंडा करके पिए
1: तो हल्के हल्के, कुछ लोग क्या रहते हैं कि चाय की तरह फूंक फूंक के पीते हैं।
0: देखिए सर, ये आप की क्या आदत है और आपको कैसे पसंद है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है
1: जी।
0: हम ये एडवाइस करते हैं कि बॉइलिंग वाटर के बाद आप उसको ठंडा करके, चाहे आप साफ बोतल में रख के उसको फ्रिज में भी रख सकते
1: जी हाँ।
0: हमारा पर्पस है कि आप जो बॉइलिंग वाटर से हमारा जो बैक्टीरिया है या पैरासाइट्स है वो मर जाएं, ताकि आपको इन्फेक्शन की मात्रा, इन्फेक्शन कम से कम हो।
1: जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हम अपने श्रोताओं को एक बार अपना

0: नंबर बता दें जिससे कि वो हमसे संपर्क कर सकें, आपसे संपर्क कर सकें और अपने सवाल पूछ सकें। तो श्रोता मित्रों एक बार नोट कर लीजिए हमारा फोन नंबर, और वो है 011, यानी कि दिल्ली का ये एसटीडी कोड है। इस फोन नंबर से पहले 011 जरूर डायल कीजिएगा, 2342-1080। और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082, यानी कि 2342-1080। और दूसरा फोन नंबर है 2342-1082। दोस्तों अगर आप फोन नहीं कर पा रहे हैं और आपको समय है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप भेजने के लिए यानी कि मैसेज भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा नंबर 9868107070। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे और बहुत सारी जानकारियां भी आपको मिल सकेंगी। तो डॉक्टर साहब यहां पर एक मैसेज हमारे पास आ गया है और इन्होंने लिखा है कि आपको यानी कि मुझे और डॉक्टर गुप्ता जी को गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू।
0: बरसात में बच्चों को नहाने का बड़ा शौक होता है, इन्होंने लिखा है, और ये कहते हैं कि बच्चे जानबूझ कर भीगते हैं तो उनका डॉक्टर साहब क्या मार्गदर्शन करेंगे। ये लिखे हैं नरदेव सिंह चौहान जी कोटद्वार उत्तराखंड से, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल चौहान साहब, बच्चों का तो सबसे बड़ा शौक बरसात में घूमना है और बरसात में भीगना है। आप उनका बचपन मत छीने, उनको घूमने दें, उनको विचरण करने दें बरसात में। लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं सबसे पहले उनका जो काम होना चाहिए माँ बाप का वो है कि कपड़े चेंज करें, उनका सिर सुखाएं और उनको थोड़ी देर के लिए बिठा दें और फिर ही कुछ खाने या पीने को दें। अगर हम ये सब चीजें अगर करेंगे
0: जी
1: तो बच्चों को बीमारी का कोई दिक्कत नहीं।
0: ये तो अच्छी बात बताया कि यानी कि शरीर भीगा नहीं होना चाहिए बरसात में भीगने के बाद में, उसको पोंछ करके सुखा देना चाहिए।
1: जी
0: जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और,
1: एक और चीज कमल जी, कि कई बार क्या करते हैं कि बच्चे अंदर आते ही एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है।
0: ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी करना चाहिए कि आते ही कहीं से गर्मी से आ रहे हैं तो तुरंत ही उसी समय एयर कंडीशन में ना बैठें, बच्चों को भी ना बैठने दें, बल्कि एक नॉर्मल पंखे की हवा से, अगर आपके पास पंखे हैं तो पंखे की हवा से अपने शरीर को सुखाएं, उसके बाद ही आगे का जो भी कार्य है
1: जी
0: खाना पीना है वो करें। डॉक्टर साहब एक और मैसेज आया है और ये हैं मोहित जी और इनकी उम्र है 43 ईयर्स। ये आगरा से हैं, कहते हैं कि शुड वी यूज बॉयल वाटर ओआर और कैन यूज वाटर ऑफ आरओ फिल्टर्स ऑल्सो, यानी कि दोनों इन्होंने ये कहा है कि आप आरओ का वाटर यूज करना चाहिए या फिर बॉइल्ड वाटर, दोनों में क्या फर्क होगा।
1: जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जब कभी भी हम पानी की उबालने की बात करते हैं तो इसमें दो क्राइटेरियाज हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम दिल्ली या आसपास में रह रहे हैं तो 20 सेकेंड रोलिंग बॉयल अप टू 1 मिनट
0: अगर आरओ का पानी है तो भी।
1: जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम कभी भी पानी की जो TDM है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं आपके जो बायोलॉजिकल चीजें हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, कोलेरा का जो है या पैरासाइट्स हैं, उसको नष्ट करने की।
0: जी डॉक्टर साहब
1: अगर हम आरओ की बात करते हैं तो आरओ में कुछ अलग टाइप के आरओ भी आते हैं जो बैक्टीरिया को भी रोक सकते हैं। अगर आपका आरओ उस लेवल का है तो आप आरओ का पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आरओ का जो काम है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का है।
0: जी डॉक्टर साहब।
1: तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही अगर आपका आरओ कर रहा है तो फिर वो आपको इन्फेक्शन से यूजुअली नहीं बचा पाता।
0: जी तो कोशिश कीजिए कि पानी बॉइल हो जाए और वो भी 20 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड बॉइल हो जाए तो बेटर रहेगा।
1: इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से 1 मिनट भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 20 सेकंड भी अगर आप कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा।
0: जी बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार कमल सर को भी नमस्कार और गुप्ता डॉक्टर साहब को भी प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम।
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: जी रघुवीर जी बताएं कैसे हैं आप।
2: बस ठीक है डॉक्टर साहब भी। और मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम तो उत्तराखंड में पहाड़ों में जैसे कि बारिश तो होती थी, भीगते तो है रोजमर्रा की जिंदगी में, गाय के लिए चारा पत्ती लाना पड़ता है, तो एक तो भीगने से ये सुना है कि मच्छर काट देगा तो बीमारी हो जाती है जैसे मलेरिया वगैरह भीगने के तुरंत बाद। दूसरा ये है कि जैसे भीगने से कोई सर्दी जुकाम या ऐसा बदन में ऐसा हो जाता तो हम हॉस्पिटल तो रहते नहीं है, लेकिन आसपास से कोई दवाई खा लेते हैं, ये क्या ठीक है कि नहीं है, और भीगने से कोई, मच्छर काटने से कोई बीमारी तो नहीं होती?
0: जी डॉक्टर गुप्ता जी,
1: देखिए पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूंगा कि भीगने से, जैसे अगर आपको खांसी जुकाम या गले में दर्द होता है, तो अमूमन ये जो भीगने के बाद वाला होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन तो ये सेल्फ लिमिटिंग यानी अपने आप ठीक हो जाता है, आपने गर्म काढ़ा चाय पी उससे ठीक हो जाता है। तो और अगर नहीं ठीक होता है तो आप कुछ एंटी एलर्जिक या विटामिन की गोली लेते हैं, उसी से ठीक हो जाएगा। अब अगर ये 3-4 दिन से ऊपर का है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और वो डॉक्टर अपना टेस्ट करके देखेंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ही किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, अदरवाइज तो ये यूजुअली इसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है।
0: जी तो डॉक्टर साहब, इसमें इन्होंने कहा कि भीगने के बाद में अगर मच्छर काट लेता है तो क्या इससे भी मलेरिया?
1: भीगने से मच्छर का कोई मतलब नहीं, मच्छर पनपेगा तब जब आपके पास स्टैग्नेंट यानी कि खड़ा हुआ पानी होगा, जैसे कि हमारे किसी पॉट में चला जाए, हमारे किसी बर्तन में रखा हुआ रह जाए, या बाहर जो कूड़ा है या जो नालियां हैं उसमें पानी जो है उसका बहाव कम हो जाए तो मच्छर वहां से पनपेगा, और वहां से जो मच्छर पनपेगा वो मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह की बीमारी कॉज कर सकता है। भीगने के बाद मच्छर एक्टिव हो जाएगा या मच्छर की बीमारी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब सिर्फ उसी से है कि स्टैग्नेंट पानी में मच्छर का पनपना बढ़ जाता है, मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, और इसका कोई भीगने से इसका कोई मतलब नहीं।
0: डॉक्टर साहब, तो जो मच्छर होते हैं क्या जो हर मच्छर है यानी कि हर मच्छर के कोई भी मच्छर काटेगा तो बीमारी हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगा?
1: नहीं, अमूमन ऐसा नहीं होता। मलेरिया का जो मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो से होता है, और जो चिकनगुनिया और जो डेंगी है
0: जी
1: वो एडीज मस्किटो से होता है।
0: जी हाँ,
1: तो ये दोनों मॉस्किटो अलग अलग होती हैं। तो अमूमन हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रेश वाटर जो मॉस्किटो होती है वो एडीज होती है
0: जी।
1: और जो गंदे पानी में जो पनपती है वो एनोफिलीज होती है। तो अगर आपके नालियों में गंदा पानी है, एल्गी है, तो वहां पे जो पनपेगी वो एनोफिलीज मॉस्किटो होगी, तो उस एरिया में मलेरिया की तादाद हो सकता ज्यादा हो
0: जी।
1: और जिस एरिया में फ्रेश वाटर स्टैग्नेशन होता है, जिसमें जैसे कि बरसात का पानी है, आपके घर का जो वेस्ट वाटर है या जो रेन ड्रेन पाइप्स जहाँ पे खुलते हैं, वहाँ पे अगर स्टैग्नेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एडीज मॉस्किटो की पनपने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से चिकनगुनिया और डेंगी होता है।
0: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया कि जहाँ पर नाले नहीं है, पानी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जंगल झाड़ यानी कि झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी मच्छर होते हैं?
1: हाँ, लेकिन झाड़ियों में जो पेड़ पौधों में जो मच्छर होते हैं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो उन झाड़ियों में नीचे थोड़ा बहुत पानी स्टैग्नेशन होता है, वहीं जैसे घास है, घास में डैम्पनेस होगी, बरसातों में जो डैम्पनेस है वो बढ़ जाती है, तो इवन अगर आपका जो घास है उसके ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी पानी होगा तो मच्छर उसमें भी पनप जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, ये डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, ये तीनों मच्छर से ही होते हैं, लेकिन किस प्रकार के मच्छर से होते हैं अभी आपने बताया, लेकिन हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि डेंगू या मलेरिया, चिकनगुनिया, इनमें क्या क्या अंतर होता है, इनमें क्या अलग अलग अलग अलग इसमें लक्षण दिखाई देते हैं? तो डॉक्टर साहब, एक बार क्यों ना हम अपने श्रोताओं को फिर अपने फ़ोन नंबर बता दें और कि वो हमसे अभी इसी वक्त कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं, और नंबर नोट कर लीजिए 011-2342-1080 और उसके बाद में दूसरा नंबर है 2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, जब तक अपने लिसनर्स के कॉल आते हैं तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं।
1: ठीक।

0: और इस लवली ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और आपके सवालों को लेने के लिए तैयार हैं, आपको जानकारियां देने के लिए तैयार हैं और आपको अपने डॉक्टर साहब से बात करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि एक फोन कॉल आ गया है और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो सर, मैं राधा गुप्ता बोल रही हूँ दिल्ली से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: नमस्कार राधा जी।
1: सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे ये मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है तो सर मुझे सुबह उठते के साथ छींकें आनी शुरू हो जाती है, आँख से भी पानी आना और आँखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है सर, और मेरे सिर में भी थोड़ा हल्का हल्का दर्द होता है, तो सर ये क्या ये इन्फेक्शन है कोई सर, क्या ये एलर्जी है मुझे?
0: जी डॉक्टर साहब,
2: देखिए पुख्ता तौर से तो मैं नहीं कह पाऊंगा राधा जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से अगर ये घंटे डेढ़ घंटे में ठीक हो जाता है तो अमूमन इस तरह की चीज़ों को हम एलर्जी का ही नाम देते हैं। इन्फेक्शन हम तब बोलते हैं जब साथ में बुखार भी हो आपको।
1: तो नो सर, बुखार नहीं होता सर, बस ओनली इसी मौसम में शुरू हो जाता है, जैसे ये मौसम चला जाएगा सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है।
2: हाँ, तो जिस तरह का आप बता रहे हैं किसी किसी को ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से इस तरह का होता है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे मिलके आप कुछ विटामिन की दवाई लिखवा सकती हैं और कुछ नेजल स्प्रेज भी आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनके कंसल्टेशन के बाद ही।
0: डॉक्टर साहब इन्होंने ये भी कहा कि इनकी आंखों से पानी आने लगता है।
2: जी, आंखों से पानी के पर्याय अलग अलग हैं कमल जी, जैसे आंखों से खाली पानी आता है तो उसको हम एक तरह का एलर्जी मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आंखें लाल भी होती हैं और आंखों में से मवाद या पानी आता है तो तब उसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो अमूमन ये बरसात के मौसम में किसी किसी को हो जाता है, तो यूजली इसको भी हम ब्रॉडली फ्लू में बोलते हैं, इसको आई फ्लू बोल देते हैं या फिर कंजंक्टिवाइटिस बोल देते हैं। तो अमूमन इसमें भी किसी बड़े एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, तो क्योंकि ये अमूमन इसका जो स्रोत होता है वो वायरल होता है, तो आप बस आंखों को प्रोटेक्ट करना है, आपको हाइड्रेटेड रखना है और एक दूसरे से आंख
0: कॉन्टैक्ट नहीं करना है।
2: आईज का कॉन्टैक्ट गलत है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आई जैसे आपने आंख पहुंची अपने हाथ से और वो हाथ आपने किसी को लगाया और उसने फिर वो हाथ अपने आंख पे लगाया, ऐसे आई फ्लू फैलता है, देखने से
0: नहीं होता। कई लोग काला चश्मा लगा कर रख लेते हैं।
2: नहीं, काला चश्मा लगाने का पर्याय दूसरा है। काला चश्मा लगाना इसलिए क्योंकि फोटोफोबिया, यानी कि जब आप रोशनी में जाते हैं बाहर तो आंखें चौंधिया जाती हैं, तो उस चीज के लिए काला चश्मा हम लोग एडवाइस करते हैं। काला चश्मा आंख से आंख देखने से आई फ्लू होगा ऐसा नहीं, उस चीज के लिए नहीं दे रहे हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप जब कभी इस प्रकार से आपको आई फ्लू हो जाता है तो आप अपने हाथों से अगर आपने अपनी आंखों को पोंछ लिया है और उसके बाद किसी और के साथ में हाथ मिलाते हैं और के साथ में संपर्क में आते हैं तो आपको भी यानी कि सामने वाले को भी आई फ्लू हो सकता है।
2: जी,
0: तो इससे बचना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, एक तो अगर सपोज मुझे आई फ्लू है तो मैं अगर अपनी आंख पहुंच भी रहा हूं तो मुझे अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करना होगा, या तो मैं बार बार अपना हाथ धोऊं साबुन से या फिर मैं एक अल्कोहल जो
0: सैनिटाइजर
2: होता है उसको यूज करूं जिसमें कम से कम 60% अल्कोहल हो।
0: जी,
2: 60% अल्कोहल।
0: जी, और जो अपने जो कपड़े हैं उनको भी अगर एक बार पहनने के बाद में अगर उनमें भी चला जा सकता है,
2: इसलिए हम लोग कहते हैं कि कपड़े आपके हमेशा धुले हुए और साफ कपड़े पहनने हैं आपको बरसातों में, खासकर अगर आप रोज चेंज करते हैं तो और भी अच्छा।
0: जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
0: जी, आपका शुभ नाम?
3: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या पूछना चाहते हैं?
3: 48 मेरी उम्र है।
0: जी,
3: तो सबसे पहले तो एंकर साहब और डॉक्टर साहिबान दोनों को बेहद शालीनता से नमस्कार और आभार।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।
3: डॉक्टर साहब मेरे तीन सवाल हैं आपसे, और पहला सवाल ये है कि जो वर्षा का पानी से कहा जाता है कि अमृत होता है, तो मैं जानना है सारा अगर हम इसको किसी साफ सुथरे बर्तन में स्टॉक करें भर लें तो क्या उस पानी से हमें आई वॉश करने चाहिए और इसको हम पी भी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम, कोई हर तो नहीं इससे? बरसात के दिनों में दांत खाज खुजली कुछ ज्यादा ही हो जाती है, हाथ के हाथ पर जो नेल्स होते हैं नाखून और फंगस ये बढ़ जाते हैं, तो इसका हम घरेलू स्तर पर क्या उपाय करें, और अगर आपके पास होते हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन इंजेक्शन से करते हैं, खून खराब तो बोर्ड मार आ जाती है। और तीसरा आखिरी सवाल ये है, जी, इंदौर पार्क में ना जिम बहुत लग गई है, तो क्या मसाज गृह में हमें जिम एक्सरसाइज करनी चाहिए मशीनों पे, जरा ये बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब,
2: देखिए पहला सवाल जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा सर, बरसात का पानी अमृत होता है, अगर बरसात नहीं हो तो देश में कुछ नहीं चले
0: जी,
2: ना तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी उपज आएगी, ना देश चलेगा, ना देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। किसी भी चीज़ में अगर कुछ चाहिए तो हमें बरसात सबसे पहले चाहिए, तो इसलिए जो आपने कहा साहब बरसात का पानी अमृत है वो सबके लिए अमृत है। लेकिन अब उस बरसात के पानी का जो हम आजकल वाटर रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम उसी पानी को अगर किसी बर्तन में लेते हैं तो कच्चे पानी के उसमें ट्रीट होता है वो, यानी जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो कच्चे पानी में ट्रीट होगा। अगर वो अनट्रीटेड पानी अगर हम यूज करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बरसात के पानी में कुछ पोल्यूटेड चीजें भी आती हैं, जैसे जो हम अगर दिल्ली में ही रह रहे हैं तो अगर हम देखें
0: एनवायरमेंट
2: की वजह से। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये है तो अमृत, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा प्यूरीफाई कर लें और ट्रीट कर लें या उबाल लें तो उसको हम पीने में भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे आप बोल रहे हैं मुंह हाथ धोने में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि उसको ट्रीट कर लिया जाए।
0: जी, छान लें अच्छी तरह से, अगर उसे बॉयल कर लें और उसके बाद में इस्तेमाल करें तो बेटर होगा, आँखों के लिए भी और अपने जो पीते हैं उसके लिए भी, पेट के लिए भी।
2: दूसरा इन्होंने पूछा था कि स्किन डिजीजेस, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है और पसीने ज्यादा होते हैं तो स्किन की डिजीजेस काफी कॉमन होती हैं। इसमें अमूमन तो जो हम एडवाइस करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, साफ ड्राई और अगर हो सके तो प्रेस किए हुए कपड़े आप पहनेंगे, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन जो हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं या फंगस हमारे कपड़ों पर लग जाती है वो डेड हो जाती है, वो फिर वापस आपके शरीर को दोबारा इन्फेक्ट होने नहीं देती है।
0: जी डॉक्टर,
2: तो यूजली तो जैसे जैसे आप सूखापन करेंगे, अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है तो यूजली तो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, किसी किसी को ऊपरी तौर से कोई क्रीम या किसी किसी को खाने वाली गोली की जरूरत पड़ती है, अमूमन ये बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शंस नहीं होते।
0: जी डॉक्टर साहब, और इन्होंने जो फंगल इन्फेक्शन की बात की है और इन्होंने ये कहा कि खुजली वगैरह सब हो जाता है, और नाखूनों की भी बात कर रहे थे थोड़ी बहुत कि इस प्रकार से नाखून बड़े होते हैं तो उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या?
2: हाँ, जैसे मैंने बताया ना ये दाद खुजली ये फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं, इसको हम लोग टीनिया बोलते हैं, तो इसका इलाज बहुत ही ईजी होता है। अमूमन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपको शुगर नहीं है, आपको किडनी की दिक्कत नहीं है, लिवर की दिक्कत नहीं है, तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं
0: जी।

0: अब इन्होंने एक बात और कही कि आजकल कई जगह देखा जा रहा है कि पार्क्स में ओपन जिम है। अगर हम ओपन जिम में अगर को अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं तो इसमें एक्सरसाइज तो होता ही है, लेकिन क्या इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो सकती है
1: देखिए,
0: अगर शारीरिक रूप से लिया जाए तो, और सांस को जी।
1: चलती बरसात में जिम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अगर आप जिम एक्सरसाइज कोई भी करते हैं तो आपको बस यह है कि शरीर के पसीनों का ध्यान रखना है पहला, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, जो मैंने अपनी बातचीत के दौरान सबसे पहले बताया था, तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस अवॉइड करना है। अगर आपकी
0: जी
1: बरसाती हवा चल रही है तो उसमें आप एक्सरसाइज करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा बढ़ेगा, तो उसमें आपको बीमार होने का या मांसपेशियों में अकड़न होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक और फोन कॉल आया हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
2: जी नमस्कार,
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं।
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम साहब बताएं।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बारिश में नहाने से घमौरिया वगैरह ठीक हो जाती है, तो हमारे बच्चे या हम लोग क्या बारिश के पानी में नहाएं तो हमारी घमौरिया या स्किन डिसऑर्डर सही हो जाते हैं? कृपया तो विस्तार से बताएं।
0: डॉक्टर साहब, क्या बारिश के पानी में नहाने से स्किन जो डिसऑर्डर्स हैं, घमौरियां हैं, वो क्या ठीक हो जाती हैं या इसके कुछ और रीजन होते हैं?
1: देखिए, इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बारिश में भीगने से अगर साफ एनवायरनमेंट में आप भीग रहे हैं तो मजा जरूर आता
0: थोड़ी सी राहत मिल जाती है, जो खुजली होती है, जो उसमें फंगस जो आ जाता है उसमें अगर भीग जाए तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी कम हो सकती है, खुजली कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा कि इस सवाल का, मैं घमौरियों से रिलेटेड जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि बारिश के जस्ट पहले जैसे उमस बहुत ज्यादा होती है, पसीने बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से अगर किसी किसी को कुछ दाने वाने हो गए और बरसात के बाद क्योंकि टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो हो सकता है उस वजह से हो जाए, तो ये, लेकिन ये मेरा
0: पर्सनल
1: पर्सनल थिंकिंग है,
0: जी
1: मतलब इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है कि नहीं, ये मैं शायद हो सकता है अगली बार पढ़ के आपको बता
0: जी
1: पाऊँ।
0: जी जी जी जी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक मैसेज आया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज है, और ये कहते हैं कि गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, क्या रेनी सीजन में सर्जरी करवा सकते हैं, आई सर्जरी?
1: हाँ, मतलब रेनी सीजन में सर्जरी का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप नहीं करा सकते या फिर करानी नहीं चाहिए,
0: जी
1: इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं
0: हाँ,
1: है।
0: लेकिन यह है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि पसीना आ जाता है तो उसमें कुछ परेशानी हो सकती है, पानी चला जाता है तो उसमें परेशानी हो सकती है, इस प्रकार की कुछ समस्या हो सकती है क्या?
1: अब इसको हम देखिए, ऐसा है कमल जी, अगर हम आजकल की बात करें तो सर्जरी के बाद अमूमन आप 3-4 दिन तो घर में ही रहते हैं, तो घर में आपका टेम्परेचर इस तरह का नहीं होगा कि आपको पसीने आए,
0: जी
1: तो मुझे तो ऐसा कोई खास इसमें कारण नहीं लगता। इवन हमने भी अपने किसी मरीज को ऐसे सर्दी में या रेनी सीजन में सर्जरी ना कराने की सलाह अभी तक तो नहीं दी है।
0: जी डॉक्टर साहब, सरोज मल्होत्रा जी ही हैं साकेत रट से, और इनका कहना है कि कितना फीवर होने पर बच्चों या बड़ों को मेडिसिन लेनी चाहिए?
1: देखिए, फीवर कितना का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, फीवर का मतलब जब कभी भी शरीर का जो टेम्परेचर है अगर आपके थर्मामीटर में 99.5 से ऊपर का आ रहा हो तो उसको हम बुखार कहते हैं। तो जब बुखार हो, अगर वो अपने आप नहीं उतर रहा है तो बेहतर है उसके लिए दवाई ले लें, और उसकी डोज जो है वो बच्चों और बड़ों के हिसाब से, वजन के हिसाब से अलग अलग होती है, तो वो आपके डॉक्टर से सलाह लेके ही करें।
0: डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप मैसेज और है, और ये है अश्विनी शर्मा जी दिल्ली से, कहते हैं कि आरओ वाटर से सिर्फ चाय और खाना बनाने में उसे इस्तेमाल करते समय 20 लीटर वाले बोतल मंगाने पड़ते हैं, तो क्या उससे भी कोई परेशानी हो सकती है क्या, यानी कि आरओ वाटर से?
1: मैं दोबारा सुनना चाहूंगा सर।
0: डॉक्टर साहब अश्विनी शर्मा जी पूछते हैं कि जो आरओ वाटर से सिर्फ चाय और खाना बनाने का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा जो दूसरा पानी होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कुछ परेशानी हो सकती है क्या
1: देखिए,
0: आरओ
1: जैसे मैंने
0: वाटर से?
1: आपको बताया ना, आरओ वाटर से इलेक्ट्रोलाइट्स तो करेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके आरओ में कुछ एडवांस्ड आरओ भी आते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन का वो क्लेम करते हैं कि भाई ठीक हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल अपने घर में अगर एक बड़े मर्तबान में या बड़े पतीले में पानी गर्म करके, जैसे मैंने बताया ना, रोलिंग बॉयल में 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का आपको रोलिंग बॉयल करना है और उसके बाद उस पानी को ठंडा करके आप

0: कैसे भी यूज कीजिए, चाहे आप उसको पीने में यूज कीजिए, खाना बनाने में यूज कीजिए, हर तरीके से वो पानी आपके लिए फिर सेफ रहेगा। आपको अलग से उसके लिए बोतल मंगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे
1: जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, कल ही हमने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया और हेपेटाइटिस ये जानकारी मिलती है कि पानी प्रदूषित है और ये काफी लंबे समय के बाद भी इसके लक्षण नजर आते हैं। तो किस प्रकार के जो हेपेटाइटिस है ABCDE, तो इनमें सबसे खतरनाक, जैसे कि कल डॉक्टर साहब से भी हम बात कर रहे थे, तो ए जो है वो उसके लिए किस प्रकार होने चाहिए, बी के लिए क्या होने चाहिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, उन्होंने सारी कुछ बताया। तो क्या ये पानी से जो जन्मते हैं, बैक्टीरिया निकलते हैं, फंगल या फिर इन्फेक्शन होता है, तो ये जो हेपेटाइटिस ए है इसके लिए किस प्रकार के, ये इसका किस प्रकार का लक्षण होता है और इसमें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई
1: जी,
0: ये दोनों प्रदूषित पानी से होते हैं। इसको हम लोग फीको ओरल रूट कहते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे अगर हेपेटाइटिस ए है तो मेरे मल के थ्रू कहीं का पानी अगर दूषित हो जाएगा तो वो वायरस वहां चला जाता है और फिर जो वो पानी पिएगा उसको वो हेपेटाइटिस होने का डर रहता है। तो बरसातों में काफी कॉमन है। तो जो हमारा सीवर है वहां से पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है,
1: मिक्स हो जाता है
0: और वो ग्राउंड वाटर अगर प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं होता है तो फिर हेपेटाइटिस ए और ई उससे फैल सकता है।
1: जी, जी।
0: अब हेपेटाइटिस ए और ई को हम लोग अमूमन पीलिया का नाम देते हैं।
1: जी।
0: जो हम लोग आमतौर पे पीलिया बोलते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई ही होता है। तो ये तो इसकी प्रक्रिया हुई फैलने की। इसमें यूजली जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर है, आपका खाने पीने की इच्छा बिल्कुल मर जाती है, आपको उल्टियां हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, लैटिन किसी किसी की सफ़ेद आनी शुरू हो जाती है, आपका पेशाब जो है बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ये सब चीज़ें इसमें होनी शुरू हो जाती है।
1: आंखों का रंग भी कुछ पीला सा नजर आने लगता है।
0: जी बिल्कुल, आंखों का रंग भी पीला हो जाता है और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। जी, ये सब चीजें इसमें हेपेटाइटिस ए और ई में होती हैं।
1: जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी और किसी ने पूछा था कि एक लिसनर ने पूछा था क्या ग्राउंड वाटर जो है उससे भी कुछ संभावना बनी रहती है हेपेटाइटिस ए की या ई की?
0: जी, मैंने बताया ना, जैसे सीवर का पानी
1: जी
0: या जहां
1: मिक्स हो जाने पे वो जी है। लेकिन अगर मिक्स ना हुआ हो और ग्राउंड वाटर जैसे कई जगह
0: अमूमन बरसातों में मिक्स हो ही जाता है।
1: अच्छा,
0: ग्राउंड वाटर का जो स्रोत है वो ऊपर से जब पानी नीचे जाएगा तो ही ग्राउंड वाटर बनता है।
1: जी जी, तो इसलिए उसका इस्तेमाल कुछ सोच समझ करके करना चाहिए।
0: जी, उबालना सबसे बढ़िया प्रक्रिया है बरसातों में, तो कम से कम आपको पानी उबाल के ही पीना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और इसमें एक डॉक्टर साहब बहुत कम सुनाई देने को मिलता है और वो है लेप्टोस्पायरोसिस। डॉक्टर साहब, ये किस प्रकार की बीमारी है बरसात के मौसम में हो जाती है?
0: लेप्टोस्पायरोसिस अमूमन जो दूषित एनिमल्स के यूरिन को यूरिन की वजह से स्प्रेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो पानी है वो दूषित यूरिन से कंटेमिनेट हो जाता है
1: जी,
0: और उसकी वजह से लेप्टोस्पायरोसिस होता है।
1: इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब?
0: लक्षण अमूमन फीवर, बहुत ज़्यादा मसल एक, हेडेक, किसी किसी को ब्लीडिंग भी हो जाती है लैट्रिन में से और पेशाब में भी, आंखें बिल्कुल कंजक्टिवाइटिस या रेड आईज बोलते हैं, और अगर सीवियर होता है तो ये किडनी और लीवर को भी इफेक्ट कर सकता है आपके।
1: अच्छा, ये मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक कह सकते हैं?
0: जी, अगर अगर ट्रीट नहीं होता है तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अमूमन जो आजकल हमारी एक प्रचलन हो गया है कैंड चीजें लेने का, आपने कैन खोला और कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जूस पी लिया, तो ये भी बहुत कॉमन है लेप्टोस्पायरोसिस का एक रीजन।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जो जितने भी स्टोर रूम्स होते हैं या जितने भी वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे ये स्टोर होते हैं वहाँ पे चूहे हैं या जिसको हम लोग घूस बोलते हैं या रैबिट्स हैं या इवन डॉग्स हैं, उनके दूषित यूरिन, जैसे अगर उन्होंने वो कैन के ऊपर यूरिन कर दिया या यूरिन उस कैन के ऊपर जमा हो गया और आपने बिना धोए कैन को खोला और पी लिया आपने, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी जूस, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल लेप्टोस्पायरोसिस।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कैन की बात की है तो आपने ये कहा कि उसके ऊपर अगर यूरिन है किसी चूहे का या फिर किसी और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके, तो आप ये तो कैन तो बंद होते हैं डॉक्टर साहब?
0: नहीं, कैन के ऊपर सर।
1: जी,
0: जो कैन का एल्यूमिनियम का कैन है
1: जी,
0: उसके ऊपर जहां आप खोलते हैं उस एरिया के ऊपर तो बंद नहीं, मतलब खुला हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे जो यूरिन है वो सूख जाएगा
1: जी।
0: तो जब आप खोलेंगे कैन को तो जो बबल्स या कोई भी जो लिक्विड है वो ऊपर जाएगा और फिर उसी को आप पियेंगे तो वो इन्फेक्शन उसके साथ ही अंदर चला
1: जी। और अक्सर बरसात में देखा जाता है कि चूहे घरों में घुस जाते हैं और बर्तन वगैरह में कहीं कहीं पर ये सब विचरण करने लग जाते हैं
0: जी,
1: तो ये एक परेशानी का सबब हो सकता है।
0: और इसका बहुत छोटा सा सोल्यूशन है कि जब भी आप बाजार से कोई भी कैंड जूस या कुछ लेते हैं तो उसको बस अच्छी तरह धो लीजिए, ठीक है। इवन जैसे बर्तन को भी यूज करने से पहले आप धो लेंगे तो इसकी काफी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि आपको लेप्टोस्पायरोसिस।
1: ये अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल चलन हो गया है कैंड फूड का या फिर जूस का इस्तेमाल करने का। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो,
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी,
2: मैं किशन बोल रहा हूँ
1: जी।
2: मेरे को हर्निया का ऑपरेशन कराना था, एक मेरी उम्र 75 है, हर्निया मेरे जांग के बगल में हो रखा है, राइट साइड की जांग में, तो उसके ऑपरेशन के लिए ये समय सही है क्या
1: जी डॉक्टर साहब? इनको हर्निया
0: मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखिए इसमें मौसम से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपका हर्निया किस लेवल का है और ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है, वो सब डिसीजन आपके सर्जन का है। लेकिन खाली मौसम की वजह से उसको डिले करना है ऐसा हमारी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है
1: जी। किशन जी आप कभी भी हर्निया का ऑपरेशन करा सकते हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है, इनकी सलाह ये है। और डॉक्टर साहब एक व्हाट्सएप मैसेज है, और ये एक बार फिर इन्होंने नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से पूछा है, एक बार इन्होंने प्रश्न पूछा था और इनका पूछना है, कहना है कि बरसात के मौसम में कैसा खान पान होना चाहिए और किस किन चीजों से परहेज करना चाहिए।
0: देखिए खान पान के मामले में अगर हम बोलें तो ब्रॉडली आपको दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। एक तो कच्चा खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए
1: जी,
0: आपका जो खाना होना चाहिए वो वेल कुक्ड और हॉट हम लोग बोलते हैं, यानी कि आपका खाना जो है अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, और गर्म खाना और फ्रेश खाना खाएं, कभी भी पुराना रखा हुआ खाना ना खाएं
1: जी।
0: अगर हम बात करें फ्रूट्स की या नट्स की तो हमेशा ट्राई कीजिए वो वाले फ्रूट्स लो जो कि आप पील कर सको, जो आप छील सको। यानी छिलका उतरा हुआ डायरेक्ट फ्रूट लेना बरसात के मौसम में थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, और कट फ्रूट तो बिल्कुल ही नहीं।
1: डॉक्टर साहब इसमें तो फिर जैसे आपने कहा कि छील करके पील करके तो इसमें डॉक्टर साहब इसमें सेब हैं, अमरूद हैं, इस प्रकार के, तो इनको तो छिला तो नहीं जाता है?
0: नहीं तो, लेकिन आप अच्छी तरह धो तो सकते हैं
1: जी, अच्छी तरह धोया जा सकता है, धोकर ही खाना चाहिए
0: जी, बिल्कुल धो के खाना चाहिए। इवन कई लोग बरसातों में सेब को पील करके भी खाते हैं, इवन अगर अमरूद अगर आप खाते हैं तो अमरूद को आप अच्छी तरह वॉश करके जरूर खाइए
1: जी। जी तो ये अच्छी बात है कि जब कभी आप इस प्रकार के जो बिना छिले हुए छिलके
0: और धोने के लिए भी हम ये बोलेंगे कि ट्रीटेड वाटर से धोला जाए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, आप ट्राई कीजिए कि वो ट्रीटेड वाटर से, यानी जो पोर्टेबल वाटर जिसको हम लोग पीने का पानी बोलते हैं उससे धोया जाए
1: जी डॉक्टर साहब,
0: अनट्रीटेड वाटर या बरसाती पानी से बिल्कुल ना धोएं
1: जी डॉक्टर साहब। परहेज करने वाली बात है तो किस प्रकार जो खान पान में आजकल देखा जाता है कि चटपटा खाने की आदत है लोगों को, ऑयली चीज खाने की आदत है, तो बरसात के मौसम में क्या इन सबको अवॉइड करना चाहिए?
0: देखिए जो भी चीज़ आप जैसे मैंने बताया ना ऑयली चीज़ और ये चटपटी चीज़ अगर खानी भी चाहें तो ऐसी जगह से खाएं जहाँ पे एक तो फ्रेश मिल रहा हो और ऊपर से वो ओपन ना हो, जैसे कवर्ड हो, जैसे अगर आप कहीं कोई ऐसी तली हुई चीज खा भी रहे हैं तो कवर्ड चीज में रखी हो, उसमें मक्खी मच्छर ना हो
1: जी।
0: तो क्योंकि बरसातों के टाइम पे टाइफाइड होना या एंट्राइटिस होना ये बहुत ज्यादा कॉमन है
1: जी, इसलिए ढक करके रखें और जो छील के खाने वाली चीज है उनको जरूर छील के खाएं, और अगर छील के नहीं खाते हैं तो उसे जरूर अच्छी तरह से ट्रीटेड वाटर से
0: बिल्कुल
1: छील के खाना चाहिए और धो के खाना चाहिए जी।
0: और आइडियली आपको हाथ धो के अपना खाना बनाएं और हाथ धो के ही खाना खाएं
1: जी। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लें
0: जी, प्लीज
1: एक लवली सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं
0: ठीक।

0: और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों का बड़ा ख्याल रखा जाता है और रखना भी चाहिए, और जो नवजात शिशु होते हैं उनको भी बरसात के मौसम में कुछ अच्छी तरह से रखना चाहिए, तो ये किस प्रकार से उनका ध्यान रखें, किस प्रकार से बुजुर्गों का ख्याल रखें, ये दोनों आप थोड़ी सी जानकारी दे दें।
1: देखिए, कुछ जानकारी तो जैसे भी पूरे कार्यक्रम में देते ही आ रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस का ध्यान रखना है, भीगे कपड़े पहन के हवा में नहीं घूमना है। बुजुर्गों में दो चीजें हैं कि एक तो क्या है कि हम अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो मांसपेशियों में अकड़न या मांसपेशियों में दर्द, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या जो बरसाती हवा है उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है थोड़ा सा। अगर किसी को ज्वाइंट की प्रॉब्लम है तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम्स या ज्वाइंट पेन्स थोड़े से बढ़ जाते हैं किसी किसी को। दूसरा, अगर हम बात करें कि फ्रैक्चर्स की, तो ये बरसाती मौसम में थोड़े से ज्यादा कॉमन होते हैं, खासकर अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो फिसलन की वजह से या डैम्प, जब जगह डैम्प होती है तो जब आप सुबह सैर करने जाएं या बाहर निकलें तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलें। अगर आपको लगता है कि इस जगह फिसलन है तो बेटर है कि आप घर में ही वॉक करें या घर में ही कुछ एक्सरसाइज या टोनिंग एक्सरसाइजेस करें। नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो उनके खान पान का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप मदर हैं तो आपको खुद को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद को कफ कोल्ड है या फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो आप बच्चे को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, अभी इम्यूनिटी की बात की डॉक्टर साहब, तो सभी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को और जो एडल्ट हैं, जो नॉर्मल हैं, उनको भी इस बरसात के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जैसे मैंने बताया, फ्रेश फ्रूट्स और विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रूट्स की, तो जैसे विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू है या संतरे हैं, ये सब चीजें ज्यादा होनी चाहिए, इवन आंवला
0: जी,
1: तो ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। थोड़ा सा प्रोटीन आपकी डाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए
0: जी। प्रोटीन के अलावा डॉक्टर साहब और किस प्रकार की चीजें ले सकते हैं? अगर खानपान की बात करें तो, अगर फ्लूड की बात करें, फ्लूड में किस प्रकार की चीज ले सकते हैं?
1: देखिए, फ्लूड में हम ORS ले सकते हैं, नींबू का, जो नींबू की शिकंजी होती है वो ले सकते हैं, और नारियल पानी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हम बरसात में, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहेंगे तो, क्योंकि उमस की वजह से अगर पसीना भी निकल रहा है तो प्लेन पानी पीने से बेहतर है कि हम ORS, नींबू पानी या नारियल पानी, इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा लें।
0: जी डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में टाइफाइड की शिकायत भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तो टाइफाइड

0: थर्ड में इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से इसकी इससे बचाव किया जाए?
1: टाइफाइड भी जैसे मैंने बताया ना, ये आंत्रशोथ यानी एंट्राइटिस का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको जो फीवर होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है एज कम्पेयर टू अदर वायरल फीवर।
0: जी
1: दूसरा, इसमें फीवर के अलावा आपको दस्त, उल्टी भी हो सकती हैं,
0: जी जी
1: और इसमें किसी किसी को कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं।
0: जी जी
1: तो अगर आपका फीवर 3-4 दिन से ज़्यादा का चल रहा है, आपको लगातार दस्त हो रहे हैं, अगर आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं, आपका एपेटाइट लूज़ हो रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो आपको एक बार टाइफाइड के टेस्ट करा के देख लें और फिर टाइफाइड का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे दें।
0: जी डॉक्टर साहब, इसमें ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी अगर क्योंकि हमारे पास टाइम वक्त बहुत कम है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दें कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।
1: देखिए, शुरुआती लक्षण करीब करीब सबके सेम होते हैं, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, सभी बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं और बुखार काफ़ी तेज़ होता है। इसमें बस थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, जैसे कि चिकनगुनिया में जॉइंट पेन्स हैं या जो रैश जिसको हम बोलते हैं शरीर में, जो लाल लाल चकत्ते होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, थकान बहुत ज़्यादा होती है। डेंगू में अगर हम बात करें तो हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, मसल एंड जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी किसी को आँखों में भी दर्द होता है। मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको बुखार ठंड लग के आएगा,
0: तेज ठंड लगती है,
1: तेज ठंड लगती
0: कपकपी होती है,
1: जी बिल्कुल, राइगर जिसको हम बोलते हैं, कपकपी होके और बुखार जो है, फिर उसमें कभी कभार हमें पता ऐसे चलता है कि भाई किसी किसी को हर 24 घंटे में आ रहा है, किसी किसी को हर 48 घंटे में आ रहा है, इस तरह का कपकपी वाला फीवर, तो वो मलेरिया की तरफ ज्यादा जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में यह भी देखा गया कि फूड पॉइजनिंग कई बार बढ़ जाती है, तो फूड पॉइजनिंग ये होता क्या है?
1: फूड पॉइजनिंग एक, जैसे मैंने बताया कि ये दूषित पानी का आपके खाने में मिश्रण,
0: जी,
1: और वो आपके जब पेट में जाता है तो वो एक अलग टाइप की प्रक्रिया या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग का नाम देते हैं।
0: जी
1: इसमें उल्टी, दस्त, बुखार, ये तीनों चीज हो सकती हैं, किसी किसी को बहुत ज्यादा हो जाती है तो लैट्रिन में से खून भी आ जाता है। तो ये फूड पॉइजनिंग के अलग अलग मानक होते हैं और अलग अलग ग्रेड्स होती हैं।
0: तो अगर किसी को इस प्रकार हो जाए तो उनको प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड किस प्रकार से किया जाए?
1: अगर आप किसी दूर दराज के इलाके में हैं तो सबसे पहले इसमें हमें जो प्राथमिक उपचार चाहिए वो है डिहाइड्रेशन ठीक करना, यानी कि आपको उस पेशेंट का पानी ठीक रखना है,
0: जी,
1: यानी हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, चाहे ORS दें चाहे इंजेक्शन से दें, लेकिन वो प्राथमिक उपचार सबसे इम्पॉर्टेंट होगा।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारियां आपने दी और हमारे श्रोताओं ने भी कई सारे सवाल पूछे और उनका भी आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। मुझे लगता है कि अपने श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जरूर संतुष्ट होंगे और अगली बार एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे डॉक्टर साहब, और अपने दोस्तों से हम ये कहेंगे कि बारिश का जो मौसम होता है वो खुशियां लेकर के लेकर आता है और स्फूर्ति लेकर के आता है, लेकिन बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहना भी जरूरी है, सावधानी रखनी जरूरी है, स्वच्छता, मच्छरों से बचाव जरूरी है, और जो पानी पीते हैं उसे उबला यानी कि उबाल कर पीना चाहिए। तो अगर इन सब ऐसे उपाय करते हैं तो इन बीमारियों की जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और बारिश का मजा लेते रहें। और अब आपसे दोस्तों विदा लेने का वक्त तो हो चुका है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, वक्त निकाला आपने और इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आकाशवाणी से जुड़े रहिए और फिलहाल अपने दोस्त के यानी कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन बिल पारित हुआ, लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी परीक्षा के कथित पेपर लीक के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, मामले की सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी की। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस निलंबित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज के खिलाफ ओडिशा सरकार की याचिका खारिज की। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हुई। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अगले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट। भारत ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की, कहा क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। वैश्विक बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ संरक्षण को मजबूत करने वाले सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दोनों को बधाई दी है। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो

0: या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
6: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ SR यानी संतोष।

यहाँ हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसका बेटा ऐसा काबिल बने कि सारी दुनिया उसका गुणगान करे। दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं जब माता पिता अपने बच्चे की करते हैं अच्छी परवरिश और देते हैं अच्छे संस्कार। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने में आज का युवा सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने बड़ों द्वारा किए जा रहे व्यवहार को देखकर ही उसी व्यवहार को अपनाने की करता है कोशिश। इसीलिए जिस घर में लड़कियों और महिलाओं को घर के पुरुष देते हैं इज्जत, उस घर के बच्चे भी अपने बड़ों का अनुसरण करते हुए महिलाओं और लड़कियों के साथ रखते हैं अच्छा व्यवहार। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से कि क्यों माता पिता को स्वयं एक आदर्श नमूना पेश करके अपने बेटों को ये सिखाना है कि नारी की इज्जत करनी क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा और सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: इसीलिए हमेशा लड़कियों और महिलाओं के प्रति इज्जत और सम्मान का भाव रखना जरूरी है। और आइए अब चलते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ के पास। विनीता जी, जिस तरह का व्यवहार आजकल युवाओं का देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगी?
1: संतोष, ये बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता का विषय है। जिस तरीके से क्राइम हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे लड़कियों के खिलाफ जुर्म हो या उनको अगवा कर लिया जाए या छोटे बच्चों की तस्करी, ये बहुत खतरनाक है। आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं बच्चों की कि कैसे अगवा कर रहे हैं लड़कियों को, बच्चों को। ये बहुत ज्यादा दुख का विषय है और बहुत ही चिंता का भी विषय है माता पिता के लिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि किस तरीके से सब लोग अपनी राय दे रहे हैं, इतने मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है कि माता पिता को बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, माता पिता को लड़कियों को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से अपनी हिफाजत करें, किस तरीके से उनको बंदूक चलानी सिखानी चाहिए, किस तरीके से लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि दोस्ती ना करें, अनजान लोगों से बात ना करें। मतलब संतोष, मुझे लगता है कि सारी शिक्षा लड़कियों को ही देनी है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे लड़कियां हों। माता पिता सारा जोर अपनी बच्चियों पर दें कि तुम्हें इस टाइम से पहले घर आना है, तुम्हें अनजान लोगों से बात नहीं करनी है, तुम्हें बच के रहना है, तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना है। मतलब संतोष, सारी शिक्षा लड़कियों के लिए है, लड़कों को कोई क्यों कुछ नहीं कहता? माता पिता लड़कों को क्यों नहीं शिक्षा दे रहे हैं? ये जो हमारे समाज में जो लड़कों को सर पे चढ़ाया जाता है ना, ये वही कारण है कि हमारे समाज का ये हाल है। हमारे बेटे जो होते हैं, हमारे घर में राजा बेटे होते हैं, हम उनको सर पर चढ़ाते हैं, इतना सर पे चढ़ाते हैं कि वो हमारे सरों पर अब नाच रहे हैं। जो लड़के बड़े होकर लड़कियों की हिफाजत करना सीखते हैं, लड़कियों की इज्जत करना सीखते हैं, वो सब तो हम सिखा ही नहीं रहे। सारा काम माता पिता का है, माता पिता की जिम्मेवारी है। माता कहते हैं ना, 7 साल की आयु से पहले आप जो कुछ बच्चे को सिखा दो वो सीखता है। मेरा छोटा बेटा जब छोटा था, उसकी बहनें, कजन्स, मेरी भतीजियां, भांजियां सब आती थी, तो लड़कों की आदत ही होती है ना, कूद कूद के मारना, पीटना, लात मारना, थप्पड़ मारना, मतलब उनकी नेचर ही होती है शैतानी करना, और लड़की को चोट लग जाती है, वो रोती हुई आती है। मैंने उस समय में ही उसको पकड़ लिया कि नहीं, तुम किसी लड़की को नहीं मारोगे, क्योंकि लड़की को जोर की चोट लग जाती है। आपने तो हल्के में घूसा मारा, लेकिन उसको जोर से लग गई। सिर्फ आप बात करेंगे, और बात भी आप तहजीब से करेंगे जी। तो किस तरीके से हम अपने लड़कों को बड़ा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो घिनौनी तस्वीर हमारे समाज में उभर के आ रही है, इससे तो पेरेंट टीचर मीटिंग अगर करी जाए, अर्थात जो माताएं पिताएं स्कूल के अध्यापकों को मिलने के लिए जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, उसमें तो मुझे लगता है माता पिता पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। संतोष,
0: तो विनीता जी, कैसे माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करें?
1: सारी शिक्षा लड़कियों को ही नहीं देनी, लड़कों को भी देनी है। लड़के अपने पिता को देखकर बड़े होते हैं। कहते हैं ना, एप्पल डजंट फॉल टू फार फ्रॉम द एप्पल ट्री, कि हम अपने माता पिता को ही देखकर चलते हैं। अगर पिता गाली गलौज से माँ से बात करता है, अगर पिता घर में लड़की के साथ, बिटिया के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको खुले में सांस नहीं लेने देता, तो वही चीज बेटा भी सीख रहा है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी माता पिता की है, और ये सारा गलती जो हो रही है, ये सारी गलती हो रही है हमारे लालन पालन। जिस दिन हम लड़कों को जिम्मेवार बनाएंगे, जिस दिन माता पिता बेटों को बचपन में ये शिक्षा देंगे कि ये लड़की है, ये तुम्हारी बहन है या पड़ोस की लड़की है, इसको आप तहजीब से, तमीज से आप पेश आएंगे, आप उसकी हिफाजत करेंगे, आप उस पर हावी नहीं होंगे, वो भी उतनी ही प्रिय है परमेश्वर को जितना कि एक बेटा
0: जी जी।
1: लेकिन ये जो बेटा बेटा बेटा कर करके, और जो और दुख की बात संतोष ये है कि जो बेटी होती है उसको भी बेटा बुलाते हैं कि तू मेरा बेटा है। बेटा नहीं है वो, बेटी ही है। बेटी को बेटा बनाने की कोशिश

0: मत करिए, उसको कंफ्यूज मत करिए, वो बिटिया है, वो बेटी है। तो जिनके पास बेटा नहीं होता वो बेटियों को बेटा बेटा बेटा करके बेटा बनाने में लग जाते हैं। उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है, जो उनका पहनावा है, वो बेटा बन जाता है। जिनके घर में बेटियां हैं वो एक बेटा ही बना रहता है, जबकि वो एक्चुअली बेटी है। तो ये बहुत गलत विचार है। और देशों में आप देखिए, और समाजों में बेटा हो या बेटी हो, सबको एक बराबर का प्यार, एक बराबर की इज्जत दी जाती है।
1: जी हाँ, लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ एक तरह का व्यवहार रखकर ही हम समाज में बैलेंस बना सकते हैं। एक तरह की सोच और एक तरह का नजरिया ही बेहतर समाज की कल्पना की उड़ान भर सकता है। इसीलिए लड़कियों पर पाबंदी लगाने से पहले लड़कों की सोच, भाषा और व्यवहार पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि शिक्षा और संस्कार दोनों के लिए ही बेहद जरूरी है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और अगर आप अपनी बात को फोन पर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं। एक दिन

0: और याद रखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें। 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन, जहां पर अल्फाजन जो है लिए चलता है आपको यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी के कॉलेज से मुलाकात होती है और

0: ना केवल उनसे मुलाकात होती है बल्कि वहाँ पे जो लोग हमें मिलते हैं उनसे बात भी होती है। वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ की जो आबो हवा, वहाँ की फिजा, वो सब कुछ हम आपके लिए समेट कर लाते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। इसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। और आज हमारी गाड़ी कहाँ आकर रुकी है, आज का जो हमारा पड़ाव है, जहाँ हम पहुंचे हैं, वो है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। और इसे स्टैब्लिश किया गया था, यूनिवर्सिटी ने इसे स्टैब्लिश किया था साल 2017 में। बहुत ही छोटे से समय में, बहुत ही थोड़े से समय में इसने अपनी एक बहुत ही अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, इसने अपनी एक बहुत ही खास जगह बनाई है। और इस दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के बारे में जानने के लिए हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची वहां पर। वहां पे की है उन्होंने ढेर सारी बातचीत और उसी के कुछ अंश हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। आप सुन रहे हैं आरफजन कैंपस कॉलिंग दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। जानते हैं कि ऋचा ने वहां पर किस किस से बात की।
1: एल्फाजन कैंपस कॉलिंग में मेरा नाम है ऋचा और आज मैं आई हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। एक स्टूडेंट मेरे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम कृतिका गांधी है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड ईयर की स्टूडेंट।
1: आप जर्नलिज्म कर रही हैं तो क्या प्लान्स हैं आपके आगे जाके? रेडियो में जाना है, टीवी में जाना है, न्यूज लिखनी है, क्या क्या करना चाहती हैं आप?
2: मेरे को टीवी में जाना है क्योंकि मेरे को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का बहुत शौक है। मेरे पास एक स्किल है जो मैं कोलैबोरेट करना चाहूंगी दूसरे न्यूज चैनल से, अपनी स्किल को कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी।
1: अच्छा, आपको क्या लगता है कि मीडिया का कौन सा ऐसा माध्यम है जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है?
2: सोशल मीडिया।
1: जैसे कई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है जेन जी को, उन्हें नए नए स्लैंग सीखने को मिलते हैं वहां से, मीम सीखने को मिलते हैं और एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, इस बारे में आपका क्या कहना है?
2: जी बिल्कुल होता है, कुछ जो ऐसे स्लैंग्स आते हैं जो हमारे को नहीं बोलने चाहिए वो हम सीखते भी हैं, मगर हमारे को अवेयर रहना चाहिए।
1: क्योंकि आप एक मीडिया की स्टूडेंट हैं, ऐसे में अगर एक सिचुएशन देती हूँ आपको, और क्योंकि आपने कहा कि आप एक टीवी में जाना चाहती हैं, टीवी जर्नलिज्म करना चाहती हैं, मान लीजिए आप एक लाइव इंटरव्यू किसी का कवर करने गई हुई हैं और अचानक से आपका कैमरामैन आपसे कहे कि कैमरा तो चलना बिल्कुल बंद हो गया है, काम नहीं कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे?
2: मोबाइल जर्नलिज्म जिसे मोजो कहते हैं वो हम यूज कर सकते हैं।
1: वेरी स्मार्ट। अच्छा, अगर लाइव रिपोर्टिंग करते वक्त अचानक से बारिश शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे?
2: वहाँ पे खड़ा रहना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे को रिकॉर्ड करना है, सारा दिखाना है पीछे क्या हो रहा है, मगर हमारे को फेस करने आने चाहिए चैलेंजेस, तो मैं वहीं खड़ी रहूंगी, लाइव रिपोर्टिंग करूंगी।
1: और अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रयास के बाद आपने किसी सोर्स को इकट्ठा किया है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जैसे ही आप वहां पहुंचे वो आप सोर्स आपको इन्फॉर्मेशन देने से ही मना कर दे, ऐसे में आपका क्या टेक रहेगा?
2: वहाँ पे जो विटनेसेस होंगे उनसे पूछूंगी, जो गवाह होंगे उनसे पूछूंगी कि क्या देखा आपने, और आसपास के जो शॉप्स होंगे या लोग होंगे जो खड़े होंगे उनसे पूछूंगी।
1: क्या बात है, बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं यहाँ के। बहुत अच्छा लगा कृतिका आपसे बात करके और जितनी जल्दी जल्दी आपने जवाब दिए है ना, मुझे जरूर लगता है कि आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्ज्वल है। आपको भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं, हम आपको बहुत जल्द टीवी पे देखते हैं।
2: थैंक यू सो मच।
1: एक और स्टूडेंट हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम श्रीनाथ शर्मा है एंड आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एट दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी।
1: तो श्रीनाथ, आगे जाके आप क्या करना चाहते हैं?
3: मैम, मैं अपना करियर स्पोर्ट जर्नलिज्म में देखता हूँ आगे, क्रिएटिंग कंटेंट और टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, स्पेशली क्रिकेट एंड इफ नॉट क्रिकेट अदर स्पोर्ट्स एज वेल, फुटबॉल लाइक इट इज ग्रोइंग इन इंडिया। सो एंड नॉट ओनली अ कॉन्टेंट क्रिएटर जो की एक फेस पे फोकस करे स्पेसिफिकली, आई वॉन्ट टू ग्रो एज अ स्पोर्ट्स ब्रांड।
1: तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने वैसे भी जितने भी लड़के हैं वो सारे क्रिकेट के पीछे बहुत ही क्रेजी होते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है?
3: मैं मेरे फेवरेट क्रिकेटर वैसे इंडियन अगर देखे तो एमएस धोनी है, बिकॉज ऑफ हिज ऑलराउंड कैपेबिलिटी, नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन बट एज अ विकेट कीपर एंड अ गुड कैप्टन, ग्रेट कैप्टन एज वेल।
1: अच्छा, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं?
3: मैम, मैंने स्कूल टाइम में अपने स्कूल के लिए अपनी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और मैं थ्रो बॉल में भी काफी एक्टिव था, और बाकी थोड़ा बहुत मुझे सर ने एनकरेज किया तो मैं बास्केटबॉल की तरफ भी थोड़े टाइम गया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई हाइट उन्होंने कहा कि आप अच्छा कर सकते, बट माई फेवरेट विल ऑलवेज बी क्रिकेट।
1: अच्छा, स्पिरिचुअलिटी पे आप कितना बिलीव करते हैं?
3: मैम, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए उतनी ही मायने रखती है कि सब कुछ हमारे हाथ में, जैसे अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें, हम गीता की बात करें तो वहाँ भी कर्मण्येवाधिकार, हमारे हाथ में सब कुछ है। क्या हो जाता है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है, हम अपने शत्रु भी है, पर अगर हम कुछ अचीव कर भी लेते हैं तो हमें उसके लिए कभी भी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर उसके लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि हम आज कुछ भी हैं वो अपने सोसाइटी की वजह से है, अपने एनवायरनमेंट की वजह से है, नेचर ने हमें कितना दिया है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फैमिली ने, या इवन एक फ्रेंड का छोटा सा मोटिवेशन भी, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बहुत मोटिवेट किया।
1: अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से वो आपकी टीचर हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उन्हें एक थैंक्स बोलना है आपको कुछ अलग अंदाज, वो बोल के दिखाइए।
3: मैम, मैं यहाँ पर मैं राजिता मैम को थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और जो एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट था या फिर एक असाइनमेंट था उससे उन्होंने पहचाना कि ये शायद आगे कुछ कर सकता है, और उन्होंने उनके थ्रू ही मुझे उन्होंने युववाणी के लिए मोटिवेट किया और मैंने वहां का ऑडिशन दिया। So I was selected as well.
1: क्या बात है, अगर टीचर्स ऐसे हो तो जरूर आप पत्थर से भगवान बन जाते हो। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और क्योंकि आपने युववाणी में कदम रख ही लिया है तो आप बहुत जल्द हम आपको रेडियो पर सुनेंगे। आपको बहुत बहुत भविष्य की शुभकामनाएं।
3: थैंक यू सो मच।
2: नमस्कार, मेरा नाम शिफाली हेमरम है एंड मैं
1: ओके ठीक है, तो एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। टीवी एंकर और फील्ड रिपोर्टर। माइक या कैमरा?
2: कैमरा।
1: ब्रेकिंग न्यूज या एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया?
2: प्रिंट मीडिया।
1: लाइव रिपोर्टिंग, स्टूडियो एंकरिंग?
2: लाइव रिपोर्टिंग।
1: पॉडकास्ट, रेडियो शो?
2: पॉडकास्ट।
1: अच्छा, कुछ ऐसे सारे मिथ्स हैं ना जो मीडिया की पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि आप एक मीडिया स्टूडेंट हैं तो हम चाहेंगे कि आप वो सारे के सारे मिथ्स बर्स्ट करें हमारे लिए। तो जो पहला मिथ है वो है कि सोशल मीडिया के जमाने में खबरें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, तो जो वायरल खबरें होती हैं वो सारी सच होती है, ये एक मिथ या रियलिटी है?
2: हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया के जमाने में जो वायरल खबरें होते हैं, हर एक खबर अभी सच नहीं होता। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया, तो जो भी वीडियोस क्रिएट होती है ऐसा हो सकता है कि एआई के द्वारा क्रिएट की गई हो, तो हर खबरें जो वायरल होती है वो सच नहीं होता। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा कि आप जैसे ही खबरें सरफेस पे आती है वैसे ही आपको मान लेना नहीं होता, आपको क्रिटिकली एनालिसिस करनी होती है कि ये कितना सच और कितना झूठ है।
1: अच्छा, खबरें हमेशा निष्पक्ष होती हैं, या ये कहूँ कि पत्रकार जो हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष खबरें पेश करते हैं, ये मिथ या रियलिटी है?
2: खबरें कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकती।
1: क्या आपको लगता है कि जो पत्रकार हैं वो निष्पक्ष होते हैं?
2: हो सकते हैं, किसी किसी ऐसे न्यूज ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो बायसनेस दिखा सके, लेकिन हमारे एथिक्स हमें ये समझाते हैं कि जो भी न्यूज होती है, जो भी न्यूज आप प्रोड्यूस करते हैं वो हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए।
1: अच्छा, सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारी न्यूज का सोर्स जो है वो सोशल मीडिया बन गया है, और जो आपसे पहले श्रीनाथ आए थे उन्होंने भी ये कहा कि बहुत सारी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, तो क्या सोशल मीडिया एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी समाचार का सोर्स है?
2: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा है, और इसमें बहुत सारे मतलब एक सिटीजन जर्नलिज्म भी आ जाता है, वैसे न्यूज भी स्प्रेड होते हैं, बट देन यहाँ पे बहुत रिलायबल सोर्सेज भी हैं, जैसे जो भी प्रिंट मीडिया पहले हुआ करती थी वो भी अब सोशल मीडिया पे आ गई है, तो आप जहाँ से न्यूज एक्वायर करते हैं वो मायने रखती है, तो आप सोशल मीडिया के रिलायबल सोर्स से न्यूज लेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
1: एल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, और आज के एपिसोड में बहुत सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स मेरे आसपास हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, और ये जो फ्यूचर के जर्नलिस्ट हैं इनकी क्या राय है वो हम जान रहे हैं। क्या नाम है आपका?
4: नमस्कार, मेरा नाम आस्था उपाध्याय है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म परस्यू कर रही हूँ एंड आई एम करंटली इन माय फर्स्ट ईयर।
1: तो आपने मतलब आप 5 साल बाद जब निकलेंगी तो आपका बीए और एमए दोनों हो चुका होगा?
4: जी बिल्कुल।
1: तो चलिए एक वन वर्ड चैलेंज आपके साथ प्ले करते हैं, ठीक है? मैं कुछ शब्द बोलूंगी और उन शब्दों को सुनते ही इमिडिएटली आपके दिमाग में क्या आता है आपको वो हमसे शेयर करना है। कॉलेज,
4: पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स,
1: दोस्त,
4: फन,
1: एग्जाम,
4: स्ट्रेस,
1: टीचर्स,
4: इंस्पायरिंग,
1: कैंटीन,
4: फन ऑब्वियसली,
1: छुट्टियां,
4: नानी का घर।
1: तो एक दिस एंड दैट का भी एक क्वेश्चन है, वो आपके साथ प्ले करते हैं। ओके, टी एंड अ कॉफी?
4: कॉफी।
1: हॉस्टल और घर?
4: घर।
1: सुबह की क्लास या शाम की क्लास?
4: सुबह की क्लास।
1: अ बुक और अ ओटीटी सीरीज?
4: अ बुक।
1: असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन?
4: प्रेजेंटेशन।
1: अच्छा, कुछ ऐसी मूवीज होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती है, कुछ ऐसी इंस्पायरिंग मूवीज के बारे में हमें बताइए जो आप भी देखना पसंद करती हैं और शायद स्टूडेंट्स को देखनी भी चाहिए।
4: सो देयर इज दिस मूवी कॉल्ड द डेड पोएट सोसाइटी, बहुत पुरानी मूवी है एंड इट इज अबाउट अ बंच ऑफ बॉयज जो हॉस्टल में रहते हैं। दैट्स व्हाई आई फील कि करंट जनरेशन में द मूवी इज वेरी रिलेटेबल एंड इट टॉक्स अबाउट हाउ वन ट्रांजिशंस फ्रॉम टीनेज टू एडल्टहुड। दैट्स व्हाई आई फील दैट मूवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा ने भी बहुत सारी ऐसी मूवीज बनाई हैं और बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं जो कि काफी अंडररेटेड हैं. सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक एनी मूवी बाय सत्यजीत रे विल गिव अ वेरी वेरी यू नो लाइक डिफाइंड नॉलेज.
1: और जो लोग कहते हैं कि हमें तो पढ़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उनके लिए तीन बुक्स बताइए जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती हैं.
4: तो मैम रस्किन बॉन्ड इज अ राइटर फॉर किड्स मेनली, बट आई फील कि ही राइट्स बुक्स विच आर वेरी इजी टू रीड, दे डोंट हैव एस ए हाई वोकैबुलरी वर्ड. सो दैट इज वन राइटर दैट पीपल शुड रीड. एंड अनदर इज रोल्ड डाल. रोल्ड डाल इज द वन हु रोट मटिल्डा. दैट इज ऑल्सो अ किड्स बुक, बट आई फील जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको ऐसी कहानियां जो इंटरेस्टिंग हो, जो जिनमें बहुत हाई वर्ड्स ना हो, तो रोल डाल. एंड अनदर वन इज सुधम.
1: बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. आप बहुत सारे मूवीज और बहुत सारे बुक्स के सजेशन भी मिले हमें. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए.
5: मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ.
1: तो अभी अभी आपका कॉलेज शुरू हुआ है, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी कॉलेज से और अभी कैसा चल रहा है?
5: जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे बहुत ही, मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर एज यूजुअल जो बच्चे होते हैं, बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट माय क्लासमेट्स, व्हेन आई मेट देम, थिंग्स आर वेरी नाइस. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव वन ऑफ द बेस्ट क्लास टीचर्स एंड लेक्चर टीचर्स, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनके क्लास में.
1: वेरी गुड. अच्छा ये बताइए व्हाई जर्नलिज्म, व्हाई यू चूज जर्नलिज्म?
5: मैम आई रियली एम आउट गोइंग पर्सन. एक बार मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ इन एनवायरमेंट, अगर मैं नहीं भी हुई, आई लव टॉकिंग. सो जर्नलिज्म इज That field where you can explore, meet new people.
1: कोई ऐसे celebrity जिनसे आप मिलना चाहें और आपको एक मौका मिले उनसे कुछ पूछने का, वो celebrity कौन होगा?
5: बहुत सारे हैं जिनसे मैं मिलना चाहूंगी, but one of them is Indian origin rapper राजा कुमारी. मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ बचपन से, and she's grown up in USA. मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि मैम आपने वहां रह के इंडियन कल्चर को भी प्रिजर्व करा एंड यूएस के चीजों को भी, she writes in English.
1: अच्छा एक चीज और बताइए कि जैसे हम अक्सर तौर पे कहते हैं कि जो रिपोर्टिंग है वो बहुत ही टफ जॉब है फॉर गर्ल्स, ऐसे में बीइंग अ गर्ल आपको क्या लगता है कि क्या फील्ड रिपोर्टिंग गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है?
5: नो. तो मेरे को लगता है कि इन दिस जनरेशन नोबडी केयर्स इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय, यू शुड नो द वर्क. और अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो.
1: तो सोसाइटी का ऐसा कौन सा नॉर्म है जो आपको बहुत ही परेशान करता है, जिसे आप ब्रेक करना चाहती हैं?
5: इंस्टेड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वेर यू आर पुटिंग डाउन पीपल, बी अ सोसाइटी विच कैन एनकरेज पीपल टू गो आउट एंड वर्क. वो सोसाइटी मत बनो जिनसे हम डरे, एक ऐसी सोसाइटी बनो जिनसे हम, जिन पे हम बोल सके कि अगर मेरी सोसाइटी नहीं होती तो मैं शायद नहीं हो पाती है. तो आई वॉन्ट टू लिव इन दैट सोसाइटी.
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने और आई एम श्योर की आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल करें. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप.
5: थैंक यू मैम.
6: नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में.
1: ओके, क्योंकि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो एक बात बताइए कि आप रेडियो सुनते हैं?
6: जी हाँ, मैं रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ.
1: कौन सा स्टेशन आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है? तो कौन सा रेडियो स्टेशन सुनते हैं आप?
6: मैं एफएम रेनबो सुनना पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा.
1: क्या बात है, तो कौन से शो सुनते हैं आप?
6: मैं इस पे मैसेज मसाला मिक्स जो कि 5 से 6 बजे आता है, अल्फा जैन कैंपस कॉलिंग जो कि 4 से 5 बजे आता है, और बॉलीवुड ट्रेंड.
1: क्या बात है, ये सारे जो शोज है ना, ये बताए मेरी भी बहुत फेवरेट है और इन्हें सुनना मैं भी बहुत पसंद कर रही हूँ. क्योंकि आप एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आगे जाकर आपका क्या प्लान है करने का?
6: जी मेरा प्लान है बिजनेस जर्नलिज्म की तरफ.
1: अच्छा आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो आपकी क्लास में आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है?
6: मेरा जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो यश चौधरी है, जो कि मेरे को बहुत प्रोत्साहन करता है, मेरे को बहुत चीजें समझाता है और मैं भी उसे बहुत चीजें समझाता हूँ. कभी कभार हम नोट्स भी शेयर करते हैं आपस में.
1: और अगर मान लीजिए एक दिन ऐसा हो कि एक एलियन आपके स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में आ जाए, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप सबसे पहले दिखाना चाहेंगे?
6: सबसे पहले मैं उसे अपना कॉलेज कैंपस का टूर कराऊंगा जो कि बहुत ही हरा भरा है, और उसके बाद मैं अपनी सारी क्लासेस एंड उसके बाद मैं अपने टीचर्स से मिलवाऊंगा.
1: अच्छा ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, ठीक है? अच्छा सुबह जल्दी उठना या देर तक सोना?
6: सुबह जल्दी उठना.
1: ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस?
6: ऑफलाइन क्लासेस.
1: होमवर्क या एग्जाम?
6: होमवर्क.
1: किताबें या मोबाइल?
6: फिलहाल जेंजी हूँ तो मैं मोबाइल को ज्यादा प्रीफर करूंगा.
1: समोसा या मोमोज?
6: मेरे को पंडित जी के समोसे बहुत ज्यादा पसंद है.
1: ओके, तो बीचेस या माउंटेन?
6: माउंटेन.
1: बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं आपने, बहुत ही क्विक जवाब दिए हैं आपने. हमें आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपके सभी सपने पूरे हो ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं.
6: धन्यवाद.
0: वाकई में। और ये सभी शुभकामनाएं जो है ना वो हमारी तरफ से भी आप सभी लोगों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ये जो पत्रकारिता होती है एक तरह से डेमोक्रेसी का चौथा पिलर इसको कहा जाता है। और हमारा जो मीडिया है वो इस समय बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जहां जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं सुन रही थी तो वाकई में लगता है कि इनके पास ना केवल इस बदलाव से जूझने की क्षमता है बल्कि उसके साथ साथ इनके पास बहुत से नए आइडियाज भी हैं। ब्रेकिंग न्यूज पुराना हो चुका है और उससे हटकर एथिक्स की बातें करना, रियल न्यूज की बातें करना, अलग अलग तरह से सही न्यूज की बातें करना, वाकई में इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू हियर देम। और जिस तरह से नए नए मीडिया जो है वो उभर रहे हैं, ऐसे में जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की ये बदलती हुई जो तस्वीर है, इसमें एक नया रंग जो है भरने जा रहे हैं ये हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स। और इन्हीं से हम बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में, नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और इसे आप सुन रहे हैं ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। हर बुधवार शाम को ले आते हैं आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कोना और वहां पर आपकी मुलाकात करवाते हैं उस कोने में छुपे बहुत सारे टैलेंट से, स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, प्रिंसिपल से, और आपको रूबरू करवाते हैं इस बदलती हुई दुनिया से, उस नए जोश से जो आगे आने वाले समय में इस दुनिया की नई शक्ल जो है वो उभारने वाला है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जिसमें अल्फा जन हर बार आपको ले चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जो है वहां हम लोग पहुंचे, और वहां पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा, और ऋचा ने की वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत। स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन हाँ, सही न्यूज वही होती है ना जो सभी तरह के पर्सपेक्टिव दिखाए, सभी दृष्टिकोण जो है वो आप तक पहुंचाए। तो चलिए जानते हैं कि ऋचा ने अगली बातचीत जो की वहां के टीचर्स से, उनका दृष्टिकोण क्या कहता है।
3: अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, और मेरे साथ यहाँ पर एक टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर यतिन बत्रा है एंड आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
3: सर, जर्नलिज्म में कहते हैं कि भाषा पर पकड़ बहुत जरूरी है, और जैसे कि डॉक्टर संजय वर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि भाषा बहुत जरूरी है, इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
4: सी, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस फ्रीली, एंड लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट जर्नलिज्म। एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन रीडिंग हैबिट एंड एज वेल एज राइटिंग हैबिट।
3: सर, जैसे कि आपने कहा कि लैंग्वेज जो है वो बहुत जरूरी है, आपने ये साथ में ये भी सजेस्ट किया बच्चों को कि वो पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल हम एक हैबिट देख रहे हैं बच्चों में कि वो पढ़ाई से, बुक्स पढ़ने से बहुत दूर जा रहे हैं। ऐसे में आपका क्या सजेशन रहता है अपने स्टूडेंट्स के?
4: तो मैं शुरू से ही अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करता हूँ कि वह लिखें। मैं अपनी क्लास में छोटे मोटे उनको टास्क देता हूँ जिससे उनकी रीडिंग हैबिट बनी रहे, राइटिंग हैबिट बनी रहे। मैं उनको अलग अलग राइटर्स के लेख प्रोवाइड कराता हूँ, जैसे प्रेमचंद हो गया, सदत हसन मंटो हो गया, जिससे उनको अपनी रुचि के बारे में खुद पता चले।
3: तो ये जर्नलिज्म का स्कूल है और यहाँ पर बच्चे पत्रकार बनने के गुण सीखते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आजकल के पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है?
4: जब तक आप अपने समाज को नहीं पहचान पाएंगे अच्छे से, तब तक आप एक पत्रकार नहीं बन सकते।
3: तो बहुत अच्छा लगे मैं आपसे बात करके, हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश कुमार दुबे, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पत्रकारिता पढ़ाता
3: हूं। सर, हम एक सफल पत्रकार बनने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो सर ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो पत्रकार में होने ही चाहिए?
5: अगर राष्ट्रबोध नहीं है, राष्ट्र प्रथम की भावना नहीं है, भारत बोध की भावना अगर भारत के किसी पत्रकार में नहीं है, भाषा का बोध नहीं, क्योंकि हम बहुभाषी लोग, हमारे यहाँ संविधान में भी कई सारी भाषाएं अनुसूचित हैं, तो देश काल परिस्थिति एक अच्छा पत्रकार बनाती है, हम उसमें कुछ चीजें सजाते
3: हैं। बहुत सारी चीजें देखनी होती है एक पत्रकार को, लेकिन साथ ही जो सोशल मीडिया का युग है, इसमें जो तरह तरह की भांति भांति की जो खबरें हैं, उससे बहुत ही दिग्भ्रमित होता है एक पत्रकार। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो दिशा भ्रमित के अलावा उसके पास और क्या क्या चुनौतियां हैं?
5: सोशल मीडिया पे दो चीजें बड़े अच्छी चलती हैं, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर लेती है, इम्पैक्ट नहीं करता। इसीलिए हम लोग अपने कोर्स में एक नया टर्म, दो तीन चीजें निकल रहे हैं, डिजिटल अवेयरनेस एंड मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी जब तक नहीं आएगी, तब तक फिल्म के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, अखबार, तो आप उसके बहकावे में चले आते। तो दो बातें हो, और संवाद में एक अलग परंपरा है। परंपरा ये है कि विज्ञान मंगल पे चांद ढूंढता है, मंगल पे जीवन ढूंढता है, और पत्रकारिता को जीवन में मंगल ढूंढना।
3: सर, बहुत अच्छी आपने बात कही कि बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के तो युग में तो आगे निकले ही, लेकिन साथ ही अपनी जड़ों को भी पकड़े रहें, तभी हम एक श्रेष्ठ पत्रकार बन सकते हैं। आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
5: आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
6: नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता स्नातक है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हूँ।
3: मैम, डिजिटल मीडिया ने पत्रकारिता को किस तरह बदला है, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि मैम, हमने जो जर्नलिज्म सीखा था वो अखबारों से सीखा, वो टीवी से सीखा, वो रेडियो से सीखा, लेकिन आज का दौर बिल्कुल बदल चुका है। आज SEO का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, आपको क्या लगता है किस तरह पत्रकारिता बदल रही है?
6: बिल्कुल, देखिए, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आप पिछड़े हुए कहलाएंगे।
3: आई एम श्योर कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने भी कुछ कुछ चैलेंजेस होंगे जो शायद हमारे चैलेंजेस से बहुत अलग हैं। तो ऐसे में आप क्या चैलेंज देखती हैं उनके सामने?
6: बिल्कुल, आपने सही कहा, इस टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और क्योंकि आप मोजो, जैसे हमारे कुछ बच्चों ने भी मेंशन किया, मोबाइल जर्नलिज्म, अब हर बच्चे के पास अपना एक मोबाइल तो है ही, तो आपके पास मोबाइल हमेशा है, और आप कहीं भी कैमरा ऑन करके, रिकॉर्डर ऑन करके कोई भी चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है फैक्ट चेक की। क्या आपने फैक्ट्स को चेक किया है? क्या आप पीछे की जानकारी जो है या पहले जो घट चुका है उसे जानते हैं? आजकल के बच्चों के लिए यही एक सजेशन है और तकलीफ या कठिनाई आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है।
3: और जर्नलिज्म में एथिक्स का क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स आगे जाकर जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएं वो मीडिया एथिक्स को होल्ड करके रखें, इसके लिए आपकी उन्हें क्या सलाह रहती है?
6: एथिक्स हम पढ़ाते क्लासरूम में है, लेकिन उनका एप्लीकेशन वो बाहर निकल कर देखते हैं जब आप उनको क्लासरूम असाइनमेंट्स देते हैं और इंटरनल असेसमेंट के लिए आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देते हैं जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते। सिर्फ पीपीटी तक सीमित ना रख के आप उन्हें कुछ ऐसा करने को कहते हैं जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी और जो वो अब तक सीख चुके हैं उसको पूरी तरीके से रखकर सामने दिखा सके। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। वो यहाँ स्टूडियोज में प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं, एड्स बनाते हैं, डिजिटल मैगजीन बनाते हैं, न्यूज़लेटर बनाते हैं। अभी DULF हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल, तो पूरा जो न्यूज़लेटर का काम था उस फेस्टिवल का वो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के ऊपर था।
3: बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए।
6: थैंक यू सो मच।
4: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज है।
3: पत्रकारिता जो है बहुत ही चमकता हुआ फील्ड है। जब देखते हैं बच्चे टीवी में या सुनते हैं रेडियो तो वो खिंचे चले आते हैं इस फील्ड की तरफ, लेकिन असलियत कुछ और है। जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उन्हें जब ये पत्रकारिता का कोर्स कंप्लीट कर लें उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए?
4: बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है कि मास कम्युनिकेशन कोर्स की तरफ जो युवा आ रहा है उसे लगता है कि बस सिर्फ हमें जाना है, एक डिप्लोमा लेना है, एक डिग्री लेनी और हम पर टीवी पर हमारा चेहरा आने लगेगा। और लगभग घर वालों की भी वही उम्मीदें होती हैं कि बस अब कोर्स करवा दिया है और अभी टीवी पे आके कल से खबरें पढ़ेंगे। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी होती है, बहुत बड़ी साधना होती है। स्क्रीन पर आकर कुछ भी कह देना भर पत्रकारिता नहीं है। जिस तरह से हम स्कूल में या किसी अपनी किसी रिसर्च के लिए हम लगातार पढ़ते हैं, सिर्फ जहां हम देखते हैं कि जो पत्रकार का काम सिर्फ वो प्रेजेंट कर रहा है, कई स्थितियों में हम देखते हैं फंस जाते हैं, जो फील्ड में नहीं गए, जिन्हें पता नहीं कि कैमरा कैसे काम करता है। तो मतलब इसके लिए बहुत गहन तैयारी की आवश्यकता होती है।
3: जो स्टूडेंट हैं वो जब यहाँ आते हैं तो बहुत जोश होता है उनमें, लेकिन धीमे धीमे जब उन्हें पता लगता है कि मीडिया की रियलिटी जो है वो एक्चुअली बहुत ही स्लो आपको आगे ग्रो करना है, तो क्या उनके मन में एक निराशा होती है, एक डिमोटिवेशन होती है?
4: भ्रम टूट जाता है। अगर आप किसी भ्रम के साथ आए हैं तो भ्रम टूटेगा, लेकिन कुछ लोग जिस उत्साह के साथ आते हैं वो अंत तक बना रहता है।
3: जब एक स्टूडेंट जाता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की बात आती है, तो बुक्स की बजाय वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की तरफ घूम जाता है और सारा उसका फोकस उस तरफ होता है। तो आपके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पत्रकारिता को कैसे एक नया रूप दिया है?
4: अगर जिसके पास शब्द कम है तो वो बेहतर पत्रकार नहीं बन पाएगा। दूसरा AI मतलब चुनौती पैदा कर रहा है, लेकिन हमें सीखना भी होगा। हम तमाम ऐसे लोगों को जानते हैं जो समय के साथ नहीं बदले, आज मतलब वो कहीं गिनती में भी नहीं है।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने सर। और जो कहते हैं कि जो कुछ पढ़ा है जब हम उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं तभी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। सर आपने बहुत कुछ सिखाया भी, जो हमारे और भी विद्यार्थी हैं जो पत्रकारिता कर रहे होंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद मैम।
3: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के आज के एपिसोड में मैं आई हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मेरे साथ यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर संजय वर्मा सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो पर।
7: थैंक यू।
3: सर ये जो इंस्टीट्यूट है, क्या यहाँ जो पढ़ाई होती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के और भी कई कॉलेजेस हैं जिनमें जर्नलिज्म पढ़ाया जा रहा है और बहुत पहले से, अब सर इस इंस्टीट्यूट की जरूरत आपके हिसाब से क्यों महसूस हुई?
7: क्योंकि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी कॉलेजेस चल रहे हैं, 7-8 कॉलेजेस हैं जहां इंग्लिश और हिंदी में जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है, लेकिन यूजी लेवल का है। और अभी लास्ट ईयर तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के हिंदी डिपार्टमेंट में सिर्फ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का चलता था, मास्टर एज सच जो कि दोनों ही लैंग्वेज में वो कहीं नहीं था। तो ये 2017 में वो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना हुई। इसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है तो 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें बच्चा यूजी पीजी एक साथ होती है, और हमारा एक दूसरा कोर्स भी है मास्टर इन जर्नलिज्म MJ लेटरल एंट्री के लिए। तो दो कोर्सेज जो आपको यूजी पीजी कराने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये एकमात्र दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है।
3: जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी जर्नलिज्म के कोर्सेज रन हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस में, क्या उनका करिकुलम और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है
2: क्या वो दोनों सेम है?
7: जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस 7-8 कॉलेजेस जैसे मैंने बताया उसमें उनका सिलेबस अलग है, जो हमारा सिलेबस है वो टोटली अलग है क्योंकि ये पीजी वाला है और वहां मैंने आपको बताया यूजी लेवल का होता है, तो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो हम ऐसा कोर्स डिजाइन करते हैं कि 5 ईयर में बच्चा सब कुछ सीख सके, प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल है, बहुत तरीके की चीजें, तो ये टोटल हमारा सिलेबस यहाँ का अलग
2: है। सर ऐसी क्या खास बात है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की जो इस इंस्टीट्यूशन को बहुत खास बनाती है?
7: ऐसे पत्रकार तैयार करें जो ये देश को पहले रखें, समाज को पहले रखें, तो इसी के लाइन पे हमारा सिलेबस
2: है। सर आज जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको क्या लगता है कि आज मार्केट में कितना स्कोप है?
7: देखिए अभी तो देखा जाए तो भारत में पूरे तरीके से जो जर्नलिज्म की ग्रोथ हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थोड़ा इधर पिछले 20 सालों में ज्यादा हुई है 1990 और ग्लोबलाइजेशन के बाद से, तो देखा जाए तो अभी 30-40% ही एक तरीके से कहा जाए तो ग्रोथ हुई है। अभी भी रीच बहुत फार फ्लंग एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में या गांव में तक नहीं पहुंचे, अभी भी देखेंगे यूट्यूब वाले लोग वहां पहुंच रहे हैं या स्ट्रिंगर के थ्रू है, तो अभी पूरी तरीके से जर्नलिज्म की ग्रोथ तो हुई नहीं है, लेकिन एक अच्छे डायरेक्शन के साथ ग्रोथ और कंट्रोल्ड ग्रोथ की एक आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पे अच्छे जर्नलिस्ट अच्छे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है ताकि हम मीडिया को उद्देश्य है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना और उनको एंटरटेनमेंट मीडिया जो भी हमारा इसका उद्देश्य है वो सब तक पहुंचे और सब जगह से स्टोरीज राइट टाइम पे आए, ऐसा ना हो कि हमारा स्ट्रिंगर हमें 2 दिन बाद दे रहा और आज हम लगा रहे उसकी स्टोरी की कोई वैल्यू नहीं रहे रेलेवेंस ना रहे, तो इसलिए अभी मीडिया ग्रोथ बहुत पॉसिबल है और अच्छे जर्नलिस्ट पैदा करना ही हम जैसे संस्थानों का उद्देश्य।
2: सर कहते हैं हर जगह अब टेक्नोलॉजी की डिमांड है, हर जगह टेक्नोलॉजी जरूरी भी है जैसा कि आपने बताया अभी, सर आपको क्या लगता है जर्नलिज्म में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है जर्नलिज्म को ग्रो करने के लिए?
7: देखिए बिना टेक्नोलॉजी के तो जर्नलिज्म चल ही नहीं सकता है, इवन प्रिंट भी देखा जाए तो आजकल लेटेस्ट प्रिंटिंग मशीन्स आ गई हैं, पेपर की क्वालिटीज आ गई है, 4 कलर में सब में हो रहा है, तो बिना टेक्नोलॉजी के ये पॉसिबल नहीं है, और नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे आप ये देखिए बहुत सारे बड़े बड़े जो पत्रकार रहे हैं वो सब आजकल अब अपने घर से ही काम कर ले रहे हैं सारा कुछ, तो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो एक अकेला व्यक्ति भी अपने आप में एक संस्थान है।
2: तो आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे और उसके बाद सर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आपने बताया कि आप भी एक पत्रकार रहे हैं, आपने भी किताबें लिखी हैं, आप भी एक प्रोफेसर रहे हैं, सर ये पूरी जो जर्नी है अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आप स्टूडेंट लाइफ में दोबारा पहुंच जाएं तो क्या फिर से आप पत्रकारिता को ही चुनेंगे?
7: जी क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसी है कि इसका कोई एक सब्जेक्ट डोमेन नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान या धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा तो तभी एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं आप, क्योंकि जैसे मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी डीडी न्यूज से की तो मेरे पास दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान था कि मैंने इंग्लिश में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया और हिंदी भाषी क्षेत्र के होने कारण और हिंदी ठीक होने कारण, तो निश्चित तौर पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं वापस से पत्रकारिता की दुनिया में ही जाना चाहूंगा।
2: सर जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर मैं कहूं कि गोल्डन मंत्रास कुछ दीजिए, मैं अगर आपकी तरफ से चाहूं कि जो 3 बातें उन्हें जरूर ध्यान रखनी चाहिए अगर वो एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं।
7: पहली बात आपके अंदर मनुष्य होने का मतलब कि समाज को जानना और समाज के अंदर जितने भी इसके जितने एलिमेंट्स हैं उसको अच्छे से जानना समझना तभी आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। दूसरा भाषा चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वैसे देखिए अच्छा पत्रकार हो जिसकी बाइलिंगुअल कैपेबिलिटी हो क्योंकि बहुत सारी खबरें आपको इंग्लिश में आती हैं और हिंदी में ट्रांसलेशन, तो अगर आपकी दोनों भाषा में अच्छी पकड़ है देन यू कैन एबल टू ट्रांसलेट इट और अच्छा पैकेज आप तैयार कर सकते हो, तो दूसरा भाषा है। तीसरा आपको कोई ना कोई अखबार पढ़ने की आदत, क्योंकि देखिए पढ़ने की आदत होनी चाहिए, पढ़ना चाहे आप पत्रकार पेपर पढ़ें बुक्स पढ़ें तभी एक अच्छी भाषा अच्छा व्यक्तित्व और अच्छी जानकारी मिलेगी, तो बाकी की चीजें आपकी जो है कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी।
2: तो बहुत सारी जानकारी हमें मिली और जो भी हमारे बडिंग जर्नलिस्ट हैं जो बच्चे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं आज वो केवल न केवल आपके माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे बल्कि आई एम श्योर कि वो पढ़ने की आदत को भी डेवलप करेंगे। सर आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
7: थैंक यू बहुत अच्छा लगा, आपने मौका दिया हम लोगों के लिए हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, इसके लिए आपको बहुत।
2: जी हाँ, और इसी तरह से हर बार हर हफ्ते हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स और ये सारी चीजें जो आज आपने सुनी हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा वो पहुंची दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और वहां से उन्होंने जानकारी ये सारी इकट्ठा की आप सभी के लिए, न केवल जानकारी बल्कि बहुत से दृष्टिकोण भी समेट लाते हैं हम आपके लिए, यूनिवर्सिटी की मस्ती भी ले आते हैं आपके लिए, स्टूडेंट लाइफ से एक बार फिर से रूबरू कराते हैं आपको हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए। अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन आज का था बस यहीं तक, इसी के साथ स्वाति को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, थोड़ी देर में होगा प्रोग्राम सैटेलाइट्स और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत से गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

जारी की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पारंपरिक छड़ी मुबारक को विधि पूर्वक निकाला गया। अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हुए। भारत ने होर्मुज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। कहा है कि क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली हरियाणा सहित उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी। और खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल, दिल से दिल तक। किसी मौसम का जादू कहें या कुछ और, आपका हमारा साथ एफएम रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स। मैं आपके साथ कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। अपना ये रिश्ता

दोस्तों सावन जो है वो दस्तक दे रहा है। कल से सावन की शुरुआत है और आज है गुरु पूर्णिमा। हमारे सभी दोस्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में बदरा जो है वो जमकर बरस रहे हैं, हर तरफ हरियाली है और प्रकृति की एक बेहद सुंदर सी चित्रकारी दिख रही है। लेकिन जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जैम की भी समस्या हो रही है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो अगर आपको कहीं जाना है तो बिल्कुल समय पर निकले, क्योंकि शिकायत आप तो करते रह जाएंगे लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जब बादल बरस रहे हों और थोड़ी सी ट्रैफिक जाम की समस्या हो आपके शहर में। प्रोग्राम सिटी लाइट्स में आपके साथ कंचन।

0: जी दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर में गर्मी से तो राहत मिली है। टेम्परेचर जो है वो 9 डिग्री तक कम हो चुका है। बारिश के बाद की जो धूप होती है और उसके बाद की जो उमस की परेशानी होती है वो भी बहुत परेशान करती है। और बारिश में सब तरफ हरियाली होती है, खुशहाली होती है, आप कि जो बगिया है ना छोटी सी वो बहुत सुंदर लगती है। लेकिन हमारे ही घर के किसी कोने में छत पर मच्छर जो है वो पनपते रहते हैं, उनका ठिकाना बन जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मौसम का आनंद लीजिए अपने पूरे परिवार के साथ और जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।
1: 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: बिल्कुल दोस्तों, बादल जो है वो तो बरस रहे हैं दिल्ली एनसीआर में और पूरे भारत में। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं गुरु मुनेश सिन्हा, जो कि सोशल वर्कर हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: हाँ, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, एंड आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: जी सर, आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है जरा बताएं।
1: हाँ, एक्चुअली आज की दुनिया में गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत ज्यादा और भी बढ़ जाता है कि पूरी दुनिया अपने स्वयं से डिस्कनेक्ट हो गई है, और डिस्कनेक्शन का आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा केओटिक सिचुएशन पूरी दुनिया में हो रही है। वॉर हो रहा है, एग्रेशन हो रही है, जो 50 साल में डिवोर्स नहीं हुए 5 साल में हो गए।

0: रोड रेज बढ़ती जा रही है, हेल्थ खराब होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती चली जा रही है, टेररिज्म बढ़ता चला जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हम अपने अंदर के गुरु से नहीं मिले हैं, और अपने अंदर के जो गुरु हैं उसको जब हम अपने आकार से निराकार के अस्तित्व में जाके उसे जब महसूस करते हैं तो गुरु का शरीर नहीं होता है, वो अशरीर है और वो सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर ही बसा होता है। सिर्फ हमें उससे समर्पित होके उसमें मिल जाने का अवसर होता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा में एक्चुअली चांद जो होता है, फुल मून होता है, उसकी पूरी प्रकाशित होती है। और आप सुने कितना अच्छा लगेगा कि चांद का अपना प्रकाश नहीं है, चांद सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। तो ठीक गुरु भी अपने प्रकाश से नहीं, जो ईश्वरीय प्रकाश है, जो चैतन्य प्रकाश है, जो ब्रह्म प्रकाश है, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन जो शरीर रूपी गुरु हैं वो मिलते हैं और हमारे अंदर के अशरीर गुरु से उनका दर्शन करा देते हैं। मतलब एक ऐसा गुरु जो हमारे अंदर है, जब हम उनसे मिल जाते हैं तो वो अंदर के गुरु हमें बाह्य गुरु से दर्शन करा देते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत महत्व है। आज के दिन ध्यान करना, अपने सच्चाई से अपने अंदर परमात्मा को पाना, गुरुओं के गुरु महागुरु को पाना, शिव को पाना, यही गुरु पूर्णिमा का मुख्य उद्देश्य है। खास करके आज का जो दिन होता है, हमारे ऋषि मुनियों ने आज के दिन को चुना कि वेद व्यास जी का जन्म आज हुआ था। ये तो एक स्टोरी है, लेकिन एक स्टोरी से बहुत बड़ी मैसेज दी गई है कि आज के दिन ही ज्ञान प्रखरित होती है, और कण कण में आज के दिन से ही शुरू हुई जो वेद को, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, हमारे जितने भी भाष्य हैं, उनको आज के दिन से ही प्रसारित किया गया। तो गुरु पूर्णिमा तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने सुनने वाले इस पूरे विश्व के श्रोता को जरूर आज गुरु पूर्णिमा की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और मैं ये कहूंगा कि अपने जीवन से 5 मिनट 10 मिनट रोज निकाल के ध्यान करें और अपने अंदर गुरु को पाएं। गुरु को पाना बहुत इजी है अगर आपकी चाहत बहुत नीट एंड क्लीन होती है, नीयत आपकी बहुत साफ होती है। जैसे ही हम स्टैचू बन के बैठते हैं और जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही अपने अंदर जानने वाले को हम समझना शुरू करते हैं, जैसे ही हम अपने अंदर के उस विराट अस्तित्व का दर्शन करना शुरू करते हैं, तो हमें सच्चा गुरु गुरु पूर्णिमा के दिन मिल जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है, आज याद कराने का दिन है कि हर व्यक्ति के अंदर गुरु है। गुरु कैन नॉट बी एक्सटर्नल, गुरु कभी बाहर नहीं होते, गुरु हर वक्त अंदर होते हैं, और अंदर के गुरु के सपोर्ट के बिना बाह्य गुरु हेल्पलेस रहते हैं। इसीलिए अपने अंदर के गुरु को ढूंढना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम अपने अंदर के गुरु को मिल जाते हैं, वही सूक्ष्म गुरु हमें बाह्य आकार वाले गुरु से हमारा दर्शन करा देते हैं। जैसे गुरु उनको वैसी चेतना मिलती है, जैसे गुरु उनको वैसे शिष्य मिलते हैं, और जैसे शिष्य वैसे उनको गुरु मिल जाते हैं।
1: जी गुरु जी, हमारे जीवन के पहले गुरु हमारे माता पिता, लेकिन आजकल हम समाज में देखते हैं कि अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर बच्चे कहीं दूर चले जाते हैं और फिर उनकी सुध नहीं लेते हैं। तो इन बच्चों को क्या कहेंगे कि अपने माता पिता जो हमारे जीवन के पहले गुरु हैं, उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
0: बहुत सही बात, बहुत सही बात। आज की पूरी दुनिया में एक ऐसी प्रवृत्ति आ गई है, ये हमारे संस्कारों का ना होना प्रदर्शित करता है। जो बच्चे अपने संस्कार से दूर चले जाते हैं, जो बच्चे अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, वैसे असंस्कारित बच्चे इस तरह की विचार को अपने जहन में रखते हैं और वो करके दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे बच्चों को या ऐसे दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं और बच्चे, उनको सबको मैं यही कहूंगा कि बचपन से ही अगर अपने बच्चों को रियल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ये अगर हम सही ढंग से समझाने लगे तो हमें ऐसे दिन ना देखने पड़े। इसमें माँ बाप की भी गलती होती है और बच्चों की भी गलती होती है। माँ बाप भी अज्ञानता में

0: बच्चों को रियल हैप्पीनेस, रियल सक्सेसफुल सक्सेसनेस क्या होता है वो नहीं बता पाते। उन्हें बताते हैं देखो उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है, वो बहुत सक्सेसफुल है। हम सक्सेस का पैमाना पैसों पे रखते हैं, तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल पैसों में दिखना शुरू होता है। तो ये अगर फीडिंग बचपन से बचपन में होती है, बच्चों को होती है, तो फिर वैसे संस्कारित बच्चे अपने पूरे जीवन में सबसे पहला स्थान पैसों का रखते हैं, सक्सेस का रखते हैं, मैटरलिस्टिक सक्सेस का रखते हैं। अगर माँ बाप बचपन से ही उनको ये बताएं कि वो देखो अपने माँ बाप की कितनी सेवा कर रहा है और कितना सक्सेसफुल इंसान है, वो कितना अच्छा इंसान है जो देखो समाज का कार्य कर रहा है। अगर हम सक्सेस की डेफिनेशन और हैप्पीनेस की डेफिनेशन अगर हम उसे राइट टाइम पे समझाना शुरू करें, तो ऐसे बच्चे बहुत कम चांस होता है कि वो अपने माँ बाप को के साथ बुरा व्यवहार करें। एक्चुअली ये बहुत डीपर लेवल पे इसीलिए भी चला जाता रह रहा है कि हम बच्चों बचपन से ही बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे रहे। और आज क्या हो रहा है कि बच्चे इतने ज्यादा मैटरलिस्टिक, और आज के जेंजी की जो आप अपने अभी तुरंत आपने स्थिति देखी ही क्या हो रही है पूरी दुनिया में, सिर्फ इसलिए कि उनको घर से संस्कार नहीं मिल रही, उनको सच में उनके अंदर गुरु नहीं दिखाया जा रहा। अगर आप अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर गुरु का दर्शन बचपन से ही ना कराएंगे, तो वैसे बच्चे भटक जाते हैं, और वो इतनी ज्यादा भटक जाते हैं कि ऐसे यू टर्न लेना बहुत दूर आगे निकल जाते हैं, फिर वापस आने में उन्हें बहुत वक्त लगता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमें याद दिलाता है, हमें ये ज्ञान दिलाता है कि आप अपने अंदर उस परमात्म गुरु को दर्शन करें जो अनंत है, जिसका कोई मतलब अंत नहीं है, जो असीमित है, जो चैतन्य की स्पीड, लाइट की स्पीड से भी फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो कॉन्शसनेस जिसके गर्भ में ये हो रहा है वो आप हो, वही ब्रह्म हो। तो फिर अब जैसे ही हम लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाते हैं, तो हमारी चॉइसेस भी बहुत बड़ी होनी शुरू हो जाती है। हम छोटी छोटी चॉइस में नहीं पड़ते, हम पूरी दुनिया के, पूरी जगत की कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो हमारे जैसे ही हम लिमिटेड से अनलिमिटेड वांट रखते हैं हैप्पीनेस की, तो हमारा खुशी का लेवल बढ़ जाता है। और जितने हम संकुचित होते रहते हैं, सिर्फ मैं करता रहता हूँ, करते रहते हैं, तो फिर वैसी खुशी हमें प्रॉब्लम में लाके डालती है। तो आज इस पूरी दुनिया में स्थिति आप देख लें कि जो सिर्फ सीमित हैप्पीनेस में खुश रहते हैं उनकी खुशियां कम होती जा रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा इंसान हो, उसकी साइज, उसकी आकार, उसकी इमेज पूरे ब्रह्म के रूप प्रकाशित हो जाती है, फैलना शुरू हो जाता है। यही तो सच्चा गुरु का ज्ञान है, यही तो गुरु पूर्णिमा के दिन सच में समझने का दिन है। आपका जो क्वेश्चन है ये इतना सुंदर आज के समाज के लिए है कि सच में वैसे माँ बाप के प्रति मैं प्रार्थना करता हूँ, हर रोज एक माला जाप करता हूँ कि ऐसे जो असहाय माँ बाप हैं उनको सद्बुद्धि मिले, उनके बच्चों को सद्बुद्धि मिले, और वो अपने माँ बाप से प्यार करें, अच्छे ढंग से रखें, और एक स्वर्ग बनाएं अपने परिवार में। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं होता, स्वर्ग अपने घर के अंदर होता है। हाँ, तो दो कदम आगे दोनों को आपस में बढ़ना होता है, दो कदम बच्चे आगे बढ़ें और पेरेंट्स भी दो कदम बच्चों की तरफ आगे बढ़ें। रिजिड, कई बार ऐसी प्रॉब्लम इसलिए भी आती है कि पेरेंट्स इतने रिजिड होते हैं कि वो माफ करना भूल जाते, उन्हें मालिकानापन बचपन अपने अंतिम समय में भी इतना ज्यादा रहता है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। तो आज के जमाने में ऐसी स्थिति से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों का दिल बहुत बड़ा करके, एक दूसरे को गले लगा के, एक जीवन को हंसते हंसते बिताने का जो ज्ञान है, वही आज गुरु पूर्णिमा के दिन देना चाहिए और सबको समझना चाहिए। आपका बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये।
1: सर, एफएम रेनबो से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।
1: दोस्तों, हमारे जीवन के पहले गुरु, हमारे माता पिता और हमारे सभी टीचर्स को आज नमन करते हैं हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एफएम रेनबो पर।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। मैं आपके साथ कंचन हूँ और देखिए दिल्ली की लाइफलाइन है दिल्ली मेट्रो, और मेट्रो में होती है बहुत ज्यादा भीड़, लेकिन मेट्रो के बिना दिल्ली वालों का, एनसीआर वालों का बिल्कुल काम नहीं चल पाएगा, है ना। तो हम किसी भी सेवा को जब लेते हैं तो उस सेवा से कितने संतुष्ट हैं ये भी तो मायने रखता है, लेकिन दिल्ली मेट्रो जो है ना वो ग्राहक संतुष्टि सर्वे कर रहा है, यानी कि आप दिल्ली मेट्रो की सेवा से कितने संतुष्ट हैं ये आप बता सकते हैं। 14 अगस्त तक ये सर्वे चलेगा और इस सर्वे में यात्री मेट्रो सेवाओं से संबंधित प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कहाँ पर दे सकते हैं? www.delhimetrorail.com पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आप दिल्ली मेट्रो से कितने अधिक संतुष्ट हैं। वैसे सच कहूँ, अगर दिल्ली मेट्रो ना हो ना तो जिंदगी कैसी होगी, कल्पना करना बहुत बहुत मुश्किल है। प्रोग्राम चल रहा है सैटेलाइट्स, मैं कंचन, सुनते रहिए एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

दोस्तों हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में सभी स्वस्थ रहें। और एक बहुत अच्छी खबर ये है कि स्ट्रोक के बाद जब बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है तो लाखों हिंदी भाषी मरीजों के लिए राहत की उम्मीद जगी है जब मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया गया है। और ये जो इंटोनेशन थेरेपी है वो IIT दिल्ली, एम्स और इहबास तीनों ने मिलकर ये डेवलप किया है। तो इसमें जो है ना मरीज, स्ट्रोक के जो मरीज हैं वो संगीत की धुन पर, लय पर दोबारा से बोल सकेंगे। कितनी बड़ी खबर है ना, और कितनी राहत भरी खबर है जब बोलने की क्षमता चली जाती है स्ट्रोक के बाद तो वो मरीज भी अब बोल सकेंगे। संगीत में जादू तो है ना। प्रोग्राम चल रहा है सैटेलाइट्स।

दोस्तों, कल से सावन की शुरुआत हो रही है और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होती रहेगी, ये अनुमान है। तो बारिश में बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने घर में रहें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें। और सावन आते ही बहुत सारे त्योहारों की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सावन की सोमवार की शुरुआत होती है और उसके बाद आज़ादी का पर्व, हरियाली, तीज और रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और उसके बाद कई सारे त्योहारों की झड़ी लग जाती है। तो ऐसे में दिल्ली हाट और दिल्ली के बाजारों में बहुत अधिक रौनक है। इस पर भी प्रोग्राम्स में बात होती रहेगी अगले प्रोग्राम्स में। और हमारे बात यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, और इसमें सीमा आपके साथ रहेंगी। मैं कंचन लेती हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का हाथ थामी रखिए और दीजिए विदा मुझे। नमस्कार।

और अब सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रस्तावित विधेयक

वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों में अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए 1,54,57,00,000 रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल के लड़ाकू सामान्य ड्यूटी समूह सी पदों की भर्ती के लिए नियम 2026 की अधिसूचना जारी की। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आज से राजधानी में सुचारू आवाजाही और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक यातायात परामर्श जारी किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पारंपरिक छड़ी मुबारक को विधि पूर्वक निकाला गया। अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हुए। भारत ने होमुर्ज जल डमरू मध्य में कई समुद्री जहाजों पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। कहा, क्षेत्र में कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली हरियाणा सहित उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी। और खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। तो ये थे अब तक के एफएम मुख्य समाचार।

जी हाँ, और एक बार फिर से मुलाकात का वक्त हो गया है, बात का वक्त हो गया है, और आज एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सीमा। जैसे कहा जाता है ना कि हम एक बार मुलाकात का वादा करके चले जाते हैं, फिर आना जरूरी हो जाता है उस वादे के लिए। जी हाँ, उस वादे की अहमियत को पूरा करने के लिए। तो हमने वादा तो किया था और उस वादे मुताबिक हम तो आ गए। अब आप पहुंचे या नहीं आप पहुंचे हमारे शो पर, आप हमें जरूर बता दीजिएगा। और मैं तो इंतजार कर ही रही हूँ और आप भी इंतजार कर रहे हैं हमारे शो का। प्रोग्राम शुरू हो चुका है मैसेज मसाला मिक्स आपके अपने आकाशवाणी एफएम पर। और मैसेज क्या करेंगे, बात क्या करेंगे, और सीमा इतनी सारी बातें करनी होती हैं, है ना। बिल्कुल, सावन की शुरुआत हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, बात तो कुछ सावन की करेंगे, मौसम की बात करेंगे, बारिश की बात करेंगे, सावन की बात करेंगे और यादों की बात करेंगे। इन सब की बात करते हुए पॉइंट पे आ जाते हैं कि जैसे ही सावन आता है, बचपन से लेकर आज तक जैसे ही सावन का मौसम आ जाता है, एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा नयापन, एक अजीब सी बोराहट अपने आप आ जाती है ना। और क्या क्या याद आता है जैसे ही सावन आता है। बचपन में भी देखते होंगे बारिश होती थी, कितनी सारी बातें होती ना। मुझे याद आता है जब बारिश होती थी हम स्कूल जाते थे, और जब हम स्कूल से भीगते हुए जान जान के आते थे, जान जान के पूरा भीग भीग कर आते थे कि मस्ती में कि कितना मज़ा आता था। तो आज कुछ ऐसी बात करनी है कि जैसे ही सावन का महीना आया है और कितनी सारी यादें आ रही है ना याद, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ पल, कुछ खाना। तो चलिए इंतजार कर रही हूँ आपका, और आप भी इंतजार कर रहे हैं। और अब मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करवाने वाली, अब इंतजार आप भी मुझे मत करवाइएगा। 9868107070 पर इंतजार कर रही हूँ आपके मैसेजेस का और मुलाकात का वक्त। जी हाँ, सावन का महीना है ना, मिलना तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर अभी भी किसी से बोला है ना कि मिलना है, मिल लेना बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि इस हल्की हल्की बारिश में उस मुलाकात का मज़ा सच में दोगुना हो जाता है। सावन आ गया है, बादल छा गए हैं, रिम झिम बरसी फुहार, और यादों ने फिर एक बार खोल दिया है दिल, बंद द्वार। आइए हम भी खोल

बिल्कुल, और धीरे धीरे से ही सही, मगर फासला मिटा तो है ना। और ये जो फासला मिटा है, इस फासले को मिटाने के लिए तो हम यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं, और जो कि जो बीच में थोड़ी सी दूरी थी ना, वो दूरी मिटा देगा हमारा ये मौसम। चलिए, मौसम की बात कर रही थी और यहाँ पे मैं मैसेज ले लेती हूँ पहले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप का मैसेज आ गया है हमारे पास। और इसी के साथ साथ हमारे साथ सौरभ भी आ चुके हैं। सौरभ, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लगता है सौरभ का जब भी मैसेज आता है, और उसमें कुछ भी नहीं होता लेकिन उसमें सब कुछ होता है, सच कह रही हूँ। और इसके अलावा सुरीली आवाज और इसके अलावा बहुत अच्छा सा मैसेज, बहुत लंबा मैसेज लिखा है। ये मैसेज किसने लिखा है पहले हम ये देख लेते हैं। रोहित खेड़ा ने लिखा है ये मैसेज, और बहुत बड़ा मैसेज है, पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगी लेकिन हाँ थोड़ा सा जरूर पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है सावन के महीने की, और यहाँ पर इन्होंने जो आखिर में लिखा है कि जीवन में कुछ करें ना करें मगर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और भोले जी को अर्पण करें, और सावन आते ही लगता है मानो मन उड़ने से लगा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा रोहित आपने कि सावन आते ही लगता है कि मन उड़ने से लगा है। अनुकूल

बिहार झारखंड से पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये अनुप कुमार ने ही झारखंड से मैसेज भेजा है, रेन एंड सॉन्ग्स मेकर हैप्पी हो। अगला मैसेज हमारे पास नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाले से, गुड इवनिंग जी, शुभ संध्या सीमा। हमारे अपने बचपन में सावन के आने से बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता था, क्योंकि इस महीने में हमारी बुआ आती थी और वह रहकर राखी बांधने के लिए आती थी। हाँ, ये वाली बात तो मैं भूल ही गई थी, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। इसके अलावा हमारे पास सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन, राजेंद्र जी, पद्मा, ये सब पद्मा टॉकीज नीपा नगर से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास विजेंद्र गहटोल अकोला महाराष्ट्र से ये लिख रहे हैं कि सावन के महीने में सीमा जी हम ओमकेश्वर उज्जैन घूमने जा रहे हैं, विजेंद्र गहटोल अकोला महाराष्ट्र से। तो आप तो वही जा रहे हैं घूमने के लिए, चलिए आप तो वहाँ जा ही रहे हैं, हमारे भी प्रणाम ले जाइएगा वहाँ तक और भगवान जी को हमारे भी नमस्कार कहिएगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा और सुनते रहिएगा, आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स और सावन के महीने की आप जो यादें हम डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। तो चलिए ये ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपके मैसेजेस, ढेर सारी बातें।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम सुन रहे हैं आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सीमा। और चलिए ले लेते हैं हम यहाँ पर मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस ना लिए जाएं तो भाई हमारे प्रोग्राम कैसे कंप्लीट होगा। चलिए यहाँ पे हम मैसेज ले लेते हैं। ये है गाने बहुत ही खूबसूरत हैं दीदी और अगला मैसेज यहाँ पर आया है पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन महीना आता है तो सबसे पहले सावन के महीने में आने वाले त्योहार याद आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, श्रावण सोमवार और भगवान शिव जी का व्रत उपवास करके दिन याद आते हैं। सावन में हर सोमवार को तो मैं उपवास रखता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि हफ्ते में अगर एक दिन उपवास किया जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसी के लिए अनिल शर्मा सरिता विहार से हमारे साथ आ गए हैं प्रोग्राम में। सावन का महीना आया, बचपन तीज त्योहार की यादें ताज़ा हो रही हैं। रिमझिम झूलों में झूलना, मस्ती की यादें, बुढ़ापे में बचपन याद आ रहा है। और महिलाओं का तीज का जो त्यौहार होता है, कांवड़ियों को जल अभिषेक पूजा संस्कारों की यादें ताज़ा हो रही हैं। बिल्कुल

ढेर सारे जो त्यौहार है ना शुरुआत हो गई है, यहाँ से आगाज हो चुका है यहाँ से प्रोग्राम में, और साथ ही साथ कल से शुरू हो रहा है एक कहते हैं ना खूबसूरत सा महीना। तो चलिए अंशी भी हमारे साथ आ गई हैं और ये कह रहे हैं कि जब भी सावन का टाइम स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है जैसे भोले बाबा जी के दर्शन हो गए हैं, उन्हें याद करके मन में श्रद्धा जाग उठी है कि फास्ट रखना है, मंदिर जाना होता है। बचपन में तो सबके साथ जाया करते थे मंदिर ना, जब तीज का फेस्टिवल आता है तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि हरी हरी चूड़ियाँ पहनना, झूला झूलना बहुत याद आता है, अच्छा लगता है। जब छोटे थे ना, लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है और खुशी अब खुशी से नहीं लगती। अंजी वैसे कह तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हाँ क्यों ना हम एक बार फिर से खुद एक बार बच्चे बन जाएं और फिर खुद से एक बार क्यों ना एक बार जी लें। हाँ बिल्कुल सही कहा कि बचपन में वो सावन में झूला डालते थे, याद है कितना अच्छा लगता था, और झूलते थे, कहीं ना मिला तो स्कूल में झूल लेते थे। और इसके अलावा सच कहा कि अब मेहंदी लगाना कितना अच्छा लगता था साथ में, कितना अच्छा। और मुझे लगता है कि घेवर खाना भी तो इसी सीज़न को मिलता है ना, तो वो कैसे भूल सकते हो आप। और यहाँ पर मैसेज आ गया है हमारे पास गाज़ियाबाद से, गाज़ियाबाद पूजा कॉलोनी से कपिल यादव, और सावन के इस महीने में मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है भीगी मिट्टी की खुशबू, छत पर लगे झूले और शाम को चाय के साथ गरम गरम पकौड़े। सावन मतलब हरियाली, कजरी के गीत और दिल को सुकून देने वाली बारिश। सीमा तुम्हें सावन में क्या याद आता है ज़रूर बताना। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी मैं तुम्हें और कपिल, और एक बार मैं सबके मन की जान तो लूँ उसके बाद मैं बताऊंगी, पहले मैं सबके मन की निकाल लेती हूँ बाहर। उसके बाद मैं बता लेती हूँ यहाँ पर मैसेज किसका, हीरामणि वर्मा का आ गया है। सावन महीना आने से मुझे मेरी बचपन की बेहतरीन यादें याद आती हैं, हम सभी भाई बहन माँ के साथ मंदिर करने नदी किनारे मंदिर जाया करते थे, माँ पूजा करती थी, मेरा ध्यान तो नदी पर रहता था लेकिन माँ का ध्यान भी हम सभी की तरफ रहता था। गांव में पूरे सावन भर भजन कीर्तन रामायण का पाठ होता था, आज भी होता है, बगीचे में झूला झूलने जाते थे, कसम से बड़ा मजा आता था। आज तो पूरा बचपन याद आ गया है। ऐसे ही हमारे जो प्रोग्राम का जो थीम होता है ना, यही तो होता है ना कि आपको पुरानी बातें याद ही कराना, जिन्हें हम कहीं ना कहीं कहते ना कि भूल से गए थे, कहीं ना कहीं हम उसे कहते हैं कि इतनी जो हमारी इतनी कामकाज की ज़िंदगी है इसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को समय दे ही नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आज वक्त मिला है कि आप और मैं मिलकर आज पुराने दिनों की बातें करते हैं। मैं तो बोल के कर रही हूँ, आप लिख कर कर रहे हो। जी हाँ, बादल ने झुक कर जब जमीन को चूम लिया, सावन ने तेरा नाम हवाओं में बुन दिया, हम भी मुस्कुरा दिए भीगती हुई शाम में, एक बूंद ने जैसे तेरा पैगाम सुना दिया। बिल्कुल, और ऐसी बातें जो लिखते हैं वो हमारे सरफराज आलम जी ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज उन्होंने भेजा है, आपने मेरी रचना चोरी कर ली शेर पड़ी। अच्छा, आप मेरा नाम पता पढ़ना भूल गई हैं। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से, बहुत ही खूबसूरत सा लिखते हैं ये और बहुत अच्छी लाइन्स इनकी होती हैं। आई एम शकूल बाला फ्रॉम फालाकाटा वेस्ट बंगाल से, और ये बोल रहे हैं कि मैम आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, थैंक यू। सावन का घेवर, यस आ गई ना बात सुबह पे। और मोनिश इद्रिस उत्तर प्रदेश से, सावन के महीने में जब भी बारिश होती है तो दोस्त बुलाने आ जाते थे बारिश में नहाने के लिए। जब मैं दिल्ली में रहता था ना सुल्तानपुरी में, मेरे दोस्त सलीम आरिफ, ये भी बिल्कुल सही बात कही थी। और अगला मैसेज हमारे पास है गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली का, बगैर सुने कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, सुनने के बाद बात गलत नहीं करना चाहिए। और मैसेज मसाला मिक्स में नमस्कार नमस्कार ले लिया, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मेरे मैसेजेस को ही नजर ना लग जाए, तो वो तो मैं लगने नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास है नजर बट्टू। चले जी हाँ, मैसेज मसाला मिक्स आपकी अपनी सीमा के साथ, और आज आप कर रहे हैं सावन का हम कहते ना वेलकम कर रहे हैं, कल से शुरू हो रहा है ढेर सारी बातें, सावन की पुरानी यादें आपके हमारे साथ हमारे प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में।

जी हाँ, नज़र बट्टू। और हमारे पास तो नज़र बट्टू है, और वैसे भी हमारे जो दोस्त इतने अच्छे हैं ना, हमारे को किसी की नज़र लग ही नहीं सकती है। और चलिए, अब हमारे मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं, उनको नज़र ना लग जाए कि पढ़ पता है क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, फिर लिखना बंद कर देते हो, फिर कहते हो अरे सिया मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, अब मैं मैसेज नहीं करूँगा। चलिए, शुभ संध्या, सावन का महीना और चारों तरफ हरियाली, कोयल की कूक, ये सब प्रकृति का ही कमाल है। रवि जोशी मेरठ से। सावन के महीने में इतनी सारी बातें याद आ गई हैं, पता है कहाँ कोयल के कूक सुनने को मिलती है ना। संजय श्रीवास्तव गुना एमपी से मैसेज हमारे पास कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़े मैसेज के साथ कौन जुड़ गया है यहाँ पे, पहले मैं नाम पढ़ लेती हूँ, मैसेज तो पूरा पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ। मनीष शर्मा जी हमारे साथ दिल्ली में। सावन से जुड़ी हमारी अनेक यादें हैं, लेकिन कुछ यादें जो बचपन की थी वो बहुत ही ज़रूरी हैं। जिसे मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, जिसकी कोई छत नहीं थी, वहाँ पर एक पेड़ के नीचे हमारे गुरुजी श्री मांगीलाल जी पढ़ाया करते थे। अरे क्या बात है, हमारे पे एक सर जी का नाम मांगीलाल था, कहीं वो हमारे वाले आपके वाले तो नहीं थे। और आज गुरु पूर्णिमा भी है तो उनको याद करना बनता है। उनकी कोशिशें थी से ही वह स्कूल शुरू हुआ था। जब भी बारिश होती थी वो अपने किसी के परिचित व्यक्ति के घर बरामदे में हमारी क्लासेस का कंटिन्यू करते थे, तो कभी किसी मंदिर के प्रांगण में हमारी क्लासेस लगाते थे। उस तरीके से उन्होंने हमें पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कोशिशें और उनकी बातें हम मन में अच्छे से हमें याद हैं, और भविष्य में भी उनको याद में रहेंगे, करते रहेंगे। और उनसे और उनके जैसे और भी गुरुजनों से प्रेरित होकर मैं भी शिक्षक बनने का निर्णय लिया हूँ, और एक गुरु बनने का प्रयास जारी है। बिल्कुल मनीष, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी अपने गुरु के कहते ना कि कदमों पर चलते हुए बिल्कुल एक ऐसे ही गुरु बनेंगे, जो कि आज जैसे आप अपने टीचर को याद कर रहे हो ना, कल आपको भी लोग याद करेंगे। सोनिया विहार से कंचन।

हमें मैसेज आ गया है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और सावन के महीने में बहुत अच्छा होता है कि खूबसूरत होता है, सबसे ज़्यादा इसमें मेरे हिसाब से प्यार का महीना होता है। अच्छा जी, आ गई टॉपिक पे। सावन महीने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो हरा भरा पेड़ पौधे होते हैं, सुहाना सुहाना मौसम होता है, बादल होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, सच्ची सब कुछ बहुत अच्छा, और उस पर आपके मैसेज आ जाएँ तो वो तो और भी बहुत अच्छे लगने लगते हैं। और पता है ना कि जब आपके मैसेज आते हैं इतने खूबसूरत से, और इतनी सारी बातें आपने मुझे याद दिला दी हैं, शायद वो मैं भूल भी गई थी। अंशी ने थैंक यू सो मच का मैसेज कर दिया है, दानिश का भी यहाँ पे मैसेज आ गया है, और यहाँ पर अगला मैसेज किसका आया है हमारे पास, भुवनेश का मैसेज आ गया है, अशोक विहार दिल्ली से, हाउ आर यू, आई वुड, ये कह रहे हैं आज के टॉपिक पे कहना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू से दैट आई रिमेंबर अ फनी इंसिडेंट रिलेटेड टू रेन। व्हेन आई वाज इन स्कूल वन डे इट वाज वेरी हॉट, सो आई स्टार्टेड टू सिंग द फेमस सॉन्ग काले मेघा पानी तो बरसाओ, एंड सडनली इट स्टार्टेड टू रेन। दिस मेड माई फ्रेंड वेरी हैप्पी, इट वॉज फनी कोइंसिडेंस, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। अच्छा अच्छा जी, उसको कहाँ पे, देखो ये वाली बात तो होती है, कई बार होता है ना कि हम सोच रहे होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं भगवान जी से, और वो हमें मिल जाता है, सडनली वो मिल जाता है, और हमें यकीन नहीं आता है कि कैसे मिल गया हमको, ये तो मैंने आज ही सोचा था, ये तो मैंने आज ही कहा था, है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी कभी हुआ है तो आप मुझे बताना कि कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमने आज जो सोचा वो मिल गया। ऐसा सच में होता है। तो चलिए अगला मैसेज हम यहाँ पे ले लेते हैं, और किसका आया है, बारिश में तुलसी के पौधे ज़रूर लगाना चाहिए, बारिश में तुलसी की जो मंजरी मिट्टी में डाल दो बस, बाकी काम बारिश कर देती है, तुलसी अपने आप ही उग जाती है। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से मैसेज लिख रहे हैं। इसके अलावा बहुत इंजॉय कर रहे हैं शो को, कौन कर रहे हैं, विजेंद्र जी कर रहे हैं शो को इंजॉय बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, सावन का महीना की कहानी, मेरे खेत सावन का महीना में बहुत ही हरे भरे हैं, किसान देख कर जीते हैं, जावेद आलम, और मेरा बेटा मोहम्मद जियान, जी हाँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं मैसेजेस ले पा रही हूँ सभी के। आई एम शकू शुकलाल बाला फ्रॉम फालाकाट वेस्ट बंगाल से, नाम स्पेलिंग शुकलाल बाला, शुकलाल बाला, आई थिंक अब ठीक होगा, है ना, मेरे ख्याल से अब ठीक होगा, और अगर अभी भी ठीक नहीं है तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि वैसे इतना मुश्किल नाम नहीं था, मैंने गलत पढ़ दिया था शायद। चलिए अगला मैसेज ले लेती हूँ। अगला मैसेज में यीशु का बिल्कुल घेवर भी खाने को तो मिलता है, लेकिन साथ ही आम का सीज़न भी ख़त्म हो रहा है। अरे क्या बात याद दिला दी, आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है, ओ गॉड, आज ही रखने पड़ेंगे बहुत सारे, मुझे मेरा आम मेरा बहुत बहुत बहुत फेवरेट है। इसको मैं किसी भी वक्त खा सकती हूँ, तो तुमने मुझे याद दिला दिया आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है यार। बहुत ज़रूरी बातें कर रहे थे हम, और बहुत ज़रूरी बात आपने मुझे याद दिला दी, थैंक यू सो मच। मैसेज मसाला मिक्स आपकी अपनी सीमा के साथ, और आज कहना ज़रूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, सच्ची बहुत बहुत बहुत प्यार हुआ है, और इतना प्यार हुआ है कि देखा आम भी खरीदने पड़ेंगे आज मुझे।

जी हाँ, बिल्कुल कहना ज़रूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, बहुत प्यार हुआ है, और इतना प्यार हुआ है कि वक्त का पता ही नहीं चला। जी हाँ, कहते हैं ना कि 6:45 हो गए हैं और सच में पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया वक्त, क्योंकि प्यार जो है, प्यार में ना पता ही नहीं चलता है कि वक्त कहाँ चला जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि मुलाकात से पहले जो इंतज़ार का मज़ा होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए तो होता है क्योंकि प्यार होता है, और प्यार है हमें सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी से। जी हाँ, और आदरणीय सीमा जी, थैंक यू सो मच, और कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सावन के महीने में भोले जी को, पावन महीना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला मैसेज है शमसूल कमर राही का। सावन की ठंडी ठंडी फुहार और आसमान पर छाए काले काले

बादल अपने अपने घरों को लौटते परिंदे और फिजा में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और पानी में कागज की नाव बहाते हुए बच्चे। हाय क्या क्या याद दिला रहे हो आप मुझको आज। ये सब करते थे हम लोग यार। वो नाव बनाते थे, पानी में तैराते थे। कई बार वो नाव ठीक से बन नहीं पाती थी, ज्यादा दूर तक तैर नहीं पाती थी। फिर जाते थे पानी में जाकर उस नाव के पास, फिर उसकी रिपेयर करते थे, मेंटेनेंस करते थे, फिर वापस उसे चलाते थे। पानी के पीछे से उसे धक्के भी देते थे कि नाव थोड़ी आगे तक जाए। कई बार नाव बहुत अच्छी बन जाती थी जो बहुत दूर तक निकल जाती थी। हाय माँ की खूब पिटाई जब हम भीग कर घर आते थे। और बचपन की बात चली गई, खूबसूरत यादें, दिलों की महक। हाय काश वो लम्हे फिर से आ जाते। आ गए ना आज वो लम्हे, लेकर आए हैं ना हम वो लम्हे। आज हम उनको याद करके एक खूबसूरत सी मुस्कान अपने चेहरे पर ला पा रहे हैं ना। इसीलिए तो हमने बात करी आज सावन की। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीम फरहान, फाहिरा, फारिया, ताहिरा, ये सभी आ गए हैं हमारे प्रोग्राम में। और आज हम इस वक्त सफ़र में आपको सुन रहे हैं। बचपन में सफ़र की बेशुमार यादें ताज़ा हो गई हैं बिल्कुल। और चंद्रेश दिल्ली से, मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, कहाँ गया मैसेज आपका। सावन का घेवर पढ़ा था मैंने चंद्रेश, पढ़ा था। और ये मैसेज आपने कहते ना आपकी मधुर आवाज़ डेली सुननी चाहिए ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। और सावन का घेवर, सावन का घेवर, बिल्कुल सावन का घेवर लेते हुए जाना पड़ेगा आपकी बार तो मुझे लग रहा है। अनिल शर्मा जी ने भी लिख दिया है, नज़र बट टू बचाए बुरी नज़र वालों से। और जैसे कि आज का जो मैसेज मसाला मिक्स है इसको कहीं नज़र ना लग जाए, नज़र बट टू बचाए, बिल्कुल बचाएगा अनिल शर्मा जी। आपका जो हमारे पास ब्लेसिंग्स है ना, किसी की नज़र हमारे तक आ नहीं पाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना वो पहले ही सारी नज़र को उतार लेते हैं, आप हो ना हमारे बीच। इसके अलावा रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से हमारे साथ हैं और ये लिख रहे हैं कल से हमारा सावन शुरू हो रहा है, इस बीच हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन खाना बंद रहेगा और बेटियाँ और भतीजियाँ पूरे महीने सोमवारी व्रत करेंगी। अरे बाप रे, वैसे मैंने कहा ना कि व्रत करना बहुत अच्छा है। और इसके अलावा दीपांशी, ये मैसेज नहीं है, ये मैसेज है गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वरुण वर्षनेय फ्रॉम अलीगढ़ से, सावन के महीने में शिव की आराधना करना और सावन के झूले बहुत याद आते हैं। जी हाँ, जल्दी जल्दी मैं मैसेज ले लेती हूँ है ना, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस छूट रहे हैं। आदिल कमर गुन्नौर से भी आ गया है मैसेज, और मुझे बचपन जब याद आता है कागज़ की कश्ती छप छप करना और नहाना जी भर याद आता है। इसके अलावा आई एम शुकुल वाला, ये मैसेज मैं ले चुकी हूँ। अगला मैसेज भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, मेरा नाम एक बार फिर से लीजिए ना प्लीज़। कौन सा, सोनिया मेहार से यश, जी हाँ यश का महीना, यश यश का मैसेज आ गया है और ये मैसेज लिख रहे हैं कि सावन का महीना बहुत ही अच्छा लगता है, सावन के महीने में कहीं घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो सावन का मौसम है ना बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, इसके अलावा अगला मैसेज हम ले लेते हैं। मैं नवल वरक फ्रॉम गाँव मलपड़ जिला उत्तर गोवा से, सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाओं का त्यौहार के साथ। सभी त्यौहारों की शुरुआत होती है। प्लेलिस्ट वाकई बहुत अच्छी है और जो आपका जो मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। रात 8 बजे भी आपको आना है ना। जी हाँ, रात 8 बजे भी मैं आऊँगी, क्या बात है, ये हुई ना बात। ये होते हैं दोस्त हमारे जिन्हें याद है कि रात 8 बजे भी आना है, कितना मज़ा आता है ना। बारिश की बात कर रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस की बात कर रहे हैं, बारिश की फुहारों की बात कर रहे हैं और कागज़ की कश्ती की बात कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हो गई हैं लेकिन बारिश का गाना कहाँ गया सीमा। अब भी लो क्या देर है, मेरे पास सारे सारी प्लेलिस्ट में मेरे पास सब कुछ है आज।

चलिए आंखें मिलाते हुए मुझे लगता है यहाँ पे मैसेजेस लेने नहीं चाहिए। सोनू, दीपा, चानू, मयंक, जियांशी भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं और ये लिख रहे हैं कि जैसे ही सावन आता है बहुत सारी खुशियां लाते हैं, तीज का त्योहार और रक्षाबंधन और मेला, वाओ।

जी हाँ, और यूं अखियां मिला के अखियों से, और 6:55 हो गए, कहाँ अखियां मिलाऊं मैं अभी इस वक्त किसी के साथ। जल्दी जल्दी मैसेज ले लेती हूँ क्योंकि फिर आपको गुस्सा आ जाएगा। इससे पहले कि गुलाब सिंह जी आ गए हैं सहारनपुर से, और इनकी बेटी का नाम भी मैं शामिल कर लेती हूँ, अनन्या सिंह कोहली। जी हाँ, इनका नाम मैंने ले लिया है। पुष्पा कुमारी इनकी जो वाइफ है, इनके लिए इन्होंने मैसेज किया है, और साथ ही साथ ही कह रहे हैं कि इनके लिए एक जो गाना है ये डेडिकेट करना चाहते हैं। चलिए, उनके लिए मैं अपनी तरफ से गाना डेडिकेट करूंगी। मेरी प्लेलिस्ट में एक बहुत खूबसूरत सा गाना है, मुझे उम्मीद करती हूँ कि दोनों को ही पसंद आएगा। इसके अलावा मैसेज आ गया गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन से। सावन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर सावन में पहले बुआ जी का इंतजार रहता था और अब बहनों और बिटियाओं का इंतजार रहता है। राखी कब आएगी और इसका उन्हें इंतजार रहता है। बिल्कुल, नीता अमरावती से आ गई हैं, आप हमारे गुरु हैं क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कहते ना, जिंदगी में आप जिससे भी सीखते हैं वो आपके गुरु होते हैं, और हर

जिंदगी में रोज हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। इसके अलावा हमारे पास थैंक यू सीमा रीडिंग फॉर माई मैसेज, थैंक यू फॉर यहाँ पर मैसेजेस करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास मैसेज आ गया है, हमारे कोल्हापुर में अभी आम का मौसम चल रहा है, आ जाओ आम खाने के लिए। दीपक सूर्यवंशी कोल्हापुर से मैसेज कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा नमस्कार जी, ये मैसेज आ गया दिल्ली शहर मोरी गेट से, कन्हैया लाल जी, रीटा देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा चलिए, प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ बहुत सारे मैसेज अभी छूट रहे हैं। राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा नाम ले लेती हूँ मैं जल्दी से, मुकेश दिल्ली से, सावन आते ही फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है, और फेस्टिवल की शुरुआत तो हो जाती है जैसे ही आप हमारे साथ आ जाते हो ना, शुरुआत हो जाती है प्रोग्राम्स की, शुरुआत हो जाती है दिन की, शुरुआत हो जाती है खुशी की, शुरुआत हो जाती है दोस्ती की, शुरुआत हो जाती है प्यार की। लेकिन अब जाने का वक्त हो गया जी, अब लेती हूँ इजाजत, बहुत जल्द मुलाकात करूंगी, 8 बजे वापस आऊंगी आपके पास। जी हाँ, म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम लेकर ढेर सारा धमाल करेंगे, कमाल करेंगे। लेकिन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन पहला तू, दूसरा तू, तीसरा तू मेरा हर मोहब्बत आती है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सीमा लेती है इजाजत, टेक केयर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: कमिश्नर 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और आप सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में पेपर लीक पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रस्तावित विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। सरकार ने कहा है, लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन ने स्कूल परिषद के 50 मीटर के दायरे में वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले प्रसंस्कृत और पैकेट बंद पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 7वें पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत मछलीपट्टनम का जलावतरण किया गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पारंपरिक छड़ी मुबारक को विधि पूर्वक निकाला गया। अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, हरियाणा सहित उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी। और खेलों में राष्ट्रमंडल में

वीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी पे प्रोग्राम शुरू हो चुका है म्यूजिक मस्ती, और म्यूजिक मस्ती के साथ हाजिर हो चुकी हूँ मैं सीमा आपके साथ, और आप कर रहे हैं एक से बढ़कर एक डांस के स्टेप। आपको बने रहना है मेरे साथ, और रात भर तो नहीं लेकिन हाँ एक घंटा पूरा डांस करने वाले हैं।

और लाल दुपट्टे की बात हो रही है तो भाई ये जो होता है ना कि सतरंगी दुपट्टा भला वो कैसे पीछे रह सकता है। दुपट्टे को लेकर बहुत अच्छे डांस स्टेप्स होते हैं, तो चलिए आप भी कंटिन्यू करिए, मैं भी कंटिन्यू करती हूँ। म्यूजिक मस्ती जी हाँ, आपके अपने आकाशवाणी फिल्म।

0: तद बॉम सोडा डवे रॉकेट गाय फुल जड़ी से तूने भरेले पॉकेट अरे वारा बन मेरे जैसा बन ये ले नाना का बॉम जाके उड़ा दे घर
1: Poo, Poo, Gertie, Poo.

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ 1000 खर्चे, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
6: ठीक है?
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

रही और मैं हूँ आपके साथ सीमा। और आपको बता दें कि अगला कार्यक्रम रहेगा आपकी याद आती रही जरी नाज के साथ, और उसके ठीक बाद रहेगा आपका सुशांत मल्होत्रा लेकर आएंगे वेस्टर्न म्यूजिक, और उसके बाद रंगे महफिल जरी नाज के साथ। ये सभी कार्यक्रम सुन पाएंगे आपके अपने आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर। और इसी के साथ कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती से लेती हूँ इजाजत, बहुत जल्द मुलाकात करूंगी, तब तक टेक केयर।

नमस्कार, पेश है इस घंटे की खास खबरें। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। सरकार ने कहा, लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये बात कही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, इनमें 5 महिलाएं भी सम्मिलित हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने देशभर की ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से नागरिक भागीदारी पहल दानवीर का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन ने स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा वाले प्रसंस्कृत और पैकेट बंद पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 7वें पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मछलीपट्टनम का जलावतरण किया गया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा किया। अमेरिका ने सभी मिसाइलें नाकाम करने की बात कही। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली हरियाणा सहित उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब पेश है कार्यक्रम आपकी याद आती रही।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो आपकी याद आती रही। मैं आपके साथ आपकी मेजबान जरीन हूँ, आपके साथ हर एहसास को छूने वाली। आज ये शाम मोहब्बत के नाम है, जहाँ हर लफ्ज में इश्क की खुशबू है और हर धड़कन में किसी का इंतजार। मोहब्बत वो शायरी है जो अल्फाज में नहीं एहसासों में बयां होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खूबसूरत गाने 90s वाले, जो कि दिल की गहराइयों को छू जाएंगे। तो पेश है ये पहला ट्रैक कुमार सानू की आवाज में फिल्म जख्म से।

102.6 माइंड ब्लोइंग मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो इंडिया पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही नाज के संग। वैसे कुछ कहना चाहती हूँ, अक्सर जब जब यहाँ आती हूँ, हम इंसान ना खुश रहना चाहते हैं और खुशी जिंदगी के उन पलों का नाम है जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। ये लम्हे मेहमान की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं हमारे ना चाहने के बावजूद। शायरों ने इन लम्हों को लफ्जों में कैद करने की बहुत ही कामयाब कोशिशें की हैं। अगर हम साहिर लुधियानवी साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के चार झोंके गर इधर से भी गुजर जाए। क्या बात कह दी है इस दो लाइन में समेट कर उन्होंने। यानी कि लाइफ में जब भी खुशी का कोई मौका आए तो उसे बस भरपूर तरीके से जी लीजिए, और मोहब्बत में खुशी बहुत ज्यादा मिलती है, दिन बहुत ही अच्छा जाता है किसी की यादों में खोकर।

दिल तो बहुत कुछ कहता है और दिल किसी के तस्वीर में खोया रहता है सुबह और शाम को। शाम को तुम्हारी तस्वीर रोज एक दफा देखती हूँ तो सुकून ऐसा मानो दिन भर सड़कों पर भटकने के बाद किसी ने दोनों पैरों को गर्म कुनकुने पानी में डाल दिया हो। सारी परेशानियां, सारे के सारे फिक्र चंद लम्हात में काफुर हो जाते हैं और बच जाता है तो तुम्हारे मोहब्बत का वो एहसास। वैसे तुम्हारे साथ हमेशा न रह पाने का मलाल तो है, लेकिन इस बात का सुकून भी है कि मैं तो कब का तुम्हारी आंखों में अपना आशियाना बनाकर तुम्हारी परछाइयों में शामिल हो चुकी हूं। पास रहूं या ना रहूं, मैं क्या हूं कैसे बताऊं। शायद एक मुसाफिर जो तारों को देखती है, चांद को निहारती है, आसमान को बांधती है, सुबह की सूरज की किरणों में सुकून महसूस करती है। मैंने कई दफा तितलियों की आंखों से सपने देखने की कोशिश की है। ये अगला ट्रैक आपके लिए मेट्रो फिल्म का केके की आवाज में है। अलविदा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही नाज के संग। मैं हूं इस वक्त आपके साथ जरीन। दिल में हजार उलझने और बेलगाम ख्वाहिशों के मेले के बावजूद भी अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, यानी आप चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, तो वाकई ये काबिल तारीफ है। क्योंकि हम सभी की यूं तो सैकड़ों शिकायतें होती हैं जिंदगी से, मगर कोई एक वजह ही काफी होती है मुस्कुराने के लिए। अगला ट्रैक जावेद अली की आवाज में इशकज़ादे फिल्म का। ये टाइटल ट्रैक मैं आपके लिए लेकर आई हूं, बहुत ही उम्दा, वन ऑफ माय फेवरेट।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Cash Money. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही, और इस वक्त मैं आपके साथ आपकी दोस्त सरीन। 9:30 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। ये अगला ट्रैक अनुपम रॉय की आवाज में, फिल्म पीकू का।

हम सब ना एक शहर में रहते हैं और एक ही शहर, और इस एक शहर में सैकड़ों घर होते हैं। हर घर की अपनी एक अलग कहानी है, कहीं हंसी की गूंज तो कहीं खामोशियों का शोर। और इन घरों में रहने वाला हर एक इंसान अपनी अपनी जिंदगी की किताब लिख रहा है। आपको पता है, किसी के हिस्से में सपनों की दौड़ है और कोई जिंदगी से थक चुका है।

0: नाइन्टीज के उस दौर में खोकर, उस दौर में टहल कर घूम कर आकर कितना मजा आता है ना। क्या दौर था वो, कितना अपनापन था इन गानों में। वेल, आपकी याद आती रही। मैं ऐसे ही चुनिंदा कुछ गानों को हम अपने पिटोरे में सजा कर लाते हैं और उस पिटारे से निकाल निकाल कर एक से एक जेम, एक से एक खूबसूरत मोती हम आप तक पहुंचाते हैं इन गानों के जरिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं दोबारा।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मैं ये मानती हूँ कि प्यार सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है, प्यार एक एहसास है जो हमारी जिंदगी को मायने देता है, खुशी और अपनापन देता है। जब हमें किसी का प्यार और साथ मिलता है ना, तो मुश्किल वक्त भी आसान सा लगने लगता है। प्यार का मतलब महज पाना नहीं होता, किसी की परवाह करना, उसकी इज्जत करना, उसकी खुशियों में अपनी खुशी समझना, यानी इन टोटल ऐसा लगता है कि उसके बिना जीना दुश्वार है। शायद यही तो प्यार है।

जब आपको लगे सब कुछ भीतर से खाली खाली सा हो गया है, लफ्ज थक गए हैं और मन में बस शोर बाकी बचा है, तब आप ना हमारे पास चले आइए। जब आप गुस्सा हो, तर्क से ज्यादा तेज दौड़ने लगे दिमाग, हाथ घबराहट में कांपे, आंखें जवाब ढूंढने लगे, तो भी ना आप हमारे पास आ जाए। हम कोई सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, ना ही कोई उपदेश देंगे आपको, बस एक ठहराव बन जाएंगे आपके लिए, जहां आपका गुस्सा धीरे धीरे सांस लेना सीखेगा, ठंडी ठंडी सांसें, और वो भी राहत भरी। FM रेनबो इंडिया का ये जो परिवार है ना, हर वक्त हमेशा आपके साथ है। बहरहाल इस वादे के साथ जा रही हूँ कि 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी रंग की महफिल में। एक घंटे फिर ढेर सारी बातें करेंगे और सुनेंगे खूबसूरत गजलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।

0: This one, break time.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: रोज सुबह सवेरे

0: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको

102.6 पर आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम रंगे महफिल जरी के संग। चेहरा सिर्फ एक पहचान नहीं होता, ये हमारे जज्बात का एक आईना होता है। कभी ये मुस्कान बनकर दिल जीत लेता है तो कभी खामोशी में हजारों बातें कह जाता है। कुछ चेहरे ना ऐसे होते हैं जो पहली नजर में ही अपने से लगते हैं। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल, अगली गजल अलका याग्निक और जगजीत सिंह की आवाज में।

स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 11:47। आप सुन रहे हैं रंगे महफिल। इस वक्त मैं आपके साथ जरी। एक खूबसूरत शेर याद आया, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। यही तो वो गजलें हैं, ये यूं कह सकते हैं कि गजल की ताकत है कि कम लफ्जों में गहरी बात कही जाती है। गजल हमें सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना भी सिखाती है। जभी तो आज की नई पीढ़ी को भी गजल बेहद पसंद आते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया, लाइव मुशायरे और म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स ने गजल को बहुत उम्दा बना दिया है और बहुत ज्यादा अजीज बना दिया है। तो इसी बात पर जगजीत साहब की आवाज में वही वाली गजल आप तक पहुंचा रही हूँ, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई है। वहीं महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों,

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल

0: IR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति।

ये था प्रोग्राम सुहानी रात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। रात के ठीक 2 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 4 लोगों

अर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं

अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मुख्य समाचार। लोकसभा में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई, 62 लोग घायल, कई अब तक भी लापता। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते

0: वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

सुबह के 3:20 बता रही है घड़ी, और वक्त हो गया है, बल्कि वक्त से तो आगे हम निकल आए थोड़ा थोड़ा। प्रोग्राम शुरू हो चुका है मिडनाइट मेलोडीज आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और न्यूज़ ऑन एयर आप ऐप तो आप समझ ही रहे हैं कि आपको डाउनलोड कर ही लेनी चाहिए। जैसे ही आप कहीं फ्रीक्वेंसी से बाहर जाएंगे, वहाँ आपको ऐप ही काम कराएगी और पहुँचाएगी हम तक और हमें आप तक। आप

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सारेगामा।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सब

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली।

नमस्कार, आप जुड़े हैं इस समय भक्ति संगीत पर आधारित हमारी दैनिक और नियमित प्रस्तुति आराधना में, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों,